आकाशवाणी हमीरपुर से इस समय आप सुन रहे हैं वंदना कार्यक्रम। समय आपको बताएं सुबह के 6:31 और 5 सेकंड हुए हैं। आइए कार्यक्रम में अब माता की ये भेंट सुनते हैं।

जी, अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 होने को हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ भाग 398।

लोमश ऋषि के शाप से ब्राह्मण शरीर धारी काकभुशुंडी को कौवे का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु साथ ही ऋषिवर ने उन्हें राम मंत्र भी दिया। श्री राम का ध्यान करने की विधि बताकर उन्होंने श्री रामचरित सुनाया, जिसे स्वयं उन्होंने भगवान शिव से सुना था। अत्यंत प्रेम से इनके सिर पर हाथ रखकर ये वर दिया, उन्हें प्रभु कृपा प्राप्त होगी और अपनी इच्छा के अनुसार वे जो भी रूप धारण करना चाहेंगे कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण वरदान उन्हें ये प्राप्त हुआ कि अपना शरीर त्याग करने की इच्छा करने पर ही मृत्यु उनका वरण करेगी, अन्यथा नहीं। उन्हें कोई भी दोष, कोई अवगुण व्याप्त नहीं होगा और अपनी इच्छा मात्र से ही जिस उपलब्धि की कामना करेंगे वो उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाकर काकभुशुंडी ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, मैं यही कौवे का शरीर धारण कर 27 कल्पों से यहाँ निवास कर रहा हूँ। मुझे कौवे का शरीर इसलिए सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इसी शरीर से मैंने श्री राम की अविचल और अखंड भक्ति पाई है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज के गायक कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, भूपिंदर सिंह, लता मंगेशकर और साथी। संगीतकार थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित वरेली होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद 6:55 पर संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर आप सुनते हैं हर रोज हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात का अंक और मॉर्निंग न्यूज का अंक 8:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 8:30 पर हिमाचल डायरी का आज का अंक आप सुन सकते हैं। 8:35 से लेकर 8:45 तक विविध भारती के कार्यक्रम और 8:45 पर कानून की बात कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर 9:20 तक आनंद उठाइएगा विविध भारती के कार्यक्रमों का। 9:20 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 9:30 से लेकर 10 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम और 10 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: सुबह 10:05 पर लघु वार्ता सुनिएगा। आज का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, ये कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 10:15 पर। 10:45 पर लोक रंग कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा कुछ पहाड़ी लोकगीत। 11 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 11:05 से लेकर दोपहर 12 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं। दोपहर 12 बजे वनिता मंडल कार्यक्रम के साथ हाजिर होंगे। 12:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। इसी दौरान 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से और 3 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। शाम 5 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 5:05 पर भजन संध्या कार्यक्रम होगा। युग मंच कार्यक्रम 5:30 पर आप सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार शाम 6 बजे आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 6:05 पर कार्यक्रम सुनिएगा सफर सुहाने गाने नए पुराने। 6:30 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शाम 7 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे और कुछ फिल्मी भजन सुनिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत के अंतर्गत शाम 7:05 पर। रौनका ग्राइंदिया ये कार्यक्रम 7:25 पर प्रसारित किया जाएगा। 7:45 का समय रहता है प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें हम आकाशवाणी शिमला से रिले करते हैं। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 8:45 पर समाचार संध्या का अंक, 9 बजे News@9 का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 9:15 से लेकर 10 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम और 10 बजे एक ही फिल्म से कार्यक्रम जरूर सुनिएगा। 10:30 पर चांदनी रातें कार्यक्रम पेश किया जाएगा और रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। तो ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथिनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथिनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारो भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारो व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादम विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमंत्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्रीमोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्व युतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथि युतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्री शाहः विहितवान्। एतत् पूर्वं प्रथमे दिने श्री शाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्री शाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
3: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की।

0: वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

0: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना।
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: नेता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 7:06:50 हुए हैं और आपकी रेडियो दोस्त भावना कतना हाजिर है आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम लेकर। तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए कार्यक्रम में एक अच्छा सा विचार आपको बताते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, आजकल देखिए ना, गर्मी बढ़ रही है और गर्मियों का मौसम है तो गर्मी बढ़ेगी ही, लेकिन हम हमेशा शिकायत ये करते हैं गर्मियों में, भाई इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा, कैसे बरसात में शिकायत करते हैं, इतनी बरसातें कि क्या हो रहा है। सर्दियों में शिकायत करते हैं, इतनी ठंड पहले तो कभी भी नहीं पड़ी है ना। देखिए, प्रकृति है और मौसम जो बदलता है इसके पीछे कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जिम्मेदार होता है, क्योंकि हम पिछली बातों को पीछे छोड़ते चले आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक कविता आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। देखिए, आम का मौसम है, पेड़ पर आम लगे हैं, अभी तो छोटे छोटे हैं, लेकिन पहले ना हम इनको तोड़ने में बड़ा मज़ा आता था। तो कविता की पंक्तियाँ इस तरह से हैं, अब खुद ही गिर जाओ तुम टूट कर ज़मीं पर, पत्थर मारने वाला बचपन मोबाइल में व्यस्त है। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है, फुर्र हो गई फुर्सत अब तो, सबके पास काम बहुत है, नहीं ज़रूरत बूढ़ों की अब, हर बच्चा बुद्धिमान बहुत है, उजड़ गए सब बाग बगीचे, दो गमलों में शान बहुत है, मट्ठा दही नहीं खाते, कहते हैं जुकाम बहुत है, पीते हैं जब चाय तब कहीं कहते हैं आराम बहुत है, बंद हो गई चिट्ठी पत्री, व्हाट्सएप पर पैगाम बहुत हैं, आदि हैं एसी के इतने, कहते बाहर गर्मी बहुत है, झुके झुके स्कूली बच्चे, बस्तों में सामान बहुत है, नहीं बचे कोई संबंधी, अकड़ ऐंठ एहसान बहुत है, सुविधाओं का ढेर लगा है पर इंसान परेशान बहुत है, इंसान परेशान बहुत है। जी हाँ, और इसका कारण कभी हमने जाना है, भाई हम तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सुविधाओं से लैस हो रहे हैं, लेकिन अपनी इंसानियत को भूलते जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अपने संस्कारों को छोड़ रहे हैं, इसीलिए हम इस कदर परेशान हैं। तो आइए हम यही एक दूसरे से वादा करते हैं, अपने आप से वादा करते हैं कि हम तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पर अपने संस्कारों को नहीं छोड़ेंगे, इंसानियत को नहीं छोड़ेंगे और सबके साथ मिलजुल कर ही आगे बढ़ेंगे, प्यार के साथ, इंसानियत के साथ।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आपने मेम दीदी फिल्म का ये गीत सुना। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से।
1: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
2: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
1: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
2: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: जी, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 7:14:30 हुए हैं। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, इतिहास की बातें करते हैं। आज 18 मई का दिन है। आज के दिन के साथ कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, आइए आपको बताते हैं।

जी, सबसे पहले बात करें 18 मई 1848 की, तो जर्मनी में पहली नेशनल असेंबली का उद्घाटन हुआ था। 1912 में आज ही के दिन पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पुंडलिक रिलीज हुई थी। जी हां, आज ही के दिन 1912 18 मई को। उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करने के एक साल बाद 1950 में इसी दिन विश्व के 12

देशों ने अमेरिका और यूरोप की रक्षा के लिए एक स्थायी संगठन पर सहमति दी थी। 1974 में 18 मई के दिन राजस्थान के पोखरण में अपने पहले भूमिगत परमाणु बम परीक्षण के साथ भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। बात करें वर्ष 2008 की तो 18 मई के दिन पार्श्व गायक नितिन मुकेश को मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया था। भारतीय मूल के लेखक इंदिरा सिन्हा को 2008 में उनकी किताब एनिमल पीपल हेतु कॉमनवेल्थ सम्मान प्रदान किया गया था। श्रीलंका की सरकार ने 25 साल से तमिल विद्रोहियों के साथ हो रही जंग को खत्म कर होने का ऐलान किया और सेना ने देश के उत्तरी हिस्से पर 2009 में कब्जा किया था। लिट्टे प्रमुख वेल्लू पिल्लई प्रभाकरण को मार डाला गया था। और दोस्तों आपको बताएं, आज के दिन को यानी कि 18 मई को मनाया जाता है पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस, जो कि 1974 में हुआ था, हमने आपको अभी बताया। और आज के दिन को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। संग्रहालय में हमारे पूर्वजों की अनमोल यादों को संजो कर रखा जाता है और ये दिवस विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और आज ही के दिन 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस भी मनाया जाता है, जिसे HIV टीकाकरण जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है ये दिवस। HIV टीकाकरण के समर्थक जो हैं वो इस दिन HIV संक्रमण और एड्स की रोकथाम के लिए टीके की निरंतर और अत्यंत आवश्यकता पर बल देते हैं। वे हजारों स्वयं सेवकों, समुदाय के सदस्यों, स्वास्थ्य पेशेवरों, समर्थकों और वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हैं जो एक सुरक्षित और प्रभावी एड्स टीका खोजने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि HIV एड्स महामारी के व्यापक समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में नई तकनीकों में निवेश के महत्व को पहचानें। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की अवधारणा 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा दिए गए दीक्षांत भाषण में निहित है। क्लिंटन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते युग में दुनिया को नए लक्ष्य निर्धारित करने और अगले दशक के भीतर एड्स का टीका विकसित करने की चुनौती देते हुए कहा था कि केवल एक वास्तव में प्रभावी निवारक HIV टीका ही एड्स के खतरे को सीमित कर सकता है और अंततः समाप्त कर सकता है। आपको बताएं कि पहला विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 18 मई 1998 को क्लिंटन के भाषण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था और ये परंपरा आज भी जारी है। हर साल विश्व भर के समुदाय विश्व एड्स टीकाकरण दिवस पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित करते हैं ताकि एड्स टीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। समुदायों को HIV की रोकथाम और एड्स के टीके के लिए अनुसंधान के बारे में शिक्षित किया जा सके और इस बात पर ध्यान दिलाया जा सके कि आम लोग इस महामारी को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में कैसे योगदान दे सकते हैं। जी ये थी 18 मई के साथ जुड़ी कुछ खास ऐतिहासिक बातें और अब आइए वर्तमान में आते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

तीसरी कसम फिल्म से हमने ये गीत लिया था मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। और अब आगे बढ़ते हैं, समाचार पत्रों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं और ताज़ा तरीन खबरों से आपको अवगत करवाते हैं। सबसे पहली खबर की हम बात करें तो देखिए, CBSE 12वीं के नतीजों में जिन छात्रों को लगता है कि उनके ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे पर कम आए हैं, तो वे पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करें। CBSE बोर्ड ने छात्रों के विरोध के बाद पुनर्मूल्यांकन फीस में भी बड़ी कटौती कर दी है। अब स्कैन कॉपी के लिए 700 की जगह 100 रुपये ही देने होंगे। यही नहीं, प्रति सवाल दोबारा जंचवाने के लिए अब 100 की जगह 25 रुपये ही लगेंगे। शिक्षा सचिव संजय कुमार ने रविवार को ये घोषणाएं की। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी छात्र के कुल अंकों में एक अंक भी बढ़ता है तो उसे पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए जमा की गई फीस वापस लौटा दी जाएगी। 19 मई से 22 मई के बीच छात्र अपनी स्कैन आंसर शीट हासिल कर सकते हैं। यदि वे अपनी कॉपी को वेरीफाई या फिर री इवेल्युएट कराना चाहें तो अगले एक हफ्ते में 26 से 29 मई के बीच ऐसा भी कर सकेंगे। हालांकि बोर्ड ने कहा कि री इवेल्युएशन की प्रक्रिया भी OSM यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग से ही होगी, ना कि मैन्युअली। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि ज़्यादा आवेदन आए तो बोर्ड इस प्रक्रिया की तिथि और बढ़ा सकता है। संजय कुमार ने कहा कि 98,66,222 उत्तर पुस्तिकाओं में से केवल 13,583 कॉपियां ऐसी थी जिनकी स्कैन कॉपी ऑन स्क्रीन नहीं जांची जा सकी। संभवतः छात्र द्वारा हल्के रंग की स्याही वाले पेन के इस्तेमाल के चलते ऐसा हुआ। 9 मई के बाद इन कॉपियों को मैन्युअली जांचा गया और 13 मई को नतीजे घोषित हुए। अगली खबर आपको बताएं, कर्नाटक

पहला ऐसा राज्य है जिसने पेय पदार्थों में अल्कोहल की मात्रा यानी कि AIB पर आधारित एक्साइज ड्यूटी ढांचा लागू किया है। AIB को वैश्विक स्तर पर अल्कोहल पर टैक्स लगाने का सर्वोत्तम मानक माना जाता है। इसके तहत शराब पर कीमत या बोतल के वॉल्यूम के बजाय उसमें मौजूद असली अल्कोहल की मात्रा पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। अगली खबर की बात हम करें तो देखिए, भारत और नीदरलैंड व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, खनिज, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र के में साथ मिलकर काम करेंगे और दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए 5 साल का रोडमैप भी तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष रॉब जेटेन के बीच शनिवार को हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में 17 समझौते हुए और उन पर हस्ताक्षर हुए। हरित हाइड्रोजन के विकास पर सहमति के साथ दोनों देश संयुक्त रक्षा उपकरण प्रणालियों, घटकों और अन्य प्रमुख क्षमताओं के संयुक्त निर्माण के लिए रक्षा औद्योगिकी रोडमैप स्थापित करने की संभावनाओं का भी पता लगाएंगे और इसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त उद्यमों की स्थापना शामिल है। और संयुक्त बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने विज्ञान और नवाचार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण, समुद्र विकास और जन संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। आव्रजन मोबिलिटी पर भी समझौता हुआ है और इसके तहत कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए नीदरलैंड में काम करने की प्रक्रियाओं को आसान और निष्पक्ष बनाया जाएगा। एक अन्य खबर की हम बात करें तो अच्छा वेतन, सस्ता रहन सहन और बेहतर जीवन जैसे कारक अब देश के रोजगार भूगोल को बदल रहे हैं। ब्लू और ग्रे कॉलर इसकी रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि अधिक वेतन और बेहतर करियर की तलाश में शारीरिक श्रम यानी कि ब्लू और अर्ध कुशल यानी कि ग्रे कार्यबल में दूसरे शहरों में जाने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर पर महिलाएं और पहली बार नौकरी तलाशने वाले युवा अपने गृह नगर से बाहर अवसर खोजने में अधिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पुरुष प्रधान माने जाने वाले क्षेत्रों में महिलाएं न केवल तेजी से प्रवेश कर रही हैं बल्कि बेहतर मौके के लिए दूसरे शहरों में जाने को भी तैयार हैं। और ये रिपोर्ट 3.5 करोड़ से अधिक जॉब आवेदनों के विश्लेषण पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच दूसरे शहरों में नौकरी के लिए 86 लाख आवेदन किए गए और ये पिछले वर्ष की समान अवधि में के 65 लाख आवेदनों की तुलना में 31.4% अधिक हैं। बात करें हिमाचल की तो प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 51 शहरी निकायों में रविवार को हुए चुनाव में 69.16% मतदान के साथ पूरे उत्साह और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक EVM के जरिए हुई वोटिंग में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव में 3,62,025 मतदाताओं में से 2,50,391 लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। इसमें सबसे अधिक उत्साह जिला हमीरपुर में देखने को मिला जहां रिकॉर्ड 78.89% वोटिंग हुई है। वहीं सोलन जिले में सबसे कम 64.20% मतदान दर्ज किया गया है। श्री नैना देवी जी शहरी निकाय में लगभग 86% मतदान हुआ जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो मौसम की बात करें तो देखिए, मॉनसून ने अपने सामान्य समय से थोड़ा पहले अंडमान सागर और निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में दस्तक दे दी है। मॉनसून अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी पहुंच गया है और इसके प्रभाव से केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मॉनसून पूर्व बारिश हो रही है। दिल्ली NCR समेत समूचा उत्तर, पश्चिम और मध्य

0: योजना अनुकूल बनी हुई है। ये अपने समय से लगभग 5 दिन आगे चल रहा है और इसके केरल के तट पर 26 मई को पहुंचने की संभावना है। मॉनसून आमतौर पर 1 जून को केरल में दस्तक देता है। केरल के विभिन्न हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। और बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो प्रदेश में रविवार को ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहा और दिन भर तेज धूप खिली रही। इससे प्रदेश के 10 शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जिससे निचले क्षेत्रों में गर्मी का असर महसूस किया गया। और मौसम विभाग ने 19 मई से फिर मौसम बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 21 मई के बीच चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी, ये कुछ खास खबरें थी जो हमने आपके साथ साझा की। अब एक अंतराल, उसके बाद प्यारा सा गीत सुनते हैं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

साहेब बीवी और गुलाम इसी फिल्म का ये गीत था जो अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज थी। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं, खेल खबरों की बातें करते हैं, समाचार पत्रों से आपको खेल खबरें बताते हैं। आईपीएल की बात करें, आईपीएल 19 में पिछले कल पंजाब किंग्स का अभियान पटरी से उतरता दिख रहा है। रविवार को उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिन के पहले मुकाबले में 23 रन से हराया। शुरुआती 6 मैच जीतने के बाद ये पंजाब की लगातार 6th हार है। वो टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर पहुंच गई है। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु के ये लगातार तीसरी जीत रही और वो इस सीजन प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। उसने 13 मैच में 9 जीते हैं और एक मैच शेष रहते टॉप 2 का दावा जो है वो ठोक दिया है। ये मैच जो है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुआ पिछले कल। और आज की बात बताएं आपको, आईपीएल 19 के 63वें मुकाबले में सोमवार को यानी कि आज दक्षिण भारत की दो टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगी। दोनों टीमों का ये मुकाबला चेन्नई के चेपक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ये सीएसके के घरेलू मैदान चेपक पर सीजन का अंतिम मैच होगा, इसीलिए मुकाबले में सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान और फैंस के थाला धोनी के खेलने की उम्मीदें हैं। धोनी काफ इंजरी के चलते इस सीजन एक भी मुकाबला नहीं खेल सके हैं, क्योंकि ये उनका आखिरी आईपीएल सीजन माना जा रहा है और उन्होंने 2021 में कहा था कि वो अपना अंतिम आईपीएल मुकाबला चेपक में ही खेलेंगे। इसीलिए फैंस को सीजन में पहली बार मैदान पर थाला के दर्शन हो सकते हैं। जी बात करें बैडमिंटन की, तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की स्टार भारतीय बैडमिंटन जोड़ी को थाईलैंड ओपन के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारतीय जोड़ी का 2 साल से चला आ रहा खिताबी सूखा और बढ़ गया है। वर्ल्ड टूर सुपर 500 टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में टॉप सीड सात्विक चिराग की जोड़ी को इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्थिन ने 52 मिनट में 21-12, 25-23 से हरा दिया। 2 साल अलग खेलने के बाद दोबारा साथ आए इंडोनेशियाई खिलाड़ियों की भारतीय जोड़ी पर 5 मैचों में ये पहली जीत है। सात्विक और चिराग यहां अपने तीसरे थाईलैंड ओपन खिताब की तलाश में थे। जी चेस की बात करें, तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रागनानंदा ने सुपर चेस क्लासिक के तीसरे राउंड में जर्मनी के विंसेंट कीमर के साथ ड्रॉ खेला। पिछले दौर में उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव पर जीत दर्ज करने वाले प्रागनानंदा अब 3 में से 2 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर बने हुए हैं। 10 खिलाड़ियों के टूर्नामेंट में फिलहाल आधे खिलाड़ी संयुक्त बढ़त पर हैं। प्रागी के अलावा फ्रांस के मैक्सिम वाचियर, जर्मनी के कीमर, नीदरलैंड्स के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट और अनीश गिरी के भी 2-2 अंक हैं। फेबियानो कारुआना और वेस्ली सो 1.5 अंकों के साथ पीछे चल रहे हैं। यूक्रेन की टेनिस खिलाड़ी एलिना स्वितोलिना ने रोमांचक फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर तीसरी बार

इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। 31 वर्षीय स्वितोलिना ने वर्ल्ड नंबर 4 गॉफ को 6-4, 6-7, 6-2 से मात दी। इससे पहले स्वितोलिना ने 2017 और 18 में भी ये ट्रॉफी जीती थी। स्वितोलिना ये मुकाबला 2 घंटे 49 मिनट में अपने नाम किया। ये कुछ खास खेल खबरें थी जो हमने आपको बताई समाचार पत्रों से। अब आइए एक और गीत कार्यक्रम में शामिल करते हैं।

ऊंचे लोग फिल्म का ये गीत था किशोर कुमार, सलमा आगा और साथियों की आवाजों में। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। समय आपको बताएं सुबह के 7:47:45 हुए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, विज्ञान पर चर्चा करते हैं। और विज्ञान पर चर्चा के लिए जो ट्रायल किया है हमारे वैज्ञानिकों ने, हैदराबाद के स्टार्टअप रेड बैलून एरोस्पेस ने विजयवाड़ा में भारत के पहले सुपर प्रेशर बैलून का सफल रस्सियों से बंधा ट्रायल किया। और ये बैलून बिना पिच के धरती से 25 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में लंबे समय तक तैर सकता है। ये सैटेलाइट के मुकाबले बेहद कम खर्च में ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने, मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने, आपदा के समय तुरंत कम्युनिकेशन बहाल करने और सीमाओं की 24 घंटे निगरानी करने में मदद करेगा। और ये हमारे वैज्ञानिकों की एक बहुत अच्छी खोज है और हम अपने वैज्ञानिकों को सलाम करते हैं। विज्ञान पर चर्चा की इसी कड़ी में एक और वैज्ञानिक खबर हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, ये है अंतरिक्ष में यात्रा करने के बाद पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा नवनिर्मित एस्टेरॉयड। जी हाँ, अंतरिक्ष की गहराइयों में एक ऐसे नवनिर्मित एस्टेरॉयड की खोज की गई है जो अब तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हाल में खोजा गया 2026 JH2 नामक एस्टेरॉयड सोमवार यानी 18 मई 2026 यानी कि आज हमारी पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। और ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के इतने पास आ जाएगा कि इसकी दूरी धरती और चांद के बीच की कुल दूरी की महज 1/4 यानी लगभग 25% रह जाएगी। इस एस्टेरॉयड को पहली बार 10 मई को 60 इंच के शक्तिशाली टेलीस्कोप की मदद से देखा गया था। और इसके बाद अमेरिकी वेधशालाओं ने इसकी कक्षा का अध्ययन किया और 12 मई को इसे अपोलो एस्टेरॉयड की श्रेणी में रखा। वैज्ञानिकों के मुताबिक अपोलो एस्टेरॉयड उन आकाशीय पिंडों को कहा जाता है जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए पृथ्वी की कक्षा को पार करते हैं। आपको बताएं कि नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के अनुमान के मुताबिक इस एस्टेरॉयड की चौड़ाई 15 मीटर से 35 मीटर यानी कि लगभग 50 से 115 फीट के बीच है। और इसका अधिकतम आकार एक अमेरिकी फुटबॉल मैदान के 1/3 हिस्से जितना बड़ा है। भारतीय समयानुसार ये 18 मई की मध्य रात्रि को ये पृथ्वी के सबसे करीब होगा और इससे करीब 3 घंटे पहले ये चंद्रमा के पास से भी गुजरेगा। पृथ्वी के पास पहुंचते समय इसकी दूरी मात्र 90,000 किलोमीटर यानी कि 56,000 मील रह जाएगी। और वैज्ञानिक हालांकि ये कह रहे हैं, खगोलविदों ने पुष्टि की है कि इससे हमारी पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है, ये बिना टकराए सुरक्षित निकल जाएगा। आपको बताएं कि आमतौर पर पृथ्वी के पास से गुजरने वाले एस्टेरॉयड लाखों किलोमीटर दूर होते हैं, लेकिन 2026 JH2 का इतनी करीब आना एक दुर्लभ घटना है। क्योंकि ये आकार में छोटा है इसीलिए इसे नग्न आंखों से देखना संभव नहीं होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के करीब आते ही इसकी चमक बढ़ जाएगी। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने हमें ये बताया है कि पृथ्वी के करीब आते ही इसकी चमक बढ़ जाएगी, जिसे छोटे टेलीस्कोप की मदद से आसानी से देखा जा सकेगा। पृथ्वी के करीब होने के दौरान ये लियो कॉन्स्टेलेशन यानी सिंह तारामंडल के करीब दिखाई देगा। जी हाँ, ये थी आज की विज्ञान पर चर्चा कि आज रात पृथ्वी के करीब से गुजरेगा विशाल एस्टेरॉयड। जी तो सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अब देखिए जानकारी के बाद बात आती है मनोरंजन की। और अब मनोरंजन की बात आई है तो आइए एक और गीत सुन लेते हैं कार्यक्रम में।

0: मोहम्मद रफ़ी की सुरीली सी आवाज़ थी, मजरूह के बोल, ओपिनियर का संगीत, मेरे सनम फिल्म का नाम था। हुए हैं तुम पे आशिक महम, भला मानो बुरा मानो, है ना। अब देखिए, हम तो अपने श्रोताओं के लिए ही आते हैं, वो भला माने चाहे बुरा माने, हम तो उनका मनोरंजन करते रहेंगे। और देखिए, भला बुरा मानने की जब बात आती है ना, तो हम तो बस यही कहेंगे अपने श्रोताओं से कि रूठना मनाना तो चलिए ज़िंदगी में चलता रहता है, लेकिन इस कदर भी नहीं रूठना किसी से कि भाई उनको मनाने में साल लग जाएं पर आप माने ही ना और ये दूरियां जो हैं वो बढ़ती रहें। आजकल होता भी ऐसा ही है, एक बात को पकड़कर हम इस कदर बैठ जाते हैं कि पूरे जीवन उसी बात पर टिके रहते हैं। लेकिन देखिए ना, अगर हम जीवन में कई सुख दुख आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, बातों को हम अगर इसी तरह से अपने दिमाग में, अपने दिलों में लेकर बैठे रहेंगे तो भला आगे कैसे बढ़ पाएंगे। देखिए, इंसान को इंसान का सहारा चाहिए, है ना, और हम एक दूसरे का सहारा बने, यही हम अनुरोध हमेशा करते हैं, है ना। तो बस एक दूसरे का सहारा बने रहिए, इंसानियत के तौर पर समाज में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे के सहयोग की हर किसी को ज़रूरत होती है। आज हमें ज़रूरत है, कल किसी और को होगी और परसों किसी और को होगी। अगर आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल वो भी हमारी मदद करेगा और इसी से संसार चलता है, और यही हमें करना भी है। अपनी इंसानियत नहीं छोड़नी है, अपने संस्कार नहीं छोड़ने हैं, और मिलजुल कर हमेशा आगे बढ़ना है। देखिए ना, ये गीत हमें देखा जाए, ध्यान से सुना जाए तो कितना कुछ सिखा जाते हैं, है ना। तो चलिए, अब इन्हीं बातों को आज विराम देते हैं, मनोरंजन को विराम देते हैं, क्योंकि आज के सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम का समय यहाँ समाप्त हो रहा है। तो एक बार फिर से कहते हैं, सुप्रभात हमीरपुर। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है, अब समाचार प्रभात का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए

0: सीधे अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
2: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
4: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल VA वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलूट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्यबल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader VD Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. We have more details on this from our correspondent in Sweden covering the Prime Minister's visit.
7: Central to the visit was the adoption of a joint action plan, which aims to double bilateral economic exchange within 5 years. Under the theme India-Sweden Stronger Together toward 2047, both nations committed to holding a bilateral trade and investment summit in India in 2027. In the realms of technology and climate action, the visit secured significant agreements to co-create solutions for the 21st century. Both nations launched a joint innovation partnership 2.0 and agreed to establish a virtual India-Sweden Joint Sciences and Technology Center, focusing on AI, 6G, quantum computing and life sciences. Furthermore, Sweden-India Technology and AI Corridor will be strengthened to connect the two nations' startup ecosystem. On the climate front, the leaders announced the third phase of the leadership group for industrial transition, significantly expanding cooperation in green steel and low-carbon industrial transformation. Defense and security cooperation have transitioned from a traditional buyer-seller model to a long-term industrial partnership, with Swedish companies actively investing in India's defense production corridors. Prime Minister specifically thanked Sweden for its support following the Pahalgam terror attack, reaffirming a joint commitment to global stability. Finally, the visit celebrated a shared intellectual legacy and broader regional cooperation. To commemorate the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to Sweden, both countries initiated the Tagore-Sweden lecture series and exchanged unique gifts, including replicas of Tagore's handwritten epigrams found in Swedish archives. The presence of European Commission's President Ursula von der Leyen highlighted the visit's importance to the India-Euro partnership, with a renewed push for the India-Euro free trade agreement, described as the mother of all deals, to unlock new opportunities for innovators and investors alike.
8: We succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals. And just look at some of the figures. A shared market of over 2 billion people, that is close to one quarter of global GDP. Over 90% of tariff cuts. Enormous opportunity to grow trade and investment. From here in Gothenburg, Scandinavia's largest trading port, to Mundra port in your home state in Gujarat.
7: Sakshi Singh, Akashwani News, Gothenburg, Sweden.
6: Prime Minister Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission. During an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg, Mr. Modi made a strong pitch to Swedish companies to enhance their presence in India in manufacturing, green hydrogen mission, clean energy and other sectors. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences and digital technologies. Highlighting India's rapid economic transformation, Mr. Modi mentioned about strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development in India.
9: Vodafone, Ericsson, Nokia, Orange, jaisi companiyon ka Bharat mein vishal anubhav hai. Bharat 5G se 6G transition, AI-enabled networks, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है.
6: The Ministry of External Affairs has said that business leaders and CEOs who met Prime Minister Narendra Modi in Sweden expressed strong interest in India and appreciated the country's transformation driven by sustained economic reforms over the past several years. Addressing reporters after the European Roundtable Industry Meeting, MEA Secretary West C.B. George said that CEO

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हिमाचल डायरी का आज का अंक।

हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज में हर ओपीडी के बाहर डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए

खरीदने के समय पहले मोबाइल नंबर भरना होगा और आभा का नंबर भी जरूरी होगा। मोबाइल नंबर भरने पर ओटीपी आने के बाद मरीज को अपनी सारी डिटेल भरनी होगी और उसी में संबंधित बीमारी की ओपीडी की भी डिटेल होगी। वहीं पर ऑनलाइन माध्यम से डॉक्टर से शेड्यूल टाइम तय होगा और टोकन नंबर संबंधित मरीज को मिल जाएगा। हमीरपुर जिला की सीमा के साथ बिलासपुर जिला के घुमारवीं और दूसरे क्षेत्र, कांगड़ा जिला का देहरा, थुरल, जयसिंहपुर, मंडी जिला के संधोल, धर्मपुर, ऊना जिला के बंगाणा और दूसरे क्षेत्र जुड़ते हैं। यहाँ से काफी मरीज उपचार के लिए हमीरपुर भी आते हैं और वैसे कॉलेज प्रशासन की ओर से जो पर्ची बनाने के लिए मरीजों की सुबह 8 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं, उससे निजात दिलाने के लिए भी मरीजों को ऑनलाइन माध्यम से पर्ची बनाने की सुविधा से जोड़ने के लिए योजना तैयार की जा रही है। थल सेना अग्निवीर भर्ती 2025-26 के अंतर्गत जिला हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के युवाओं के लिए आयोजित अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर की भर्ती की का फाइनल परिणाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने बताया कि ये परिणाम वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध करवा दिया गया है। उन्होंने सभी सफल उम्मीदवारों से अपील की है कि वे 19 मई को सुबह 9 बजे थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर में आगामी औपचारिकताओं के लिए रिपोर्ट करें। थल सेना भर्ती कार्यालय कि इसकी प्रक्रिया के तहत JCO, OR और अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE पहली से 15 जून तक आयोजित किया जाएगा। थल सेना की वेबसाइट के माध्यम से जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन CEE के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 15 मई को जारी कर दिए गए हैं। थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन का कहना है कि अभ्यर्थी अपने पंजीकरण विवरण का उपयोग कर भारतीय सेना की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देशों, परीक्षा की तिथि, परीक्षा केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए समय समय पर इस वेबसाइट का अवलोकन करते रहें और एडमिट कार्ड में अंकित सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच जो है वो कर लें। हिमाचल परिवहन निगम के हमीरपुर डिवीज़न के तहत इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल जो है वो पूरा हो चुका है। अब निगम की ओर से हर डिपो में कितनी बसें दी जानी हैं इसकी एलोकेशन होनी है। वैसे प्रदेश में 297 बसें आई हैं, लेकिन यहाँ एक समस्या है कि मुख्यालय स्तर की निगम की वर्कशॉप में बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन पर स्थापित कर दिए गए हैं, लेकिन फील्ड स्तर पर अभी भी स्थापित नहीं हो पाए हैं। डीएम हिमाचल परिवहन निगम राजकुमार पाठक के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल डिवीजन में सफल रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही हर डिपो को निदेशालय स्तर पर से ये बस से एलोकेट हो जाएगी। चार्जिंग स्टेशन काफी स्थानों पर स्थापित कर दिए गए हैं। फील्ड स्तर पर भी इन्हें स्थापित करने का कार्य चल रहा है और ये कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा। तो हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 8:35 हुए हैं, अब से लेकर 8:45 तक आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था,

0: सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
1: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम के अगले गीत। दिल धड़कने दो फिल्म का नाम है। सुकृति कक्कर, सिद्धार्थ महादेवन, इन्होंने इस गीत को गाया है। जावेद अख्तर के बोल हैं और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़ों में सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत, जिसे सुरों में ढाला है प्रीतम ने। फिल्म का नाम दिलवाले।

अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात।

0: बात कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय है नालसा, यौन उत्पीड़न की पीड़ित महिला व उत्तरजीवियों के लिए मुआवजा योजना तथा हिमाचल प्रदेश प्रतिकार यानी अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के लिए योजना। विशेषज्ञ हैं श्री आर मेहुल शर्मा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला। इनसे भेंट कर रहे हैं जितेंद्र पाल सिंह।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी धर्मशाला के इस विशेष जानकारी पूर्ण कार्यक्रम कानून की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का सशक्त माध्यम है। कई बार जीवन में ऐसी प्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जब व्यक्ति स्वयं को असहाय महसूस करता है, विशेषकर वे महिलाएं और नागरिक जो किसी अपराध का शिकार होते हैं। ऐसे समय में न्याय के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सहयोग भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। इसी उद्देश्य से आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे नालसा, कंपनसेशन स्कीम फॉर वुमेन विक्टिम्स सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट तथा हिमाचल प्रदेश प्रतिकार यानी अपराध से पीड़ित व्यक्ति योजना 2019 के बारे में। ऐसी योजनाएं जो पीड़ितों को न्याय की राह पर संबल और सहायता प्रदान करती हैं। इन महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला के सचिव वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्री आर मेहुल शर्मा जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि कानून किस प्रकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ा है। शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं, तो हमारे श्रोताओं को पहले ये बताइए कि यह प्राधिकरण आम जनता के लिए किस तरह से कार्य करता है।
2: सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन मुख्यतः समाज के गरीब पिछड़े वर्गों व अपराध पीड़ितों के लिए किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के इन गरीब पिछड़े वर्गों व पीड़ितों को मुख्य धारा से जोड़ना है। हमारा प्रयास यही रहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो न्याय से वंचित रह जाए। इसके लिए हम गांव व दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूकता शिविरों का आयोजन करते हैं ताकि कानून की आधारभूत जानकारी सबको मिल सके व ये लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त कानूनी सहायता भी देता है। इसके लिए महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वह व्यक्ति जिसकी सालाना आय 3 लाख से कम हो, ट्रांसजेंडर्स, एड्स पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांग वह औद्योगिक कामगार पात्र हैं। एप्लीकेशन के साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दस्तावेज की आवश्यकता होती है। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए किसी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय या विधिक सेवा प्रधि कमेटी में अप्लाई किया जा सकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपराध पीड़ित व्यक्तियों के लिए मुआवजा देने की भी व्यवस्था की है, जो कि पीड़ित व्यक्ति को अपराध से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसके प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत मिलता है।
1: क्या आप ये बताना चाहेंगे कि इन दोनों स्कीम्स विक्टिम कंपनसेशन स्कीम और कंपनसेशन टू द वुमेन विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, इनमें अंतर क्या है?
2: पीड़ित महिला प्रतिकर स्कीम में सिर्फ महिलाओं को यौन अपराधों के कारण जो उन्हें शारीरिक व मानसिक हानि हुई है उसके लिए मुआवजा दिया जाता है। ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की एक स्कीम है। हमारी दूसरी प्रतिकर स्कीम जो कि हिमाचल प्रदेश अपराध के पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर स्कीम 2019 है, उसमें महिला व पुरुष दोनों मुआवजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्कीम है।
1: जी शर्मा जी, ये बताइए इन दोनों स्कीम्स के अंतर्गत किन व्यक्तियों को पीड़ित माना जाता है?
2: सबसे पहले तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इन स्कीमों के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति केवल अपराध पीड़ित होना चाहिए। मुआवजे के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनमें प्राथमिक सूचना यानी FIR दर्ज हुई हो। विशेष परिस्थितियों में यदि FIR ना हुई हो तो कोर्ट में शिकायत दर्ज होनी चाहिए। इन स्कीमों में क्लॉज 2H के अंतर्गत वो व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ हो पीड़ित कहलाता है, परंतु यदि पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो ऐसी परिस्थिति में उसके परिवारजन, वारिस या आश्रित पीड़ित माने जाएंगे और ये लोग मुआवजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
1: जी, अब बात ये आती है कि अपराध होने के कितने समय के भीतर मुआवजे के लिए आवेदन किया जा सकता है?
2: इन स्कीमों में अपराध दर्ज होने के 12 महीने के अंदर मुआवजा के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि किन्हीं परिस्थितियों में 12 महीने के भीतर आवेदन ना किया जा सका तो प्रार्थी को वो खास वजह बतानी होगी जिसके कारण वो 12 महीने के भीतर आवेदन ना कर पाया। यदि DLS से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या SLS से स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को ये वजह एक जायज वजह लगती है तो कमेटी प्रार्थी की एप्लीकेशन को स्वीकार कर सकती है, अन्यथा रद्द भी किया जा सकता है।
1: जी शर्मा जी, ये बताइए इन स्कीम्स के अंतर्गत पीड़ित मुआवजे के लिए आवेदन कैसे कर सकता है?
2: पीड़ित को मुआवजा देने के लिए ट्रायल कोर्ट में सेक्शन 396 सबसेक्शन 2 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो पहले हमारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था जो उसमें संशोधन करके और अब जो नया कानून हमारा प्रोसीजर के लिए आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसकी धारा 396 सब धारा 2 के अंतर्गत रिकमेंडेशन कर सकता है ट्रायल कोर्ट, या फिर पीड़ित व्यक्ति स्वयं ही जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में मुआवजा लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, जब प्राथमिकी दर्ज होती है तो हर केस में जहां मुआवजा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है वहां पुलिस द्वारा मुआवजा प्राप्त करने में सहायता दी जा सकती है। और तीसरा तरीका यह है कि फैसले के समय

0: यदि कोर्ट को लगे कि पीड़ित को मुआवजा जो दिया जा चुका है उसमें पुनर्वास के लिए काफ़ी नहीं है, उसको रिहैबिलिटेशन के लिए अगर ट्रायल कोर्ट को, जो समय कोर्ट उस केस को ट्राई कर रहा है, अगर उनको यह लगता है कि जो अभी तक मुआवजा दिया गया है वो सफिशिएंट नहीं है, तो कोर्ट DLSA से मुआवजा बढ़ाने की सिफारिश भी कर सकता है।
1: जी, मुआवजा आवेदन के कितने समय के भीतर मिल जाना चाहिए?
0: मुआवजा आवेदन के 2 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान है।
1: और ये मुआवजा तय कौन करता है?
0: जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास कंपनसेशन यानी मुआवजा की कोई एप्लीकेशन आती है तो उसमें देखा जाता है कि क्या प्रार्थी इसका पात्र है। यदि व्यक्ति विक्टिम यानी पीड़ित है तो उसकी एप्लीकेशन को जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस कमेटी के सभी सदस्यों की सहमति से यह तय होता है कि पीड़ित को कितना मुआवजा मिलना चाहिए।
1: इन स्कीम्स में मुआवजे का भुगतान कौन करता है?
0: जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा तय किए गए मुआवजे में फंड्स की डिमांड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से की जाती है। राज्य सरकार इन स्कीमों के अंतर्गत प्रतिकर भुगतान के लिए फंड्स राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को देती है। ये अकाउंट मेंबर सेक्रेटरी सालसा द्वारा ऑपरेट होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा डिमांड किया गया फंड लर्नेड मेंबर सेक्रेटरी सालसा द्वारा रिलीज किया जाता है।
1: मुआवजा तय करते समय किन किन मापदंडों का ध्यान रखा जाता है?
0: मुआवजा तय करते समय दोनों स्कीमों में दिए गए स्केड्यूल को ध्यान में रखा जाता है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के स्केड्यूल में सिर्फ मिनिमम अमाउंट दिया गया है, जैसे कि हत्या के लिए कम से कम 2 लाख रुपए और बलात्कार के केस में पीड़ित के लिए 3 लाख रुपए, इस शेड्यूल में ऊपरी सीमा नहीं दी गई है। जबकि कंपनसेशन टू वुमेन्स विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दिए गए हैं, जैसे हत्या या मृत्यु में 5 लाख से 10 लाख रुपए और बलात्कार के केस में पीड़ित को 4 से 7 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। इसी तरह अन्य अपराधों के पीड़ितों को भी मुआवजा दिया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमेटी मुआवजा तय करते समय कुछ और मापदंडों को भी ध्यान में रखती है, जैसे अपराध की तीव्रता, मेडिकल एक्सपेंसेस, शिक्षा का नुकसान, क्या पीड़ित का रोजगार अपराध के कारण छूट गया है, क्या पीड़िता अपराध के कारण गर्भवती हो गई है, क्या उसे कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD तो नहीं हो गई, क्या पीड़ित अपराध के समय HIV पॉजिटिव तो नहीं हो गया, अपराध के कारण कोई शारीरिक अक्षमता तो नहीं हो गई, क्या पीड़ित को पुनर्वास की जरूरत है, क्या कोई अन्य कारण जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को ठीक लगे। इन सब बातों को मद्देनजर में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी कमेटी मुआवजा तय करती है और मिनिमम अमाउंट जो स्केड्यूल में दिया गया है उसमें कुछ और अमाउंट बढ़ाया जा सकता है।
1: क्या मुआवजा वापस भी लिया जा सकता है?
0: जी हाँ, मुआवजा वापस भी लिया जा सकता है। यदि मुआवजा लेने के बाद पीड़ित या पीड़िता प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट ना करे, जानबूझकर झूठी इन्फॉर्मेशन देता या देती है या फिर झूठी गवाही देती है, इन परिस्थितियों में मुआवजा वापस लिया जाने का भी प्रावधान है।
1: यदि DLSA द्वारा कंपनसेशन देने से मना कर दिया जाता है तो क्या DLSA के फैसले के खिलाफ अपील भी की जा सकती है?
0: हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये स्कीम पीड़ितों को विक्टिम्स के रिहैबिलिटेशन के लिए बनाई गई है, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही इसका प्रावधान है। यदि पीड़ित को DLSA का फैसला मान्य नहीं है, वह स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में 90 दिन के अंतर अपील कर सकती है, कोई भी पीड़ित या पीड़िता।
1: जी, यदि किसी अन्य अथॉरिटी या किसी अन्य योजना के अंतर्गत पीड़ित को मुआवजा दिया जाता है तो क्या फिर भी पीड़ित को इन स्कीम्स में मुआवजा मिल सकता है?
0: यदि पीड़ित व्यक्ति को किसी और विभाग द्वारा किसी अन्य स्कीम के तहत मुआवजा दिया गया है तो उसे इन स्कीमों के अंतर्गत मुआवजा नहीं मिलेगा, यदि मिला हुआ मुआवजा इन स्कीमों के अंतर्गत मिलने वाले मुआवजे से अधिक हो, परंतु यदि कम हो तो बकाया राशि मुआवजा के रूप में दी जा सकती है।
1: अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अंत में मैं श्रोताओं को यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने आसपास देखें, यदि आपको इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत कोई भी लाभार्थी मिलता है तो उसे हमारे धर्मशाला स्थित कार्यालय में फोन नंबर 01892222370, मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, 01892222370 फोन नंबर पर संपर्क करने की या फिर हमारे नालसा ऐप से ऑनलाइन अप्लाई करने की सलाह दे सकते हैं ताकि किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद हो सके।
1: श्रोताओ, आज के कार्यक्रम कानून की बात में हमने जाना कि किस प्रकार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना अपराध से प्रभावित व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं को आर्थिक सहायता और न्याय पाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। अक्सर जानकारी के अभाव में लोग अपने अधिकारों और उपलब्ध सहायता से वंचित रह जाते हैं। हमारा प्रयास यही है कि कानून की ये बातें आप तक सरल भाषा में पहुंचें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप स्वयं और दूसरों की मदद कर सकें। हम श्री आर मिहुल शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतनी सहजता से इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा की। धन्यवाद।
2: कानून की बात कार्यक्रम में आज आपने श्री मेहुल शर्मा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला से यौन उत्पीड़न की पीड़ित महिला व उत्तरजीवियों के लिए मुआवजा योजना तथा हिमाचल प्रदेश प्रतिकर यानी अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के लिए योजना विषय पर भेंट वार्ता सुनी। इनसे भेंट कर रहे थे जितेंद्र पाल सिंह। यह कार्यक्रम धर्मशाला के सौजन्य से था। हमारा यह प्रसारण आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी रिले किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: कानून की बात, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे जिसे आकाशवाणी शिमला से रिले किया गया। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 9 बजने को हैं, अब से लेकर 9:20 तक आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से और अब वक्त है एक अंतराल का।

चित्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए गब्बर इज बैक फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजों में। मनोज यादव ने इसे लिखा है, चित्रंतन भट्ट का संगीत।

आज विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है। ये दिन एचआईवी एड्स जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन खोजने वाले वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के प्रयासों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और ये समझना है कि सही जानकारी, सावधानी और समय पर जांच से इस बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। सुरक्षित जीवन शैली अपनाना, जागरूक रहना और भेदभाव से दूर रहना बेहद जरूरी है। आइए हम सभी मिलकर एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाएं और एक स्वस्थ, संवेदनशील समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म हमारी अधूरी कहानी से, श्रेया घोषाल की आवाज, रश्मि विराग के बोल और जीत गांगुली का संगीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। संग्रहालय हमारी संस्कृति, इतिहास, कला और विरासत को संजो कर रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यहाँ हमें प्राचीन वस्तुएं, ऐतिहासिक दस्तावेज, दुर्लभ कलाकृतियां और सभ्यता, इन सब की अनमोल झलक देखने को मिलती है। संग्रहालय केवल ज्ञान का केंद्र ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का एक सशक्त माध्यम भी है। आइए इस अवसर पर अपने इतिहास और संस्कृति को समझने, सहेजने और उससे जुड़ने का संकल्प लें। और लीजिए, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं तमाशा फिल्म का ये गीत, मीका सिंह और नक्श अजीज की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल हैं, ए आर रहमान की धुन।

अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:20 होने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 47 शहरी निकायों के चुनाव नतीजों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने मारी बाजी। 4 नगर निगम चुनाव के परिणाम 21 मई को होंगे घोषित। शहरी निकायों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कार्यकर्ताओं की मेहनत व मुख्यमंत्री की जनहितैषी नीतियों की जीत। प्रदेश में आए शहरी निकायों के नतीजों के बाद भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ जीत करेगी दर्ज। लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर व पारंपरिक कला को सहेजने के लिए केलंग निवासी तंजिन बौद्ध अनसंग हीरोज अवार्ड से सम्मानित। और धर्मशाला में हुए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए किया क्वालिफाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के शहरी निकायों में कल हुए शांतिपूर्ण मतदान के बाद देर शाम तक नतीजे घोषित कर दिए गए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नगर निगम धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी सहित 25

0: नगर परिषदों व 22 नगर पंचायतों में वोट डाले गए थे। देर शाम तक आए नतीजों के अनुसार भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने अधिकतर जगहों पर बाजी मारी। कुल्लू जिला के मनाली नगर परिषद में सभी 7 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने विजय हासिल की, जबकि कुल्लू नगर परिषद की 11 सीटों में 3-3 पर भाजपा व कांग्रेस, जबकि 5 वार्डो में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। भुंतर नगर परिषद के 7 वार्डो में 3 पर भाजपा समर्थित, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस और बंजार में 5 पर कांग्रेस समर्थित, जबकि 2 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में 2 नगर निगम धर्मशाला व पालमपुर के अलावा 5 नगर परिषद व 1 नगर पंचायत के लिए वोट डाले गए। हमारे संवाददाता के अनुसार अधिकतर जगहों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इस बीच जिला कांगड़ा में नगर परिषद व नगर निकाय चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने बधाई दी है। उन्होंने इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जनहितैषी नीतियों की जीत बताया है। इधर दूसरी ओर ऊना जिले के नगर निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 6 में से 4 निकायों पर अपना कब्जा जमाया है। वहीं चंबा नगर परिषद में आए परिणामों के अनुसार कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने कुल 6 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि यहां पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार 5 सीटों पर सफलता हासिल कर सके। सिरमौर जिले के नाहन नगर परिषद ने एक बार फिर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। नगर परिषद के 13 वार्डो में से 7 वार्डो में भाजपा समर्थित उम्मीदवार ने विजय हासिल की। जीत के बाद भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अगुवाई में विजय जुलूस निकाला। उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत सीधे तौर पर दर्शाती है कि प्रदेश में चल रही कांग्रेस समर्थित सरकार से लोग तंग आ चुके हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की विजय ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार हिमाचल के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है, जिसने 3.5 साल में हिमाचल के जनमानस का जीना दूभर कर दिया है। और हम एक बार फिर इस बात को वायदे से कहते हैं, आने वाले साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बनेगी। नाहन, सिरमौर और हिमाचल में विकास का एक नया दौर शुरू होगा।
0: शिमला जिला के रामपुर में 9 वार्डों वाली नगर परिषद में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 5 सीटों पर पहली बार जीत दर्ज कर परिषद में अपना परचम लहराया है। वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को 3 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहा। बिलासपुर नगर परिषद के 11 वार्डों में भाजपा ने 9 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। घुमारवी नगर परिषद में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने ही सेंध मारी। यहां पर कुल 9 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 9 जबकि 7 जबकि 2 पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने विजय हासिल की। इसी तरह शाहतलाई में भाजपा समर्थित उम्मीदवार 5 जबकि 2 वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे। श्री नैना देवी जी नगर परिषद में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने सेंध मारी। मंडी जिले के सरकाघाट नगर परिषद के 3-3 वार्डों में भाजपा व कांग्रेस, जबकि 1 अन्य वार्ड पर आजाद उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। सुंदरनगर नगर परिषद के 13 वार्डों में से 9 पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार, जबकि 2 पर कांग्रेस समर्थित और 2 पर आजाद उम्मीदवार विजेता रहे। नेरचौक नगर परिषद में कांग्रेस ने 8 वार्डों पर जीत हासिल की है, जबकि यहां पर भाजपा समर्थित 1 उम्मीदवार विजयी रहा। इसी तरह जोगिंदरनगर परिषद में 3 वार्डों में भाजपा समर्थित, जबकि 2 पर आजाद उम्मीदवार, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहा। सोलन जिला के परवाणु नालागढ़ नगर परिषद में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने परचम लहराया है। जिले की अर्की व कंडाघाट नगर परिषद में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने सेंध मारी है। इस बीच नगर निगम चुनाव के नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक कला को सहेजने के लिए निरंतर कार्य कर रहे केलंग निवासी युवा सामाजिक उद्यमी तंजिन बौद्ध को आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा अनसंग हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तंजिन बौद्ध और उनकी टीम लंबे समय से लाहौल की विलुप्त होती सांस्कृतिक विरासत को बचाने के प्रयासों में जुटी हुई है। उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से एक 80 साल पुराने पारंपरिक घर को संरक्षित

0: कर धरोहर केंद्र के रूप में विकसित किया है। इसके अलावा वे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नाहन विधानसभा क्षेत्र का कोलर गांव आदर्श और सौर गांव के लिए चयनित किया गया है। योजना के तहत सिरमौर जिला के 27 गांव का चयन किया गया था, जिसमें सोलर पैनल लगाने की विभाग की योजना थी। एक रिपोर्ट।
1: सिरमौर जिला में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अनुदान पर लोगों को सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत कोलर के गांव कोलर को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आदर्श सौर गांव चयनित किया गया है। योजना के मुताबिक 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव को सोलर प्लांट लगाने की सूची में शामिल किया जाना था, मगर भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सिरमौर में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 27 गाँव चयनित किए गए थे, जिसमें कोलर गांव ने सबसे अधिक पैनल लगाकर पहला स्थान हासिल। योजना के तहत अब सोलर पावर प्लांट संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि कोलर गांव को मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: धर्मशाला में कल खेले गए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 8 विकेट पर 198 रन ही बना सकी। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने शहरी निकायों के चुनाव के नतीजों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, हिमाचल के 47 शहरी निकायों में से 21 पर भाजपा, 19 पर कांग्रेस समर्थित काबिज, 7 में अन्य के हाथ चाबी। पंजाब केसरी ने लिखा है, हिमाचल में 51 शहरी निकाय चुनाव में 69.16% रहा मतदान। मौसम से जुड़ी खबर को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है, कल से 23 तक अंधड़, वर्षा और बिजली गिरने की चेतावनी। सीबीएसई में अब पुनर्मूल्यांकन सस्ता, शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, बोर्ड ने 12वीं की आंसर शीट देखने की फीस में भी की कटौती। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 47 शहरी निकायों के चुनाव नतीजों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने मारी बाजी, 4 नगर निगम चुनाव के परिणाम 31 मई को होंगे घोषित। शहरी निकायों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कार्यकर्ताओं की मेहनत व मुख्यमंत्री की जनहितैषी नीतियों की जीत। प्रदेश में आए शहरी निकायों के नतीजों के बाद भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ जीत करेगी दर्ज। लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर व पारंपरिक कला को सहेजने के लिए केलंग निवासी तंजिन बौद्ध अनसंग हीरोज अवार्ड से सम्मानित। और धर्मशाला में हुए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए किया क्वालिफाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हुए हैं, अब से लेकर 10 बजे तक सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: से प्यार है, बागों में बहार है।
1: वो जो बहुत खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, भोली हैं, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सहनायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की। प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार, आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

सन 1949 में फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं की, सखी के रूप में, बहन के रूप में, और ये भूमिकाएं सराही गईं। फिल्म तकदीर में गोपाल की छोटी लड़की की भूमिका

सन 1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की बेटी है। इसी फिल्म का गाना सुनिए।

0: एक और फिल्म आई थी सन 1974 में, काला सोना। इसमें इनकी भूमिका थी बेला।
1: हाँ, सुन सुन

0: चर्चित फिल्में बहारों की मंजिल 1968 में, महल 1969 में, आराधना पुरस्कार, नया रास्ता 1970 में, गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना।
1: अरे या, या, या।

1971 में अमर प्रेम प्यार की कहानी, जिंदगी जिंदगी, रिवाज, बुनियाद, हीरा, बॉबी, जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया, जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म में पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया, फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने, जो बहुत लाजवाब था।

जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गईं। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीबी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश। सन 1994 में फिल्म आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मू का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को दो अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, धाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ए ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

1990 के बाद की कई फिल्में बहुत चर्चित रहीं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम। फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया, जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्टेज पर इन्होंने एंकरिंग की। साथ में थे सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमिका में फरीदा जलाल नजर आईं। सन 1978 में इनका विवाह एक्टर तब्रेज बर्मावर के साथ हुआ, जो कि भटकल के थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और फिर इन्होंने शादी कर ली। फिल्म आराधना के बाद जीवन रेखा इनकी दूसरी फिल्म थी, जिसमें इन्होंने हीरोइन की भूमिका निभाई थी और साथ में थे उनके पति तब्रेज। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ।

जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फरीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फरीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। शोध, आलेख और स्वर शहनाज अख्तरी का। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
2: अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी 2 दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। गोथेनबर्ग पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के 2 देशों के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के साथ भारत मित्रता के दायरे को और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद श्री सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एचडी देवेगौड़ा ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान देश के लिए बेहतरीन योगदान दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एचडी देवेगौड़ा को धरती का सपूत बताया। श्री शाह ने कहा कि किसानों और ग्रामीण भारत के लिए उनके आजीवन समर्पण ने देश पर अमिट छाप छोड़ी है। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांग शान में 6ठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं और आपकी रेडियो दोस्त भावना कतना हाजिर है आज की लघु वार्ता लेकर। आज की लघु वार्ता में आज हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में।

अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। जी हाँ, आज के दिन हम ये दिवस मना रहे हैं। संग्रहालय, इसमें हमारे पूर्वजों की अनमोल यादों को संजो कर रखा जाता है। ये दिवस विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूकता इसमें पैदा करता है और इसीलिए ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लोग तो चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा बनी रहती हैं। ये यादें भी कई तरह से संजो कर रखी जाती हैं। हमारे पूर्वजों ने अपनी यादों को सुंदर तरीके से संजो कर रखा जिससे कि हम भी उनके बारे में जान सकें। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज हमारे लिए रख कर गए थे, उसे नुकसान ना पहुंचे इसके लिए कई संग्रहालय बना दिए गए जो हमें अपने पूर्वजों को याद रखने में मदद करते हैं। संग्रहालयों की विशेषता और उनके महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। इसका उद्देश्य आम जनता में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक बनाना है। ये दिवस विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रति वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अनुसार संग्रहालय में ऐसी अनेक चीज़ें सुरक्षित रखी जाती हैं जो मानव सभ्यता की याद दिलाती हैं। संग्रहालयों में रखी गई कई वस्तुएं प्रकृति और सांस्कृतिक धरोहरों को प्रदर्शित करती हैं। इस दिवस का उद्देश्य विकासशील समाज में संग्रहालयों की भूमिका के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना है और ये कार्यक्रम विश्व में काफी समय से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद 1992 से प्रत्येक वर्ष एक विषय का चयन भी करता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और ये जन सामान्य को संग्रहालय विशेषज्ञों से मिलाने एवं संग्रहालय की चुनौतियों से अवगत कराने के लिए स्रोत सामग्री विकसित करता है। संग्रहालयों में हमारे पूर्वजों की अनमोल यादों को संजो कर रखा जाता है। किताबें, पांडुलिपियां, रत्न, चित्र, शिलाचित्र और अन्य सामानों के रूप में तमाम तरह की वस्तुएं संग्रहालयों में हमारे पूर्वजों की यादों को जिंदा रखे हुए है। हर देश की संस्कृति को समझने में कई वस्तुएं विशेष योगदान निभाती हैं जिन्हें संग्रहालयों में सुरक्षित रखा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य आम जनता, छात्रों एवं शोधार्थियों को विभिन्न संग्रहालयों में उपलब्ध समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देना है। संग्रहालय के जरिए आज की पीढ़ी इतिहास के बारे में जान पाती है। संग्रहालय के ही जरिए भविष्य की पीढ़ी भी आज के युग के बारे में जान पाएगी। आज यानी 18 मई के दिन पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। बता दें आपको कि संग्रहालय वो स्थान होता है जहां पर इतिहास से जुड़े प्रमुख चीजों का संग्रह करके संरक्षण के साथ रखा जाता है। संग्रहालय भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पुरातत्व संग्रहालय है, जनजाति संग्रहालय है, रेल संग्रहालय है, रक्षा संग्रहालय है आदि। और इसके इतिहास के बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने 1977 में इसकी शुरुआत की थी। इसका मूल उद्देश्य संस्कृति और इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1983 में इस विषय पर एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके बाद से हर साल 18 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के निर्णय के अनुसार इस हर साल एक थीम के साथ मनाने की शुरुआत हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है।
और इस बार का थीम है संग्रहालय एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते हैं, इस विषय के तहत ये मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद यानी कि ICOM द्वारा स्थापित ये दिवस इस बात पर प्रकाश डालता है कि संग्रहालय किस प्रकार विभिन्न समुदायों के बीच संवाद, आपसी समझ और शांति को बढ़ावा देते हैं। तेजी से ध्रुवीकृत हो रही दुनिया में सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामुदायिक सहभागिता और शांति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में संग्रहालयों के बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है।

संग्रहालय हर देश की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय दिवस का उद्देश्य लोगों को इतिहास के बारे में शिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना है।

आपको बताएं, प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपियों का भी आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इससे लोग जान पाएंगे कि किस तरह की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान 75 और 100 साल पहले हमारी रही है। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान के तहत अमूल्य पांडुलिपि विरासत के संरक्षण में जो है काम किया जा रहा है। और इस अभियान के तहत ये पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और अभिलेखीकरण से आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की समृद्ध पांडुलिपि परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर समेत अन्य जानकारियां भी हमें मिल सकेंगी। दुर्लभ पांडुलिपियां आम घरों, मंदिरों, मठों, निजी परिवारों, संस्थाओं और विभिन्न समुदायों के पास सुरक्षित हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार नहीं हो पाया है। अब भाषा और संस्कृति विभाग की ओर से लोगों से इससे संबंधित जानकारियां लेने का कार्य शुरू कर दिया है। वैसे यहाँ सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि जब प्रिंटिंग युग नहीं था तो लोग उपचार से संबंधित हर नुक्से इनको हाथों से लिख कर रखते थे, और किस जगह का क्या इतिहास रहा है ये भी उस दौरान पांडुलिपियों में दर्ज होता था। पांडुलिपियों का तात्पर्य कागज, भोजपत्र, ताड़पत्र, कपड़ा, धातु आदि पर हाथ से लिखे गए ग्रंथ जो 75 से 100 वर्ष प्राचीन हैं। ये पांडुलिपि किसी भी भाषा और लिपि में हो सकते हैं। संरक्षण के बाद लोग घर बैठे ही जान पाएंगे कि हमारे देश प्रदेश की समृद्ध संस्कृति किस रूप में रही है, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व किस रूप में है। इससे छिपी हुई सांस्कृतिक धरोहर और पहचान सामने आएगी। इसके लिए पुराने संस्थान और स्थलों से भी विभाग लगातार संपर्क कर रहा है। पांडुलिपियां हस्तलिखित ग्रंथ, पुराने दस्तावेज या फिर ऐतिहासिक अभिलेख, ये सब उपलब्ध हैं और अभी तक सूचीबद्ध या पंजीकृत नहीं हुए हैं। इसका काम चल रहा है और विभाग के अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था या फिर समुदाय के पास किसी भी प्रकार की इससे संबंधित जानकारी हो तो वो विभाग के साथ साझा कर सकते हैं। और इस अभियान में जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की समृद्ध पांडुलिपि परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। लोग ऑनलाइन सर्वेक्षण में भाग लेकर पांडुलिपियों का पंजीकरण भी करवा सकते हैं और ये हमारी धरोहरों को, हमारी संस्कृति को जीवंत रखना, आने वाली पीढ़ियों तक उसको पहुँचाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है और हम बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो ये हमने आपसे आज जानकारी साझा की अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में, और ये थी आज की लघु वार्ता। जी, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप लघु वार्ता सुन रहे थे, सुबह के 10:15 हुए हैं और अब हम हाजिर हैं सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है कुछ तुम चलो कुछ हम चलें।

कुछ तुम चलो कुछ हम चलें। सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं भावना कतना। बिल्कुल जी, आज एक बार फिर आपको लिए चलते हैं पॉजिटिविटी की उस दुनिया में जहाँ नेगेटिविटी का कोई नामो निशान नहीं है, चारों तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी ही है। और इस पॉजिटिविटी में अगर हम रहेंगे, इस सकारात्मकता में अगर हम रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, अच्छे इंसान भी बढ़ेंगे सफल इंसान के साथ साथ। जी हाँ, हम सभी एक ऐसे जीवन की लालसा रखते हैं जो प्रेम, शांति, आनंद और संतोष से परिपूर्ण हो। हर कोई यही चाहता है कि हमारे जीवन में बस सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो, प्रेम हो, शांति हो, चाहते हैं ना सब ऐसे ही। लेकिन आप सोचिए, अगर ऐसा जीवन हमारा हो तो ऐसा जीवन पाकर क्या कभी हमारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी? क्या कभी निराशाएं नहीं आएंगी? क्या चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। जीवन चाहे सुख शांति भरा हो, लेकिन चुनौतियां, निराशाएं, कठिनाइयां अक्सर आती रहती हैं। यही तो जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन जब हम भरपूरता के भाव के साथ जीने की कला सीख लेते हैं ना, तो ये समस्याएं जो है ना, वो हमें विचलित नहीं करती बल्कि हमें शक्ति देती हैं। ठीक ही तो कहा गया है, जीवन परिस्थितियों के बदलने से नहीं बदलता, जीवन तो तब बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं। और इस परिवर्तन की शुरुआत होती है कृतज्ञता से, वो सद्गुण जो हमें अभावों के बजाय कृपाओं को देखना सिखाता है। और अगर ये गुण हम सब में आ जाए ना, तो फिर हम ये जीवन की जो छोटी मोटी कठिनाइयां, समस्याएं हैं ना, उनको देखने के बजाय हम सिर्फ ये देखेंगे कि भगवान ने कितना कुछ हमें दिया है और किस तरह से हम उसका फायदा उठा सकते हैं। आजकल देखिए ना, हर इंसान को देखिए, वो हर किसी में कमी ही निकालता रहता है, यहाँ तक कि प्रकृति में भी, यहाँ तक कि भगवान में भी, है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कमियों को निकालते निकालते उनका जीवन भी ऐसे ही बन जाता है, नकारात्मकता से भरा हुआ। इसके बजाय अगर हम वो देखें कि हमने जीवन में क्या हासिल किया है, भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, कितना कुछ हम कर सकते हैं, प्रकृति से सीख सकते हैं, तो हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे। जब हम जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलते हैं ना, तो हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं भी एक नया स्वरूप लेने लगती हैं। और देखिए, इस भावना का एक उल्लेखनीय उदाहरण है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन, उनके उसमें देखने को मिलता है, जिन्होंने अपने विज्ञान शिक्षक के प्रति जीवन भर आभार और सम्मान व्यक्त किया। ये वाक्या क्या था? बचपन में डॉक्टर कलाम एक सामान्य स्कूल में पढ़ते थे और एक दिन पक्षियों की उड़ान के विषय में पढ़ाते समय उनके जो शिक्षक थे, उनको एहसास हुआ कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान से छात्र उस विषय को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। तो वो जो है छात्राओं को पढ़ाने के लिए समुद्र के तट पर ले गए और उड़ते हुए पक्षियों का निरीक्षण करने के लिए कहा। उनके पंखों की फड़फड़ाहट, संतुलन, उत्थान और दिशा को निहारने के लिए कहा गया। तो जो युवक कलाम थे, उन्होंने उनके लिए ये अनुभव जो है वो अविस्मरणीय बन गया। किताबों के पन्नों से निकलकर विज्ञान एक विस्मयकारी अनुभूति में बदल गया और इसी अनुभव ने उनके भीतर उड़ान के प्रति आकर्षण जगाया और वैमानिकी तथा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनकी यात्रा को प्रशस्त किया। बिल्कुल, ये वाक्य हमें सिखाता है कि अगर हम सिर्फ ज्ञान प्राप्त ना करके उसको महसूस भी करें, तो ही हम सही मायने में ज्ञानी बनते हैं, तो ही हम आगे सही मायने में बढ़ पाते हैं। और देखिए ना, इस तरह जब डॉक्टर कलाम ने ज्ञान प्राप्त किया तो वो कितने बड़े वैज्ञानिक बने। उन्होंने ये सीखा कि वैज्ञानिक जिज्ञासा सीखी, परिस्थितियों से परे सपने देखने का साहस सीखा और हर भेदभाव से परे मानवीय गरिमा। जी हाँ, उनकी कृतज्ञता केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, उन्होंने उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा भी। और यही हमें भी करना है। हमने सिर्फ ज्ञान
को सीखना नहीं है, सिर्फ किताबी कीड़ा ही नहीं बनना है, हमने उस ज्ञान को, उन विचारों को अपने व्यवहार में उतारना भी है। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, ताज़ा एग्जाम्पल है ये तो उदाहरण, देश की 42 पंचायतों को अपनी समस्याओं का खुद समाधान निकालने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है ना। और पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा भी की है, और इनमें देश के कई राज्यों के गांव अलग अलग श्रेणियों में चुने गए हैं। और मैं आपको उन गांवों की बात बताती हूँ जिन्होंने अपनी समस्याओं का हल निकाला और दूसरों के लिए ये एक उदाहरण भी बन गए। इनमें पर्यावरण, पानी की कमी, ऑनलाइन सुविधाएं, बीमारियां, बढ़ते अपराध जैसी कई समस्याएं थी इन गांवों में भी, जैसे कि आजकल हर जगह है। लेकिन इन गांव वालों ने इनसे निपटने की योजना बनाई और बिना कोई राज्य या केंद्र सरकार के सहयोग से खुद ही उस परेशानी से निजात पा ली। और कई गांवों ने तो इसके लिए ऐसे अनोखे तरीके निकाले जिन्हें अब दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, ईच गांव महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए इस गांव को जो है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। और यहाँ देखिए बच्चों में कई तरह की समस्याएं जो है वो फैली हुई थी, फिर यहाँ पर बाल पंचायत बनाई गई, बालक सरपंच, उप सरपंच बच्चों की समस्याएं सुनते हैं, फिर पंचायत ज़रूरी कदम उठाती है और अब गांव में बच्चों से जुड़े अपराध जो है वो शून्य हो गए हैं। कवर्थानॉर्थ मिजोरम की बात हम करें तो मामित जिले की कवर्थानॉर्थ पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। विलेज काउंसिल ने बताया, सेक्रेटरी ने, कि हमने सफाई को सिर्फ सरकारी पहल तक सीमित नहीं किया, साल में 2 बार स्वच्छता प्रतियोगिता कराते हैं, स्कूल, पूजा स्थल, दुकानें, घर, सरकारी दफ्तर इनको अलग अलग पुरस्कार देते हैं। इससे जागरूकता बढ़ी और सफाई जो है वो पूरे गाँव में फैल गई। ऐसी ही देखिए खरीवली महाराष्ट्र की बात करें, रायगढ़ जिले के खरीवली को जल पर्याप्त पंचायत का प्रथम पुरस्कार मिला है। यहाँ भी पानी की कमी जो है वो सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन गांव वालों ने क्या किया, इस कमी को दूर करने के लिए वाटर बजट बनाया, 7 नए जल स्रोत तैयार किए, स्वच्छ जल के लिए वाटर ATM लगाए, FTK किट से पानी को स्वच्छता मापते हैं और जल जनित बीमारियां जो हैं वो वहां पे होना अब बंद हो गई हैं। मतलब कि इन गांवों के बारे में, इन पंचायतों के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए समस्याएं यहाँ भी थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने जो है वो खुद उस समस्या का हल निकाला और आज देखिए उस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि आप भी देखिए, समस्याएं हर किसी के जीवन में होती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का जीवन बिल्कुल समस्याओं से रहित होता है, ऐसा नहीं है, हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन उसका हल कैसे निकालना है, उस समस्या को आप देखते किस नज़रिए से हैं ये मायने रखता है। अगर उस समस्या को आप पॉजिटिव तरीके से देखते हैं तो वो समस्या आपके लिए एक अवसर बन जाती है और उस समस्या का समाधान कितने ही तरीकों से आप कर सकते हैं, बस अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हर समस्या, हर समाधान आपके आसपास ही होता है, बस आप ढूंढ कर तो देखिए, खोज कर तो देखिए।

जी हाँ, कुछ तुम चलो कुछ हम चलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी हमीरपुर से प्रसारित किया जा रहा है, सकारात्मक ऊर्जा की तरफ एक कदम। बिल्कुल, देखिए अपने मन को हम अगर सावधानी से देखें ना, क्योंकि वही हमारे जीवन का निर्माण कर रहा है। अगर हम अपने भीतर प्रेम, विश्वास और आशा का वातावरण बनाते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन बदलने लगता है। हम में से देखिए ज़्यादातर लोग अपने जीवन को केवल बाहरी घटनाओं से बना हुआ मानते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि जीवन पहले भीतर बनता है, फिर बाहर आकार लेता है। संसार में जो कुछ भी मनुष्य ने बनाया है वो पहले एक विचार ही तो था। हर आविष्कार, हर उपलब्धि पहले किसी के मन में विचार के रूप में जन्मी थी और फिर वही विचार साकार हुआ। मनुष्य अपने जीवन में बार बार वही अनुभव करता है जिस पर उसका ध्यान सबसे अधिक टिका रहता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार भय में जीता है तो उसका मन हर समय परिस्थिति में खतरा ढूंढने लगता है। अगर कोई अपने आप को असफल मानता है तो वो अवसरों के बीच भी अपनी असफलता के प्रमाण खोज लेता है और वो सोचता है कि भाई मैं तो सफल हो ही नहीं सकता। और अगर कोई व्यक्ति विश्वास करता है कि जीवन उसके लिए संभावनाओं से भरा है तो वही संसार उसे नए द्वार खोलता हुआ दिखाई देने लगता है। संसार वही रहता है लेकिन देखने वाले की चेतना बदल जाती है। विचार केवल शब्द नहीं होते, वो ऊर्जा होते हैं। आप किसी बात को बार बार सोचते हैं तो वो धीरे धीरे आपके भीतर विश्वास का रूप लेने लगती है ना? आपने भी आजमाया होगा इस बात को। विश्वास केवल मानसिक धारणा नहीं है, वो आपके व्यक्तित्व का केंद्र बन जाता है और फिर आपके फैसले, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपका व्यवहार, वो आदतें उसी विश्वास के अनुसार ढलने लगती हैं। और इसीलिए दो लोग एक ही परिस्थिति में रहकर भी अलग जीवन जीते हैं। एक व्यक्ति कठिनाइयों के बीच टूट जाता है जबकि दूसरा उन्हीं मुश्किलों के बीच में से अपनी शक्ति खोज लेता है। अगर आप भी कृतज्ञता में जीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन उन संभावनाओं को देखने लगेगा जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा था। जब आप धन्यवाद कहते हैं ना, तो आप ये स्वीकार करते हैं कि जीवन में पहले से ही बहुत कुछ अच्छा मौजूद है और यही स्वीकार्यता आपके भीतर समृद्धि की भावना

विश्वास और आशा का वातावरण बनाते हैं तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को बदलते हैं ना, तब आप केवल अपना मूड नहीं बदलते, आप अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। संसार बाहर से उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि आपका अंतर्मन। आपके अंतर्मन में जो चल रहा है ना, वही अंततः आपके अनुभवों का रूप लेता है। इसलिए अपने मन को भय का घर मत बनने दीजिए, उसे आशा, कृतज्ञता और विश्वास का स्थान बनाइए। क्योंकि जिस क्षण आप अपने भीतर प्रकाश जलाते हैं ना, उसी क्षण जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। आपको मैं बताती हूँ दिव्या सिंह के बारे में। दिव्या सिंह, जी हाँ, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा इन्होंने पूरी की है। उत्तर प्रदेश की युवा साइकिलिस्ट दिव्या सिंह ने ये साबित कर दिखाया कि सपनों की उड़ान के लिए सिर्फ हौसले चाहिए, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। दुनिया के सबसे कठिनतम और चुनौतीपूर्ण पर्वतीय रास्तों में से एक गिने जाने वाले एवरेस्ट बेस कैंप तक की 14 दिनों की साइकिल यात्रा पूरी कर दिव्या ने हर किसी को प्रेरित कर दिया है। बर्फीली हवाएं, खतरनाक मोड़, ऊंचे पहाड़ और खराब मौसम, हर चुनौती उनके सामने दीवार बनकर खड़ी थी। लेकिन दिव्या ने हार मानने के बजाय हर मुश्किल को अपने जुनून से पार किया। और खास बात ये रही कि बिना किसी मदद के दिव्या ने अपने दम पर खुद को इस कठिन अभियान के लिए तैयार किया। जी हाँ, दिव्या बचपन से ही साहसिक कार्यों की ओर आकर्षित रही। 7वीं कक्षा में उन्होंने माउंट एवरेस्ट और प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल की कहानी पढ़ी और उसी समय उनके मन में एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का सपना जन्मा। और वर्षों तक उस सपने को भीतर अपने भीतर संजोए रखने के बाद दिव्या ने आखिरकार अपने जुनून को हकीकत में बदल दिया। और बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, जो सोचते हैं उसको करके भी दिखाते हैं, और दिव्या ने ऐसा किया। अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिव्या सिंह ने करीब 1.5 साल तक लगातार कड़ी मेहनत और तैयारी की। वर्ष 2023 और 24 में वे 2 बार पैदल एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा कर चुकी थी, जिसने उनके आत्मविश्वास और अनुभव को और मजबूत बनाया। जी, और देखिए, उन्होंने थोड़ा प्रशिक्षण भी लिया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और नेपाल के कठिन पहाड़ी इलाकों में ऑफ रोड माउंटेन साइकिलिंग का, है ना। और आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा पूरी की, तो आज हम उनको इस ऊंचाई पर देख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे उन्होंने संघर्ष कितना किया, ये भी तो हमें जानना ज़रूरी है ना। देखिए, एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने के अपने सपने को पूरा करने के लिए दिव्या सिंह ने लगातार 14 दिनों तक दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर साइकिल चलाई। और इस दौरान उन्होंने खड़ी चढ़ाइयों और चुनौतीपूर्ण मौसम का सामना करते हुए हर दिन करीब 10 से 12 घंटे तक साइकिलिंग की। ऊंचाई बढ़ने के साथ रास्ते और भी कठिन होते गए, जहां हर मोड़ उनके धैर्य, शारीरिक क्षमता और मानसिक मजबूती की परीक्षा ले रहा था। लेकिन दिव्या ने हार मानने के बजाय अपने हौसले और जुनून के दम पर हर चुनौती को पार किया। उनकी ये यात्रा सहन शक्ति और अटूट संकल्प की प्रेरणादायक मिसाल बन गई। इस कठिन अभियान के दौरान दिव्या सिंह को कई बार गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऊंचाई बढ़ने के साथ जमा देने वाली ठंड, कम ऑक्सीजन और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा लगातार उनके सामने बना रहा। कई बार हालात ऐसे हो गए कि सांस लेना भी मुश्किल होने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर कई जगह ऐसी भी आई जहां साइकिल चलाना संभव नहीं था। ऐसे मुश्किल पलों में दिव्या ने अपनी साइकिल को कंधों पर उठाकर आगे बढ़ना जारी रखा। ठंडी तेज हवाएं, शरीर को तोड़ देने वाली थकान और हर पल बदलता मौसम इस यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बना रहे थे। लेकिन उसका अटूट आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प हर कठिनाई पर भारी पड़ा। दिव्या सिंह की ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए साहसिक खेलों के क्षेत्र में एक मिसाल बन गई है। एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचना अपने आप में बेहद दुर्लभ और चुनौतीपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, और दिव्या ने इसे हासिल कर ये साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। उनकी सफलता पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान माने जाने वाले एडवेंचर स्पोर्ट्स में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और क्षमता का सशक्त

संदेश देती है। उनकी कहानी आज हजारों युवाओं, खिलाड़ियों और यात्रियों को ये प्रेरणा दे रही है कि सीमित संसाधन और कठिन परिस्थितियां भी सपनों को रोक नहीं सकती। आप जो कुछ चाहते हैं वो आपके भीतर ही है, अपने भीतर देखिए और आप सब कुछ पा लेंगे। मजबूत इरादों के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। विपरीत परिस्थितियां डराने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और ये सब हमें पता चला दिव्या की इस जो रियल स्टोरी से कि कठिनाइयां कितनी भी आए लेकिन अगर आप में हौसला, आत्मविश्वास है ना, तो आगे बढ़ने से, सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता।

ए मेरे दिल तू गाए जा। जी हाँ, जिस तरह से हम अपने मन को बनाते हैं वो वैसे ही बन जाता है। बिल्कुल नज़रिए की बात होती है। और कुछ तुम चलो कुछ हम चले में भी हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप अपने मन को भय, संदेह और नकारात्मक सोच से मुक्त करके उसमें विश्वास, कृतज्ञता और आशा का प्रकाश भरते हैं ना, तभी जीवन वास्तव में बदलना शुरू होता है। तो संसार वैसा ही दिखाई देता है जैसा आपका अंतर्मन होता है। इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए, अपनी भावनाओं को प्रेम से भरिए और हर परिस्थिति में संभावनाएं खोजिए, तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। जी तो कोई भी काम कीजिए, मन से करिए, सकारात्मक सोच के साथ करिए। और अब इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चलें समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त भावना कतना को अनुमति दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चलें। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 10:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंग।

लोक रंग कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोताओं जो आहंदा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। हाजिरन पहाड़ी लोक गीतां पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग लेकर इन्हें, तो आइए करदे हैं कार्यक्रम की शुरुआत, सुनदे हैं ये लोक गीत।

0: नीलम शर्मा दा गाया ए लोक गीत अहां सुनिया। अगला लोक गीत अहां सुनना इस अंतराल ते बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। कन्ने इस वक्त तुसा सुना दे कार्यक्रम लोक रंग। दिखा भाई, लोक संस्कृति अहं दी पहचान है, अहं दी परंपराओं का उत्सव है, कन्ने लोक रंग उसकी खूबसूरत मुस्कान जेड़ी जे अहां अहां दियां जड़ां ने जोड़ी करी रखदी, कन्ने अपनियां जड़ां ने जुड़ना ही संस्कृति का सब ते सुंदर रंग है।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी श्रोताओं, हुण इसी ने सौगी आज दा कार्यक्रम संपन्न करने दी उन लैंदेन अनुमति। नमस्कार, राम राम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के शहरी निकायों में कल हुए शांतिपूर्ण मतदान के बाद देर शाम तक आए नतीजों में अधिकतर जगहों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कल 4 नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी सहित 25 नगर परिषदों व 22 नगर पंचायतों में वोट डाले गए। चुनाव नतीजों में कुल्लू जिला के मनाली नगर परिषद में सभी 7 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। कुल्लू नगर परिषद में भाजपा और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार बराबरी पर रहे, जबकि 5 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी। भुंतर, बंजार और निरमंड के अधिकतर वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। कांगड़ा जिले की 5 नगर परिषद व 1 नगर पंचायत में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। जिले में आए चुनाव नतीजों के बाद राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जनहितैषी नीतियों की जीत बताया है।
1: जिला कांगड़ा में 6 के 6 स्थानों में चुनाव हुए थे, वहां पे कांग्रेस ने जो है भारी बहुमत से जीती है। और ये कांग्रेस सरकार की नीतियां और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो काम जो है हिमाचल प्रदेश के लिए और जिला कांगड़ा के लिए विशेष कर किए थे, ये उसका नतीजा है कि यहाँ पे जो है कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है।
0: दूसरी ओर ऊना जिले में नगर निकाय के चुनाव नतीजों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 6 में से 4 निकायों पर अपना कब्जा जमाया है। चंबा नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 6 जबकि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 5 वार्डों में जीत दर्ज की। सिरमौर जिले के नाहन नगर परिषद में एक बार फिर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने कब्जा किया है। यहां 13 वार्डों में से 7 पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। जीत की बधाई देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत सीधे तौर पर दर्शाती है कि प्रदेश में चल रही कांग्रेस समर्थित सरकार से लोग तंग आ चुके हैं।
2: भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की विजय ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार हिमाचल के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है, जिसने 3.5 साल में हिमाचल के जनमानस का

0: जीना दूभर कर दिया है। और हम एक बार फिर इस बात को वायदे से कहते हैं, आने वाले साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बनेगी। नाहन, सिरमौर और हिमाचल में विकास का एक नया दौर शुरू होगा।
1: शिमला जिला के रामपुर में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 9 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर नगर परिषद में पहली बार अपना परचम लहराया है। बिलासपुर नगर परिषद के अलावा घुमारवी, शाहतलाई व नैना देवी के अधिकतर वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। मंडी जिले के सरकाघाट नगर परिषद में भाजपा व कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 3-3 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं सुंदरनगर के 13 वार्डों में भाजपा समर्थित 9 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। जिले के नेरचौक नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 8 वार्डों में जीत का परचम लहराया है, जबकि जोगिंद्रनगर नगर परिषद में भाजपा अव्वल रही है। सोलन जिला के परवाणु नालागढ़ नगर परिषद में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने परचम लहराया है। जिले की अर्की व कंडाघाट नगर पंचायत में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने सेंध मारी है। इस बीच नगर निगम चुनाव के नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे। प्रदेश की पंचायतों में 26, 28 व 30 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने तेजी पकड़ ली है। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं उनके सामने रखकर वोट मांग रहे हैं। प्रचार की इसी कड़ी में जिला परिषद से लेकर वार्ड सदस्य तक उम्मीदवार लोगों के साथ बैठकें कर अपनी जीत सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक कला को सहेजने के लिए निरंतर कार्य कर रहे केलंग निवासी युवा सामाजिक उद्यमी तंजीन बौद्ध को आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा अनसंग हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तंजीन बौद्ध और उनकी टीम लंबे समय से लाहौल की विलुप्त होती सांस्कृतिक विरासत को बचाने के प्रयासों में जुटी हुई है। उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से एक 80 साल पुराने पारंपरिक घर को संरक्षित कर धरोहर केंद्र के रूप में विकसित किया है। इसके अलावा वे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं। धर्मशाला में कल खेले गए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 8 विकेट पर 198 रन ही बना सकी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 PM। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

सोनू निगम की आवाज़ में आपने सुने फैज़ अनवर के बोल और साजिद वाजिद की धुन, और अब सुनते हैं सोनू निगम की ही आवाज़ में ये गाना। नुसरत बद्र के बोल हैं, सोनू निगम की धुन।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

रंग तरंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं तेरे बिना एल्बम से अभिजीत की आवाज में नुसरत बद्र के बोल और सप्तर्षिका संगीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अदनान समी और आशा भोसले का गाया हुआ ये गाना, बोल रियाजुर रहमान सागर के हैं।

0: चांद की आवाज़ में ये गाना अभी आपने सुना और यही है आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: रंग

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वनिता मंडल।
1: वनिता मंडल, वनिता मंडल।

0: वनिता मंडल कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को मेरा यानी समीता का और मेरे साथ
1: भावना का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी भावना जी, आज हम फिर हाजिर हैं हमारी सखियों के साथ कुछ बातचीत और कुछ जानकारियां साझा करने के लिए, है ना?
1: बिल्कुल।
0: और उम्मीद करते हैं कि हमारी सखियां तंदुरुस्त होंगी, स्वस्थ होंगी और अपना और अपनों का ख्याल रख रही होंगी।
1: जी, और समिता, आज कौन सी जानकारी हम अपनी सखियों को देने वाले हैं, जरा ये तो बताइए।
0: भावना जी, देखिए, जानकारी तो हम हमारी सखियों के साथ ज़रूर साझा करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत भी हमने लगभग कर दी है ना
1: जी,
0: लेकिन पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ।
1: अच्छा, अभी तो कोई हमने बात ऐसी की नहीं ज़्यादा, फिर तुम्हारे मन में सवाल भी आ गया, वो क्या भाई?
0: जी, क्योंकि देखिए, सवाल जो है वो एक तरह से महत्वपूर्ण भी है और कहीं ना कहीं हमारे दिलों से जुड़ा हुआ भी है। मुझे आप ये बताइए कि आपकी दादी या नानी की कोई ऐसी चीज़ है जो आपने अभी तक अपने पास सहेज कर रखी है?
1: ये तो हाँ, मुझे सोचना पड़ेगा। वैसे हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने रखी हुई हैं। देखिए, पहले जो दादी नानी, ज़्यादातर देखिए पहले के बुज़ुर्ग जो हैं वो घर में ही चीज़ें बनाते थे, है ना
0: जी।
1: जैसे कि क्रोशिए से बैठने के लिए वो छोटा सा बैठकू बना लिया, है ना, और कुछ वो तारों से टोकरियां बना लेते थे, है ना। एक आधी टोकरी तो अभी तक भी पड़ी है हमारे घर में।
0: बिल्कुल।
1: और अब देखिए, उनको उनके पहले के गहने होते थे, पुराने जमाने के डिजाइन कोई गले का सेट वगैरह, उनको जैसे आज भी मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ ना कि भाई ये इनका है, दादी का, नानी का, तो वो कहते हैं कि मतलब पहले कितने सुंदर डिजाइन होते थे, सोने की चमक भी अलग सी होती थी, और जो टोकरियां बनाते थे बच्चे तो उन्हें को देख के हैरान ही हो जाते हैं कि भाई ये हाथ से बनाई हुई है। मतलब वही देख के हमें भी ऐसा लगता है कि कैसे बनाते होंगे।
0: जी बिल्कुल। देखिए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने इतने उदाहरण दिए हैं ना, अभी भी हमें अपने घरों में वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। कोई हमारी कोई देखिए बांस की लकड़ियों के कोई टोकरियां हैं, है ना, कोई किसी चीज़ के कोई कवर हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पुराने ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो आज हमें देखने को नहीं मिलते।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और जो पुराने डिज़ाइन हम देखते हैं तो वो दिल को बहुत लुभाते हैं। तो देखिए, इस तरह की ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक सांस्कृतिक विरासत ही तो हैं, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और तो ये जो सांस्कृतिक विरासत है, इनको हमने आज भी सहेज कर रखा हुआ है, और जब हम इन्हें सहेज कर रखते हैं तो देखिए आगे वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इनकी तरफ आकर्षित होती हैं। तो आज का जो हमारे इस कार्यक्रम का विषय है वो भी हमारा यही है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस।
1: बिल्कुल समिता, हाँ, आज तो हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मना रहे हैं, आज 18 मई का दिन है। तो अच्छा, आज यही जानकारी हम अपनी सखियों को भी देने वाले हैं, है ना?
0: जी बिल्कुल। तो देखिए, हर साल 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, और इस दिन को मनाने का जो खास उद्देश्य है वो है समाज में संग्रहालयों यानी म्यूजियम की महत्ता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और इतिहास के प्रति लोगों को जागरूक करना।
1: बिल्कुल समिता, देखिए अब हम जैसे बहुत पीछे जाएं तो हमारे परदादा परनानी जो थे, जिनको हमने कभी देखा भी नहीं है, लेकिन उनकी विरासत हमें पता है। जैसे हमारे मम्मी पापा ने, दादा दादी ने हमें बताया है कि देखिए ये उनके ज़माने से चली आ रही, चाहे वो परंपरा कह लो
0: जी,
1: या फिर कोई भी चीज़ होती है उनकी बनाई हुई, जैसे हम आज अपने बच्चों को दिखा रहे हैं अपनी दादी नानी की बनाई हुई चीज़ें, वैसे हमने भी देखी हैं, और उन्हें देख के हम बहुत उत्सुक होते थे कि भाई ये कैसे बनाई होगी, कैसे करते होंगे, कैसे क्या किया होगा। क्योंकि आज के बच्चों को अगर आप वो सब चीज़ें बताओ, जैसे कि क्रोशे की बनी कोई चीज़ है, हाथ से बनी कोई टोकरी है, हाथ से बना कोई कालीन वगैरह, तो वो हैरान होते कि भाई इसे हाथ से भी बनाया जा सकता है।
0: जी बिल्कुल। देखिए, अब ये सांस्कृतिक हमारा आदान प्रदान ही तो है,
1: जी,
0: है ना?
1: जी, जी, जी।
0: अब संग्रहालय जो हैं वो सिर्फ पुरानी कलाकृतियों को सहेजने की ही जगह नहीं, बल्कि ये हमारी सभ्यता ज्ञान और संस्कृति का भी जीवंत दस्तावेज है, है
1: बिल्कुल,
0: ना? अब देखिए इस खास दिन की ही हम बात करें तो ये दिन हमें हमारे पूर्वजों की अनमोल यादों और प्राचीन समृद्ध जो परंपराएं हैं उनको जानने और समझने का अवसर देता है,
1: जी,
0: है
1: ना? जी।
0: और बहुत सी हम ऐसे भी देखें तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बहुत से संग्रहालयों और स्मारकों में विशेष प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं, है ना? और तो हर साल इस दिन के लिए एक खास थीम जो है वो भी एक निर्धारित की जाती है
1: जी।
0: और इस वर्ष की हम अगर थीम की बात करें तो इस वर्ष का विषय है एक विभाजित विश्व को एकजुट करने वाले संग्रहालय, है ना? अब इसका उद्देश्य ये है कि सांस्कृतिक और सामाजिक दूरियों को मिटाकर शांति और समझ को बढ़ावा मिले। तो इसी से संबंधित आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि परंपराओं, कला, हस्तशिल्प और संस्कारों को संजोने में महिलाओं की क्या भूमिका है।
1: जी, और महिलाओं की तो मैं कहती हूँ समिता, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इनको संजो के रखने के लिए, क्योंकि देखिए हम ही होते हैं जो कभी भी सफाई अभियान जब हमारा चलता है घर का, तो पुरानी चीज़ें जो हैं वो हम सोचते हैं कि बाहर निकालें और नई चीज़ें अपने घर में लाएं, है ना? सबको शौक होता है कि नई नई चीज़ें अपने घर में लाएं, अपने घर को सजाएं नई नई चीज़ों का। लेकिन कभी कभी हम ये देखते हैं जो हमारी पुरानी चीज़ें जिनसे हमें लगाव होता है, स्पेशली जो हमारी दादी नानी की से जुड़ी हुई होती है, तो हमें वो लगता है कि ये तो इनकी याद है, तो हम इसको भला कैसे बाहर निकाल सकते हैं या फेंक सकते हैं, है ना? कुछ भावनाएं उससे जुड़ी हुई होती हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी भी अपने से दूर करना नहीं चाहते। तो यही संजो कर जो हम रखते हैं ना, यही हमारी विरासत होती है। आने वाली पीढ़ी जो देखती है उनको भी पता चलता है कि किस तरह से पहले काम किया जाता था, हमारी संस्कृति क्या है और किस तरह से लोग मेहनत करके क्या क्या चीज़ें बनाते थे, है ना?
0: बिल्कुल। देखिए अब महिलाओं की ही बात करें तो महिलाएं सिर्फ परिवार की देखभाल ही नहीं करती बल्कि वो संस्कृति की सच्ची संरक्षक भी होती है,
1: बिल्कुल,
0: है ना? अब घर में बच्चों को, जैसा कि आप भी बता रही हैं, बच्चों की देखिए पहली शिक्षा जो है बच्चों को वो माँ से ही मिलती है, है ना? बच्चा बोलना सीखता है, चलना, व्यवहार करना, बड़ों का सम्मान करना, वो सब कुछ अपनी माँ से ही तो सीखता है,
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह एक महिला ही है जो परिवार में संस्कारों की नींव रखती है।
1: जी।
0: अब भारतीय परंपराओं में त्योहारों का भी बहुत महत्व रहता है ना, चाहे देखिए दीपावली हो, होली हो, करवा चौथ हो या रक्षाबंधन हो, है ना?
1: जी।
0: अब हर पर्व की तैयारियों में महिलाओं की बहुत विशेष भूमिका रहती है, है ना? वो घर को सजाती हैं, पारंपरिक व्यंजन बनाती हैं और परिवार को भी एकजुट रखती हैं। तो इन त्योहारों के माध्यम से हमारी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है।
1: जी,
0: है ना? अब इसी तरह महिलाओं का योगदान कला और हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण है, है ना? अब भारत के बहुत से राज्यों में देखें तो महिलाएं पारंपरिक कढ़ाई, बुनाई, मिट्टी की कला, रंगोली, मधुबनी पेंटिंग, है ना, फुलकारी, चिकनकारी और भी बहुत कुछ हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं। तो ये हस्तनिर्मित वस्तुओं के माध्यम से अपनी कला को जीवित रखती हैं महिलाएं,
1: जी,
0: है ना? और ये कलाएं जो हैं वो सिर्फ रोजगार का ही साधन नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान भी हैं।
1: बिल्कुल, इन सब चीज़ों की समिता तुमने बात की ना कि ये जो हम हाथ से बनाते हैं, चाहे वो रंगोली हो, मिट्टी से कोई घड़ा हो, बुनाई कढ़ाई, ये सब हमने पीछे अपने माता पिता दादे नानी से ही तो सीखी है।
0: जी।
1: और गाँव की बात करें ना हम, तो आज भी महिलाएं जो हैं वो लोकगीत जो गाती हैं, लोक नृत्य जो करती हैं और वो जो पारंपरिक जो हमारे रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो हम आगे औरों को भी बताते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा रिवाज है हमारा, तो ये भी तो हमने अपने बुजुर्गों से ही तो सीखा है, है ना? जिसको हम आगे प्रेषित कर रहे हैं और आगे संजो के रख रहे हैं, चाहे कोई भी परंपरा हो, देखिए शादी हो, ब्याह, जन्मोत्सव हो, धार्मिक आयोजन, इन सब में महिलाएं अपने गीतों और परंपराओं से वातावरण को सांस्कृतिक रंगों से भर देती हैं और ये चीजें जो हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति को विशेष बनाती हैं।
0: बिल्कुल भावना जी, देखिए अब समय बदल रहा है, है ना?
1: जी जी,
0: समय बदल रहा है, समय के साथ आधुनिकता भी बढ़ रही है ना, और लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव आ रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे में महिलाओं की जिम्मेदारी जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आज की महिला देखिए घर और बाहर दोनों जगह अपनी भूमिका निभाते हुए संस्कृति और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए हुए है। बहुत बड़ी चुनौती भी है ये, है ना, लेकिन एक संतुलन जो है वो बनाए रखा है। वो बच्चों को आधुनिक शिक्षा भी देती है और साथ ही भारतीय संस्कारों से भी जोड़ कर रखती है।
1: जी बिल्कुल।
0: अब देखिए, महिलाएं समाज को जोड़ने का भी काम करती हैं, परिवार में प्यार, सहयोग और सम्मान का वातावरण बनाए रखने में उनका खास योगदान रहता है।
1: जी,
0: है ना। अब आज के समय में देखिए, ज़रूरत इस बात की है कि हम महिलाओं के इस योगदान को पहचानें और उनका सम्मान करें, है ना। हमें अपनी बेटियों को और आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी संस्कृति और परंपराओं से ज़रूर जोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक कहा समिता। जैसे कि अब देखिए ना, घर की महिलाएं बच्चों को त्योहारों का महत्व समझा सकती हैं। हर त्योहार हम मनाते हैं, बच्चे भी मनाते हैं, लेकिन क्यों मना रहे हैं ये बताना माता पिता का फर्ज है, है ना। जैसे कि दीपावली है, केवल पटाखों का नहीं बल्कि प्रकाश और सकारात्मकता का पर्व है। रक्षाबंधन को देखिए तो भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इसी प्रकार दादी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियां जो है ना, बच्चों को नैतिक शिक्षा और संस्कार देने का सबसे सुंदर माध्यम बन सकती हैं।
0: जी बिल्कुल। अब देखिए, हम अपने बच्चों को पारंपरिक कला और हस्तशिल्प से भी जोड़ सकते हैं।
1: जी,
0: जैसे हमने रंगोली बनाने की ही बात की थी, है ना।
1: जी,
0: तो बच्चों को रंगोली बनाना, लोकगीत गाना, पारंपरिक व्यंजन बनाना, सिलाई कढ़ाई या हस्तनिर्मित सजावटी वस्तुएं तैयार करना हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब इससे क्या होगा, देखिए इससे ना सिर्फ उनकी रचनात्मकता बढ़ेगी बल्कि वो अपनी संस्कृति के और ज्यादा करीब आ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: है ना। इसी तरह देखिए, स्कूलों और महिला मंडलों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य प्रतियोगिताएं, पारंपरिक वेशभूषा दिवस और हस्तकला प्रदर्शनियां आयोजित करके भी नई पीढ़ी में संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ाई जा सकती है।
1: बिल्कुल। और आज के डिजिटल युग की बात करें तो देखिए, आज भी महिलाएं सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से भारतीय संस्कृति, पारंपरिक रेसिपी, लोक कला और संस्कारों से जुड़ी जानकारी साझा कर सकती हैं। इससे देखिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत केवल घर तक सीमित नहीं रहती बल्कि देश और दुनिया तक भी पहुँचती है।
0: बिल्कुल। और तो देखिए, इस तरह अगर हर महिला अपने घर और समाज में संस्कृति और संस्कारों का दीप जलाए रखे तो हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है वो हमेशा सुरक्षित और जीवंत बनी रहेगी।
1: बिल्कुल ठीक कहा समिता। और देखिए, अभी हमने अपने प्रोग्राम को जीवंत बनाने के लिए एक गीत सुनाना है।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी, इस म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक के बाद अब कार्यक्रम में फिर से हम हाजिर हैं हमारी सखियों के साथ। बातचीतों का ये सिलसिला जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी भावना जी, देखिए हमने ये थोड़ा सा एक अंतराल लिया था, है ना?
4: जी,
3: अभी इसमें हमने गीत भी सुना और ये एक विज्ञापन भी हमने सुना। तो इस दौरान थोड़ा कुछ ऐसे महसूस होने लगा कि जैसे हमारे शरीर की ज़रूरतें जो है ना, वो मौसम के हिसाब से बदलती रहती हैं।
4: ये बिल्कुल ठीक कहा जमींदा। देखो ना, अब कितनी गर्मी हो रही है, बाहर आप निकलो तो धूप में ऐसे चला भी नहीं जाता, और इस मौसम में तो मन करता है कि घर के अंदर ही रहो। और वैसे है भी सही बात, हम तो यही कहेंगे अपने श्रोताओं से कि जितना हो सके आप अनावश्यक यात्राओं से बचें, क्योंकि बहुत तेज धूप है और धूप सीधी अगर शरीर पे पड़ती है तो नुकसानदायक भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें भी होती हैं जो गर्मी के मौसम में हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।
3: जी बिल्कुल। देखिए, अब गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में शरीर की ज़रूरतें जो हैं वो बदल जाती हैं।
4: जी,
3: अब तेज़ धूप के कारण पसीने के साथ शरीर से पानी और ज़रूरी मिनरल्स जो हैं वो निकल जाते हैं।
4: जी,
3: तो अगर खान पान में बदलाव ना किया जाए तो डिहाइड्रेशन, कमजोरी, है ना, चक्कर, अपच और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं जो हैं वो हो सकती हैं।
4: बिल्कुल।
3: अब गर्मी से राहत के लिए कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम का सहारा लेते हैं, जो शरीर को इंस्टेंट राहत तो दे देते हैं लेकिन सेहत के लिए वो नुकसानदायक होते हैं।
4: बिल्कुल। और कई लोग तो ये समझ बैठते हैं कि ये ठंडे हैं इसीलिए हमारे शरीर को भी ठंडक पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए आपको उस तरह के पदार्थ लेने हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है, जो वाकई शरीर को अंदर से ठंडा रखें।
3: जी बिल्कुल। देखिए, हमें ज़रूरत है ये जानने की कि गर्मियों में शरीर की न्यूट्रिशन की ज़रूरत कैसे बदलती है और गर्मियों में हमें कौन से फूड्स नहीं खाने चाहिए।
4: जी,
3: है ना। अब देखिए, हमें गर्मी लगती है तो हम ठंडक के लिए कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन हमें इस बात की जानकारी होना ज़रूरी है कि क्या हमें नहीं खाना चाहिए।
4: जी,
3: अब देखिए, गर्मियों में शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर से लगातार पसीना निकलता है।
4: जी,
3: इस प्रक्रिया में पानी और सोडियम पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं और इससे डिहाइड्रेशन और कमजोरी का रिस्क बढ़ जाता है।
4: जी,
3: अब ज़्यादा गर्मी में शरीर का ब्लड जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो स्किन की तरफ जाता है, है ना?
4: जी,
3: तो उससे क्या होता है कि गर्मी जो है वो, मतलब है ना, ये बाहर की तरफ जाता है ताकि गर्मी बाहर निकल सके। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम को कम ब्लड मिलता है और ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है।
4: जी,
3: इसलिए गर्मियों में हल्का, पानी से भरपूर और सुपाच्य भोजन बेहतर माना जाता है।
4: बिल्कुल। अब गर्मियों में देखिए, वैसे ही हमें पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लेना है जो शरीर को हाइड्रेट रखे, एनर्जेटिक रखे और संतुलित रखे। गर्मियों में विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर से भरपूर फल सब्जियां बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। प्रोटीन के लिए हल्के और आसानी से पचने वाली चीज़ें जैसे दही, छाछ, दाल, स्प्राउट्स बहुत अच्छे रहते हैं। और ज़्यादा ऑयली, प्रोसेस्ड और शुगरी चीज़ें जो होती हैं वो शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती हैं, इसीलिए इस मौसम में इन्हें अवॉइड करें तो अच्छा रहता है।
3: जी बिल्कुल। अब ज़रूरी है कि हमें ये भी पता हो कि गर्मियों में कौन सी चीज़ें हमें डाइट में शामिल करनी चाहिए, है ना?
4: जी,
3: तो ऐसी चीज़ें जो शरीर को ठंडक दें, पानी की कमी को पूरा करें और पचने में आसान हो, तो ऐसी चीज़ें हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए।
4: जी,
3: जैसे देखिए, मौसमी फल, हरी सब्जियां, नारियल पानी, है ना, दही छाछ जैसा आपने बताया, नींबू पानी, पुदीना, तो इन सब चीज़ों को हम अपनी डाइट में शामिल करें तो गर्मियों के इस मौसम में हमें बहुत ही फायदे हो सकते हैं।
4: बिल्कुल।
3: अब गर्मियों में खाने से जुड़ी कुछ और बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है।
4: जी,
3: जैसे खाने से पहले साबुन से हाथ धोना, वो तो हर मौसम में ज़रूरी है।
4: बिल्कुल।
3: साथ ही कुछ और बातों का खास ख्याल रखना ज़रूरी है, जैसे सुबह हल्का नाश्ता करें और दोपहर में संतुलित।
4: जी,
3: रात को सोने से 3-4 घंटे पहले हल्का डिनर लें। मतलब ऐसा नहीं है कि जब हमारे सोने का समय है और तुरंत हमने खाना खाया और खाना खा के हम तुरंत सो गए, है ना
4: जी।
3: तो वैसा नहीं करना है। और साथ ही बीच बीच में फल, सलाद या जो तरल चीज़ें हैं, है ना, लिक्विड चीज़ें, वो हम ज़रूर लें ताकि शरीर जो है हमारा वो हाइड्रेटेड और एनर्जेटिक बना रहे
4: जी।
3: और साथ ही घर का बना ताज़ा खाना ही खाएं और एक बार में ज़्यादा खाने के बजाय दिन में 4-5 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा लें, है ना।
4: क्योंकि देखिए गर्मियों का मौसम होता है ना, और गर्मी में जो कीटाणु हैं जो हैं वो जल्दी पनपते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ताज़ा भोजन ही हमें करना चाहिए, बासी भोजन हमें नहीं करना चाहिए। और गर्मियों में देखिए पाचन तंत्र भी हमारा धीमा हो जाता है, इसीलिए हल्का ताज़ा और सुपाच्य खाना खाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। डाइट में आम पन्ना, है ना, बेल शरबत होता है, नारियल पानी जैसे नेचुरल ड्रिंक्स जो है ना वो पीने चाहिए, ना कि ये जो बाजार में सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलते हैं, है ना। क्योंकि ये जो ड्रिंक्स हम लेते हैं ना, जो अपने बनाते हैं, आम पन्ना देखिए बनाएं तो कितना टेस्टी होता है और शरीर को भी बहुत ही एक रात्मक होता है, बिल्कुल से भरपूर, है ना। ऐसे ही बेल शरबत है, नारियल पानी है, ये सब ये इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाते हैं और शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो हमारे शरीर को अंदर से ठंडक कर दे, है ना
3: जी।
4: तो इस तरह से हम चीज़ें ले सकते हैं,
3: बिल्कुल। और अगर हम सुबह की एक शुरुआत की ही बात करें तो देखिए सुबह हम कुछ चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे खाली पेट जीरे का पानी पीना, है ना, सौंफ का पानी, धनिए का पानी, पुदीने का पानी। इनमें देखिए स्वाद के लिए हम नींबू भी डाल सकते हैं,
4: बिल्कुल।
3: अब देखिए गर्मियों में ऐसे फूड्स फायदेमंद हैं जिनमें पानी ज़्यादा हो, जो इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर हों। जैसे देखिए हमारे ये हाइड्रेटिंग फ्रूट्स हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, है ना, संतरा, मौसमी, अनानास, पपीता, स्ट्रॉबेरी। और इसी तरह हाइड्रेटिंग सब्जियों की बात करें तो खीरा, ककड़ी, टमाटर, सलाद, है ना। और प्रोबायोटिक्स की बात करें तो दही, छाछ, लस्सी
4: जी।
3: और नेचुरल हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स की बात करें तो नारियल पानी है, नींबू पानी, गन्ने का रस, है ना, बेल शरबत, पुदीना ड्रिंक। तो इस तरह की चीज़ें हम अपने खाने में, अपने आहार में शामिल करें तो गर्मियों के इस मौसम में हम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं,
4: बिल्कुल। बस अवॉइड क्या करना है, ये जो बेकरी आइटम्स होती हैं, पैकेज जूस होते हैं, खुले में कटे फल होते हैं, स्ट्रीट फूड और मेयोनीज बेस्ड फूड्स जो होते हैं, जो आजकल बच्चे बहुत पसंद करते हैं। देखिए इनसे पेट तो भर जाता है, स्वाद भी बहुत लगते हैं, लेकिन अब हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं,
3: बिल्कुल,
4: है ना। क्योंकि पैकेज्ड फूड जूस जो हम जिन्हें बोलते हैं कि भाई जूस पीना चाहिए, और कई क्या बोलते हैं पैकेज्ड जूस जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, पर वो फायदेमंद नहीं होता है। नेचुरल जूस जो है वही फायदेमंद होता है,
3: बिल्कुल। देखिए खान पान से जुड़ी छोटी छोटी गलतियां भी हमारे लिए डिहाइड्रेशन, डाइजेस्टिव इशू और कमज़ोरी का कारण बन सकती हैं। जैसे देखिए पानी कम पीना, है ना, धूप से आते ही ठंडा पानी पी लेना, तला भुना खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, मील स्किप करना, है ना, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना और बासी या फिर बाहर का खाना खाना, तो ये हमारी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिन पर हम ख़ास तौर पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानियों का हमारे लिए कारण बन सकते हैं। तो देखिए कुछ लोगों पर डिहाइड्रेशन और हीट से जुड़ी समस्याओं का रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है, तो ऐसे में डाइट को लेकर खास सावधानी बरतनी चाहिए, है ना
4: जी। जी देखिए जो डायबिटिक हैं लोग, है ना, या फिर जिन्हें हार्ट या फिर किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं, जो बाहर काम करते हैं, या फिर जिन्हें पहले से कोई हेल्थ कंडीशन है, जो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, या फिर जो छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इन सबको जो है वो इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, है ना
3: जी।
4: भाई पानी पीना, सिर्फ पानी पीना ही काफ़ी नहीं है, पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स और हाइड्रेटिंग फूड भी बहुत ज़रूरी है, जो भी आपने बताया
3: जी, बिल्कुल। और दूसरी बात देखिए, गर्मियों में भूख कम लगना एक सामान्य सी बात है
4: जी,
3: लेकिन खाना छोड़ देना, मतलब खाना स्किप करना जो है वो सही नहीं है। तो मतलब खाना बिल्कुल स्किप ना करें, थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खा लें, वो ज़्यादा ठीक है,
4: बिल्कुल।
3: और दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना जो है वो सही नहीं, क्योंकि इससे पाचन जो है हमारा वो प्रभावित हो सकता है
4: जी।
3: और साथ ही हम दही और छाछ की बात कर रहे हैं, तो दही और छाछ जो है ये शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखते हैं, तो ये रोज लेना जो है वो फायदेमंद हो सकता है।
4: बिल्कुल।
3: और पैकेज्ड जूस की आप बात कर रही थी है ना भावना जी, तो देखिए इनमें क्या होता है कि शुगर ज़्यादा होती है, इसलिए इनके बजाय ताज़े फल खाना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है।
4: बिल्कुल।
3: तो कुल मिलाकर गर्मी में सही डाइट अपनाना सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए ही नहीं बल्कि गंभीर बीमारियों से बचने के लिए भी ज़रूरी है।
4: बिल्कुल समिता। और अब देखिए बातों बातों में जो हम अपनी सखियों को जानकारी दे रहे थे वो ज़रूरी भी थी, पर अब ये ज़रूरी है कि देखिए समय हो रहा है समाप्त, तो अपनी सखियों से इजाज़त लेनी भी तो ज़रूरी है
3: जी। बिल्कुल। तो अब आज का ये कार्यक्रम यही संपन्न करने की लेते हैं हमारी सखियों से इजाज़त और कहते हैं
4: नमस्कार। वनिता मंडल, वनिता मंडल,
0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना,
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वनिता मंडल, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। हर रोज की तरह आज भी हम हाजिर हैं कुछ चुनिंदा फिल्मी गीतों के साथ आपके मनोरंजन के लिए। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के साथ।

जब जब तिरंगा ऊंचा उठता है, हर भारतीय सैनिक का सिर गर्व से और ऊंचा हो जाता है। कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना कर्मा फिल्म से। अब आइए सुनते हैं हरिहरन और साधना सरगम की आवाज़ों में जीन्स फिल्म से ये गीत।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर, और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ।

चुप चुप के फिल्म से ये गीत आपने सुना। आवाजें थी विजय येसुदास और श्रेया घोषाल की। अगला गीत आइए सुनते हैं विशाल ददलानी की आवाज में, फिल्म है कृष्णा कॉटेज।

ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। अब इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने के लेते हैं आपसे इजाजत। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राजुल का सादर नमस्कार। और आज का सुरीला सफर है बन रहा कुछ अलग ही ढंग से, क्योंकि आपके संदेशों में बात है आज की और गुजरे हुए कल की। तो अब आपको बता देते हैं आज का टेक्स्ट। जैसे हमारे कुछ श्रोता जो कि फेसबुक पेज पर, जहां पर गीत भी मिलते हैं और मीत भी मिलते हैं, वहां पर उन्होंने ये टेक्स्ट देख ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए हम बता देते हैं आज की ये इबारत। कई बार कुछ ऐसा होता है कि गुजरा हुआ वक्त चुपके से दबे पांव मन में चला आता है और किसी जादूगर की तरह साकार कर देता है वो बीता हुआ पल। जब कोई मिला या कोई बिछड़ गया, कुछ टूट गया, कुछ छोड़ दिया या कुछ पा लिया, वो पल जहां मन के बावरे पंछी संग रोके नहीं रोकी उमंग, या जहां किनारे पर डूब गई दिल की कश्ती, यादों की उन गलियों में भटकता ही रहे मन, लेकिन सितारे मेहरबान हो तो पुकार लेता है वर्तमान, ओ मितवा आजा रे। इस गली में कहीं खो सकता है आपका आज, जल्दी से आगे बढ़कर थाम लीजिए अपने आज का हाथ, क्योंकि वक्त कभी ठहरता नहीं, तो चलिए उसी राह पर जिस पर खड़ा है आज अभी यहीं। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर आपने चुन लिए हैं गीत। भाई गीतों की इस लिस्ट में बहुत लंबी सी लिस्ट है, और हमारे कुछ साथियों ने बताया है बहुत सारे गीतों के बारे में। एक श्रोता ने बताया है, कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ ज़माना चुपके से दिल दे दे, चला जाता हूं किसी की धुन में, जादूगर सैया, इस तरह के उन्होंने करीब 15 गीत छांटे हैं। वाह क्या बात है, गीतों के मामले में कितने संपन्न हैं हमारे श्रोताओं की याददाश्त। वाकई इस बात का हमें कई बार ये भी लगता है कि कितने ज़्यादा गीतों से जुड़े हुए लगाव है आप सभी को। एक श्रोता का जो संदेश है वो कह रहा है कि उसमें कुछ यूं कहा गया है कि आज की भारत ने मन के पक्षी को अतीत में ले गया। सही कहा गया है, आप भूगोल बदल सकते हैं इतिहास नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का एक अतीत होता है जो जिंदगी के हर मोड़ पर दस्तक देता है। यह अतीत सुनहरा या कड़वा हो सकता है, मगर वे लम्हे जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। बेहतर है बीते अतीत के बुनियाद पर जीवन को बुलंद कर वर्तमान में जीना ही सार्थकता है, क्योंकि वर्तमान ही हकीकत है। समय की रफ्तार कभी धीमी नहीं होती, लेकिन उसकी गहराई में छिपे यादों के मोती अक्सर हमारे दिल के आंगन में बिखर जाते हैं। कभी कभी हवा का एक झोंका, किसी पुराने पन्ने की खुशबू, या रास्ते में मिला कोई जाना पहचाना चेहरा हमें गुजरे जमाने की गलियों में वापस ले जाता है। वो लम्हे जो पीछे छूट गए थे अचानक सामने आकर दिल को एक अनूठे सुकून और भीगी हुई उदासी से भर देते हैं। वाह क्या खूबसूरत बात कही है। तो बताइए कि आज कई बार वो याद जो ताज़ा हो जाती है किसी ऐसे ही पुराने पन्ने की खुशबू के साथ, या हवा के किसी झोंके के साथ, या किसी जाने पहचाने चेहरे के साथ, कभी बहुत साल पहले गुजरी थी जो बात, वो बात ताज़ा हो जाती है, तो उस बात के बारे में हमें बताएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पुरानी यादों या बीते हुए वक्त की खुशनुमा या कठिन परिस्थितियों के पल जब भी स्मृति पटल पर पूर्व दीप्ति बनाने लगते हैं तो मन में एक भावुक संवेदना जागती है। ऐसे में मन का पंछी पुरानी यादों को एक नई उमंग और उम्मीद के साथ फिर से उड़ान भरने लगता है, और एक सकारात्मक सोच मन में आती है कि फिर एक बार कोई प्यार से पुकार ले। अपनी सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमय इबारत की इबादत की इबारत से निकले शब्दों में कई बार कुछ ऐसा गुजरा वक्त चुपके से दबे पांव मन आपका आज चला आता किसी जादूगर साकार बीता पल मिला जल्दी गली मितवा आगे बढ़ थाम लीजिए जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गुजरा हुआ ज़माना बीता हुआ वक्त और पुरानी यादें किसी जादूगर की तरह चुपके चुपके हमारे वर्तमान में लौट आती हैं। समय और यादों का ये सफ़र
इतना गहरा होता है कि कई बार कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ पुरानी बातें और कुछ मधुर स्मृतियों के गीत अचानक दिल में उतर जाते हैं। भले ही आप दूर हो, पर वो पल तो अचानक ही सजीव होकर आपके साथ हो जाता है। बहुत सुंदर बात कही आपने, और उन्हीं स्मृतियों के बारे में हम पूछ रहे हैं, उन्हीं खट्टी मीठी यादों के बारे में आप पूछ रहे हैं हम आज, जो आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले या आज से 10 साल पहले गुजरी हों और आपको आज भी याद करा देती हूँ। ये गाना सुनिए और बताइए कि ये किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

हमारे एक श्रोता ने खुशी जाहिर की है कि वाह, मेरी लिस्ट का पहला ही गाना मिल गया। बिल्कुल सही बात। जवाब भी आए हैं बहुत ढेर सारे, ज्यादातर दिनेश ठाकुर या अमोल पालेकर जी की बात हुई है। एक श्रोता ने राजेश खन्ना का भी नाम लिखा है, ये रजनीगंधा फिल्म का गाना है। योगेश के बोल सलील चौधरी का संगीत, और गाना बैकग्राउंड में चलता है। दरअसल शुरू ये विद्या सिन्हा के चेहरे से होता है और बाद में फिर दिनेश ठाकुर और अमोल पालेकर भी इस गाने में नज़र आते हैं। तो भाई ये जो गाना है कि कई बार यूं भी देखा है, जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है तो मन तोड़ता है जब वो सीमा रेखा, और कूद जाता है जाके जल्दी से अतीत की गलियों में। ऐसा जब कुछ आपके साथ हुआ हो उस वक्त के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे। बताइए हमें, आज से 10, 15 या 20 साल पहले ऐसी कौन सी बात हुई थी जो आज भी याद करके या तो आप हंस पड़ते हैं या फिर दूसरों को हंसी आ जाती है। संदेश है एक श्रोता का, कहते हैं कि समय किसी के रोके नहीं रुकता, वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है, उसको पकड़ कर चलने में ही समझदारी है। वक्त के साथ ही लोग मिलते और बिछड़ते हैं। हमारा बीता हुआ कल वापस तो नहीं आ सकता, इसलिए हमें भविष्य की चिंता छोड़ आज में जीना चाहिए। बिल्कुल सही बात। एक और श्रोता कहते हैं कि बीता हुआ वक्त लौट कर तो नहीं आता, लेकिन उसकी यादें हमें यह एहसास जरूर दिलाती हैं कि हमने जीवन में कितना कुछ जिया है। कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी बातें, कुछ बिछड़े रिश्ते, यही सब मिलकर मन एक ऐसी व्यथा पैदा करता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं होता। इन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। यादें हमारे भीतर चुपचाप सांस लेती रहती हैं, कभी रात की खामोशी में, कभी बारिश की बूंदों में, तो कभी अकेलेपन की किसी लंबी शाम में वे फिर दस्तक देती हैं। बहुत सुंदर। एक और श्रोता ने आज शीर्षक से कुछ बात कही है। आज कोई ठहरा हुआ समय नहीं, बल्कि ये वो द्वार है जहां मनुष्य अपनी चेतना को जागृत करके शाश्वत सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि जीवन केवल आज में ही धड़कता है। जो व्यक्ति आज में जीता है वो किसी भी कार्य को पूर्ण समग्रता से कर सकने की क्षमता रखता है। यही पूर्णता ही ध्यान यानी मेडिटेशन है। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि अतीत के सबसे मोहक पलों में से एक होता है बीता हुआ समय। समय अपने अंदर कितना कुछ समोए रहता है, किसी अपने का मिलना बिछड़ना, यादों के तिलिस्म के ना जाने कितने दरवाजे हैं, मगर जीवन तब जीवन की तरह खिल उठता है जब कोई अपना हमें पुकार लेता है। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी सौगात लेकर आते हैं, ऐसे में उनका हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो है वो बस आज में है, इसी पल में है। बहुत सुंदर बात कही है। और एक और श्रोता ने बताया है कि सुरीला सफ़र में कुछ गाने, गुजरा हुआ ज़माना, वक्त, पल, मितवा, कश्ती आर सच वर्ड्स ऑन विच टूडेज सुरीला सफ़र विल गो ऑन, द रेस्ट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपकी लिस्ट में इसने आपने जो शब्द चुने हैं, देखिए उन पर गाने आ रहे हैं या नहीं, और सोचिए तो कोई गाना आपके ख्याल में आ रहा है।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे श्रोताओं ने। मधुबाला पर फिल्माया गया है शीरे फरहाद फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना, तनवीर नकवी के बोल थे और एस मोहिंदर का संगीत था। श्रोताओं ने अपनी कुछ यादें भेजी हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे उस समय की रिलीज़ हुई नई फिल्मों के गाने बहुत ज़्यादा पसंद आते थे, पर जो जो समय बीतता गया मुझे ज़्यादा पुराने गाने ज़्यादा पसंद आने लगे। आज के समय में तो मुझे नए गाने बहुत कम पसंद आते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही हैं कि आजकल किसी छोटे बच्चे को शरारते करते देखती हूँ तो अपने बच्चों का बचपन याद आ जाता है। तब की उनकी शरारतें कभी गुस्सा दिला जाती थी, आज याद कर मन को गुदगुदा जाती हैं। वो वक्त कितना जल्दी गुजर गया जिसे फिर से जीने का मन करता है। काश वो गुजरा हुआ ज़माना फिर से आ जाता। बिल्कुल सही बात है, वो पल बीत जाते हैं लेकिन हम उन्हें याद करते रहते हैं। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, फिर भी हम कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वाकई एक और श्रोता ने आज की इबारत को पढ़कर सुरीले सफ़र में गुजरे हुए पलों की बातों से संबंधित गीतों को तवज्जो दिया गया है। ऐसा लिखा है, हर इंसान के जीवन में गुजरे हुए पलों की यादें सुखद और दुखद दोनों हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा बचपन से जुड़ी हर लम्हा और उनकी यादें बहुत कचोटती हैं। काश कोई खोया हुआ बचपन फिर से लौटा दे, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार पुराने सुनहरे पल हमें अपने उसे जोड़ते हैं। पुराने पलों की उन बातें जो अच्छी हैं उनके लिए कृतज्ञता महसूस करें, लेकिन जो पल बीत गया उसको बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करने से शांति मिलती है। उन्होंने कुछ गानों के नाम भी दिए हैं। चलिए अब जरा देखते हैं कि अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। अपनी यादों को हमारे साथ साझा करने के साथ साथ एक बात और, आज विश्व संग्रहालय दिवस है तो बताइए कि संग्रहालय में ज़्यादातर गुजरे ज़माने की इतिहास की उन अनमोल यादों को संजोया जाता है जो बहुत ख़ास होती हैं। कभी आपने कोई संग्रहालय देखा है या बचपन में कभी गए हो उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। और अब ये गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के प्रमुख कलाकार कौन हैं।

0: सही जवाब के साथ आपके संदेश आ गए। संजीव कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना फिल्म मन मंदिर में। गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और भाई संदेशों की तो क्या ही कहें। नौजवानी के दिन जब बचपना विदा ले रहा था और जवानी दस्तक दे रही थी, उस समय ट्यूशन में पढ़ने वाली एक सहपाठिनी का मेरी गलतियों पर मुस्कुराना याद है। वो निश्चल हंसी, उफ क्या बात है। तो भाई देखिए ना, किसी की हंसी, किसी की बात या किसी का टोकना भी याद रह जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, जो बीत गया सो रीत गया, जो बच रहा वो यही पल है जिसका इस्तेमाल हम सब VBS के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, विविध भारती के साथ आपका ये पल कैसा गुजर रहा है इस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने जो भेजे हैं हमें गानों के, बताइए कि ये पल, ये जो गाने हैं, ये आपके लिस्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं। एक श्रोता ने कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना, चुपके चुपके चल रही पुरवैया और जादूगर जैसे बहुत सारे गानों का अपना लिस्ट बना के भेजी है। एक श्रोता ने गुजरा हुआ जमाना वापस तो नहीं आ सकता, ये कहते हुए अपना संदेश आगे लिखते हैं कि लेकिन हम कभी एकांत में बैठे पुरानी यादों में खो जाते हैं, तब उन बीते हुए लम्हों में खुद को महसूस करते पहुंच जाते हैं। मसूरी के कैंप्टी फॉल में नहाने, जहां यारों की टीम 44 साल पहले कैमरे लिए तस्वीरें खींच रहे थे। लौटते हरिद्वार में गंगा स्नान का वो दृश्य सामने आ जाता है, जब मना करने पर तेज धार में बहने लगे और दो तीन साथियों ने तत्परता दिखाते हमें गहरे पानी में जाने से बचा लिया। उससे भी 10 साल पहले वाल्मीकि नगर रिजॉर्ट में नेपाल और बिहार की सीमा में अभयारण्य में घूमने गए, जहां धुंधलाती शाम में एक जहरीले सांप से भेंट हुई और सभी साथियों के साथ कैसे बाल बाल बचे। ऐसे तमाम वो पल जो एक एडवेंचर थे भी याद आए। और परिवार के साथ वैष्णो देवी यात्रा, फिर दिल्ली में 2 दिन ऐतिहासिक इमारतों में घूमना, वो लाल किले में लिए गई कई तस्वीरें अच्छे दिनों में पहुंचा देती हैं। बहुत सुंदर यादें हैं आपने सजोई। यादें संजोने के लिए हम कई बार तस्वीरें भी खींचते हैं। आप बताइए कि क्या कभी तस्वीरों का वो एल्बम आप पलटते हैं जो आपने आज से 20-25 साल पहले खींचा था। और हाँ, उस वक्त तो तस्वीरें भी दूसरी तरह से ली जाती थी। अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनिए और बताइए कि वो आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और साथ ही बताइए संगीतकार का नाम।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते

राजेश खन्ना और माला सिन्हा पर फिल्माया गया मर्यादा फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। सही जवाब के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया कि मैसूर का किला देखा राजा का पुराना राजमहल है। विश्व संग्रहालय दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए एक श्रोता बता रहे हैं कि 1989 में मुंबई के संग्रहालय पुरानी वस्तुओं, यादगार चीज़ें, धरोहर, विरासत, ये म्यूज़ियम उन्होंने 2 बार देखा है। म्यूज़ियम में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आकर्षित करती है, या जब भी देखा किस चीज़ को के सामने आप बड़ी, किस जो शोकेस में लगी रहती हैं तमाम चीज़ें, उनमें से किस शोकेस के सामने आप काफ़ी देर तक खड़े रहे, अगर याद हो तो ज़रूर बताएं। और हाँ, तस्वीरों के एल्बम की बात भी तो रह गई, कौन सा एल्बम आप अभी तक बहुत सहेज कर रखते हैं और जब तक उसे पलट लेते हैं मौका मिलते ही। श्रोताओं के संदेश कह रहे हैं कि मेमोरीज आर लाइक फोटोज, यू कैन लुक बैक बट यू कैन नेवर गो बैक। बहुत सुंदर बात कही आपने, मतलब यादें तस्वीर की तरह होती हैं, आप उसे पलट कर देख सकते हैं लेकिन उसमें वापस नहीं जा सकते। आज के सुरीले सफ़र की बातें भी कुछ ऐसे बीते हुए लम्हों से जुड़ी लग रही हैं। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, वापस आती हैं तो सिर्फ उससे जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें और बातें, किसी से कुछ मुलाकातें जिसे याद कर कभी हमारे मन का बावरा पंछी भी बार बार डोलने लगता है। बीते हुए पल की कसक याद करते हुए कभी उदासी भी छा जाती है, इसलिए भूतकाल को याद कर उसमें से कुछ बोध पाठ लेते हुए वर्तमान को जी भर के जी लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें हंसी खुशी जिंदगी बिता दो। वक्त का पहिया न कभी रुकता है न रुकेगा, इसलिए आप भी दोपहर ठीक 1 बजे VBS के सुरीला सफर में जुड़ जाइए। क्या बात है। और आगे लिखते हैं कि आप सभी का जीवन सफर सुरीला और हंसी खुशी से भरा रहे, यही कामना करते हुए स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। वाकई वर्तमान में जीना ही समझदारी है, और वर्तमान में जीते हुए ये गीत आपको किन की याद दिला रहा है हमें जल्दी से बताइए। और हाँ, संग्रहालय की बात और अपने एल्बम की बात भी ज़रूर बताइएगा।

इस गीत का जवाब हम जरूर बताएंगे, लेकिन एक सवाल पहले पूछ लेते हैं। क्या कभी वो छूटा हुआ प्यार भी याद आता है आपको? उसके बारे में अगर बताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सवाल था हमारा कि इस गाने को सुनकर आपको किन की याद आती है, तो हमारे साथियों ने बताया सरस्वती चंद्र नूतन, फिल्म का नाम और अभिनेत्री का नाम इन्होंने बताया है। किसी किसी श्रोता ने मोहनीश जी का नाम भी, यानी मोहनीश बहल शायद इनका मतलब है, उनका नाम लिखा है। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरा जिला अहमदनगर स्थित कैवलरी टैंक संग्रहालय एशिया में अपनी तरह का एकमात्र और सबसे बड़ा सैन्य संग्रहालय है। फरवरी 1994 में स्थापित इस संग्रहालय में लगभग 50 दुर्लभ और ऐतिहासिक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों का अद्भुत संग्रह है, जो भारतीय बख्तरबंद कोर के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। बहुत सुंदर जानकारी साझा की आपने। तस्वीरों के बारे में हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितने भी पुराने फोटो हैं सभी को सहेज कर रखती हूँ। अपने भाई बहनों के साथ वाले फोटो और अपने बच्चों का बचपन का फोटो, परिवार का फोटो, सभी जब भी फुर्सत में रहती हूँ जरूर पलट कर देखती हूँ और कुछ उसमें से फोटो निकाल कर उनसे संबंधित लोगों को शेयर भी करती हूँ। वाह, ये तो पुरानी यादें ताज़ा करने का बड़ा ही सुंदर तरीका है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि तस्वीरें खींचने और खिंचवाने का ज़बरदस्त शौक है और उनका संग्रह करना भी। न सिर्फ एल्बम में बल्कि मोबाइल, लैपटॉप, सबके मेमोरी में भी संभाल कर रखती हूँ और गाहे बगाहे उन्हें पलट कर देखने का भी शौक है। परिवार में सबके शादी ब्याह की तस्वीरें अपने पास रखना अच्छा लगता है वाकई। और उस जब देखते हैं ना वो तस्वीरें, तो फिर याद आ जाती हैं वो सभी बातें और वो अच्छा हल्का फुल्का वक्त जो गुजरा था उस वक्त। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मेरे ताऊजी की लड़की जो मेरी बहन थी, सन 1971 में उसकी शादी में हमारे सारे परिवार का एक साथ खींचा गया ब्लैक एंड वाइट बड़ा फ़ोटो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उस समय मेरी उम्र 1 साल की थी और मैं अपने पापा की गोद में नज़र आ रहा हूँ। उस फोटो की हमने तस्वीर में बनाकर रखा है, मतलब शायद फ्रेम करा कर रखा है आपने। वाकई ये तस्वीरें तो अनमोल होती हैं। एक और श्रोता ने साझा की है एक तस्वीर की बात। मेरी बेटी की तस्वीर जिसका एल्बम बार बार देखता हूँ, कितनी मासूम मुस्कुराती, आज वो 36 साल की हो गई मगर मुझे बच्ची ही लगती है। सच, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। संदेशों की बात करें तो हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत यादों के एक ऐसे जादुई आईने जैसी है जिसमें हमारा बीता हुआ कल आज भी खुलकर सांस लेता हुआ महसूस होता है। सचमुच इंसान का मन भी एक अजीब मुसाफिर है जो वर्तमान की सड़क पर चलते हुए भी अक्सर अतीत की पगडंडियों पर मुड़ जाता है। कहाँ क्या छूटा और क्या मिला, इसी उलझन में भटकता रहता है। यादों के समंदर में डूबना तो आसान है पर जिंदगी किनारे पर ही जी जाती है। गुजरे वक्त की जंजीरें कितनी भी रेशमी क्यों ना हो, उन्हें तोड़कर आज के वर्तमान पल का हाथ थामना ही असल मायने में जीना है, क्योंकि जो ठहर गया वो कल था, आज तो चलते रहने का नाम है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज इंसान के बीते समय वक्त पे चर्चा होने की संभावना है। कहावत है, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, जिसका वर्तमान सही है भविष्य भी सही होगा। वक्त को पहचानो, अहमदाबाद की घटना ने बहुत कुछ सिखा दिया, पता नहीं पल में क्या हो जाए। वाकई बहुत छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी को हंसी खुशी से ही बिताना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहते हुए। अब इस गाने को सुनिए और फिल्म का नाम बताइए।

अमरदीप फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र का संगीत। याद किया है हमारे कुछ श्रोताओं ने, छोड़ दे सारी दुनिया सरस्वती चंद्र फिल्म के गाने की बात की है। नूतन और मनीष अभिनीत फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत का फिल्मांकन जूनागढ़ गुजरात के गिरनार पर्वत की सीढ़ियों पर हुआ था। उन दिनों मैं और मेरा मित्र जो जूनागढ़ के नज़दीक रहता था उसके साथ शूटिंग देखने वहाँ गया था, लेकिन हमारे वहाँ पहुँचने से पहले फिल्म यूनिट वहाँ से विदा हो गया था। हमारी बात रह गई हमारे मन में, कुछ कह ना सके उलझन में। क्या बात है। लेकिन कई बार ये प्रयास ही बहुत अपने आप में ऊर्जा भर देता है, उत्साह भर देता है। हमारे एक श्रोता ने ओडिशा कटक नगर के नंदन कानन प्राणी संग्रहालय के बारे में बताया है, और कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक संग्रहालय बनाया गया है साइंस, जो सभी ग्रह और सूर्य के ऊपर बहुत सारे तथ्य दिखाता है। प्लैनेटोरियम की बात कर रहे हैं आप। और एक श्रोता कह रहे हैं कि उम्र के इस मोड़ पर पहले प्यार को सार्वजनिक करना जोखिम भरा काम है, क्योंकि मेरी पत्नी सुरीला सफ़र में भी साथ साथ सुनती है। क्या बात है। वाकई कई बार ऐसे जोखिम से तो बचना ही चाहिए। और बात हो रही है पुराने इश्क की, तो बड़ी सुंदर सी कविता साझा की है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखी है, कभी कभी पुराना इश्क बरसों बाद भी दिल के किसी कोने में धीमी आँच सा जलता रहता है। ना वो आवाज़ देता है, ना कोई शिकायत करता है, बस अचानक किसी बारिश, किसी गीत या किसी खामोश शाम में याद बनकर उतर आता है। बहुत धीरे धीरे पढ़ने वाली कविता है, लेकिन समय की कमी के चलते मैं जल्दी पढ़ रही हूँ। बड़ा ही सुंदर शब्द हैं। वो इश्क भी अजीब था, न पूरा मिला न कभी पूरा तरह बिछड़ा, बस जिंदगी की किताब में एक मुड़ा हुआ पन्ना बनकर रह गया। आज भी जब तन्हाई में धीरे से दरवाज़ा खटखटाती है, उसकी हंसी उसकी बातें मन में चुपके से चली आती हैं। मगर अब ना कोई गिला है, ना किसी के लौट आने की आस, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर नहीं, याद बनकर ही खूबसूरत लगती हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। और ऐसी यादों की बात करते हुए अब इस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे साथियों ने। हवस फिल्म का ये गाना, संगीत उषा खन्ना का। और एक श्रोता ने बताया है कि बैंगलोर में संगीत म्यूजियम देखा है, बेहतरीन है, रिकॉर्ड रूम भी था, वहां गाना रिकॉर्ड किया था। क्या बात है, आपने तो बड़ी ही सुंदर स्मृति संजोली। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप कई बार ऐसे सवाल पूछ लेती हैं जिसका जवाब देना चाह कर भी जवाब नहीं दे सकते, जो जवाब देना खतरनाक हो जाता है। ओहो, ठीक है, चलिए, आपने छुपते छुपाते बात कही दी। संदेश भेजा है हमारे एक श्रोता ने, कह रहे हैं कि वक्त एक ऐसे परिंदे की तरह है जो कभी एक शाख पर दोबारा नहीं बैठता, जो लम्हा गुजर गया वो इतिहास बन जाता है। वक्त की उड़ान वाकई एक ऐसी हकीकत है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही बांधा जा सकता है। ये एक ऐसी खामोश रफ्तार है जो बिना किसी शोर के सब कुछ बदल देती है, बचपन की मासूमियत से जवानी के जोश और फिर बुढ़ापे के तजुर्बे तक, ये सफ़र इसी उड़ान की बदौलत तय होता है। इन्होंने एक शेर मुनीर साहब का साझा किया है हमारे साथ। वक्त की धूप हो या तेज़ हवाएं, कौन वक्त की धूप हो या तेज़ हवाएं मुनीर, कौन रुका है यहाँ, किसकी उड़ान बाकी है। एक श्रोता ने बताया कि पल एक ऐसी चैतन्य की अद्भुत व्यवस्था है जो ज्यादा देर किसी से नहीं जुड़ी रहती है। सुख आनंद गानों के साथ जुड़ता जरूर है, लेकिन गानों से अलग भिन्न रहता है, इसलिए चैतन्य को हर गाने में आनंद मिलता है। पल पल हर पल विविध भारती के कार्यक्रम से सुखी रहता है और फिर सुख मरता नहीं है। क्या बात कही है, सुखी आनंद चैतन्य का स्वभाव है, इसलिए 24/7 पल हर पल व्यक्त रहती है। परंतु हम मानव को संसार की वस्तुओं में खुशी सुख है ऐसा अभी प्राय मान्यता मात्र है। बड़ी गहरी बात कही आपने। अब जरा इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना किस जगह पर फिल्माया गया है।

वाकई दुनिया फानी है और कुछ ही पलों का साथ रहता है सबका। हमारा आपका साथ भी अब शायद कुछ ही पलों का है, और अगले गीत का शायद हम आपको थोड़ा सा हिस्सा ही सुनवा सके। जवाब बिल्कुल सही भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। द बर्निंग ट्रेन फिल्म में गाना ट्रेन में फिल्माया गया जितेंद्र नीतू सिंह आशा सचदेव पर, बिल्कुल सही जवाब। और एक याद ताज़ा की है प्रेम की। 8वीं कक्षा में पढ़ते अधकचरे प्रेम की याद बहुत बात समझ पाए। मैं कक्षा में आगे बैठता तो एक 14 साल की लड़की बार बार हमसे मदद मांगती, ये सवाल बताओ, ये ट्रांसलेशन बताओ। मेरी आधी कुर्सी पर बैठ जाती, मैं उसकी कॉपी पर जवाब लिखकर डांट देता था। बाद में एक एक्सीडेंट में घायल वो बहुत दिनों की पीड़ा के बाद गुजर गई। उसकी सहेली ने बताया था वो तुमसे प्यार करने लगी थी। उफ उफ उफ, ये जो जानकारी बाद में होती है ये सच में दिल तोड़ देती है। एक और श्रोता ने अपनी 1990 में हुई शादी की जो पोस्टकार्ड साइज के 100 फोटो याद के लिए अभी भी सुरक्षित रखे हैं, क्या बात है। ऐसी यादें तो बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और बड़े दिनों तक गुदगुदाती रहती हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि वर्तमान के महत्व के सुंदर भावों में व्यक्त करती है आज की इबारत। स्मृति कभी खुशियां देती हैं तो कभी बिछड़ने और टूटने का दर्द याद दिलाती हैं। मन अक्सर यादों की गलियों में भटक जाता है, लेकिन जीवन हमें ये संदेश देता है कि बीते कल में खोने के बजाय आज को संभालना जरूरी है। समय की कभी रुकता नहीं, इसलिए वर्तमान का हाथ थाम कर जीवन को जीना ही आज का सबसे बड़ा सच है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है तो समय निकल जाता है। वैसे समय में कल आज और आज कल में बदल जाएगा, और जल्द ही एक समय ऐसा आएगा जो समय तेरा था वो तेरा होके तेरा ना रह जाएगा। बहुत गहरी बात कही आपने। इसी बात पर ये गीत सुनिए और बताइए कि आवाज़ें किन की हैं। साथ ही चलते चलते फिल्म का नाम भी बता दीजिए।

0: पर हम पुकार ही रहे थे कि जवाब आ गया। फिल्म परिणय का गाना है ये, आवाजें मन्ना डे और वाणी जयराम की हैं। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समय हो रहा है ख़त्म। तो सुरीला सफ़र के इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।
1: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़ और 2:15 पर दोपहर समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: will trade in next 5 years. Congress leader V.D. Satheeshan takes oath as Keralam Chief Minister along with 20 cabinet ministers. West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees. Union Home Minister Amit Shah flags off 400 emergency response vehicles in Raipur district of Chhattisgarh. And in IPL cricket, hosts Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
3: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
4: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वी डी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
5: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है, और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया

0: ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली।

0: दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
2: आवाजों में सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

नजरों का दामन बिछाती ये प्यार की पुकार भला कौन अनसुना करेगा। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। तो आइए अब सुनते हैं मन की दहलीज से गुजरकर दिल के आंगन तक पहुंचता ये गीत क्या कह रहा है। तीन बहुरानियां फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो वचन फिल्म से है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया है, प्रेम धवन ने लिखा है और रविशंकर ने इसे संगीत से सजाया है। तो चलिए हाथों में हाथ लेकर और दिल को साथ लेकर सुनते हैं ये मीठा सा नगमा।

मोहब्बत की ये खूबसूरत सी इल्तिजा उड़न खटोला फिल्म से आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। और अब सुनवा रहे हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है।

लोगे जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हम

0: कुछ कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: देखो कसम से

0: दिल लेकर मीठा से गम का ये तोहफा देने वाला गीत आपने सुना फागुन फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में कमर जलाल आबादी के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं नई दिल्ली फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है, अफसोस।

0: ही सही, ये गम ही सही, आपसे हम कुछ तो पा गए। मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर, आप मेरे दिल में आ गए।
1: आइए सदाबहार नगमे का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास के बोल हैं एस एन त्रिपाठी की धुन। फिल्म का नाम है रानी रूपमती।

0: जीवन की वीणा पर बसता रहे यूं ही मीठा मीठा प्राणों का राग और जीवन में छाई रहे बहार, इसी संदेश के साथ।
1: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में शहरी निकायों के चुनावी नतीजों पर कांग्रेस व भाजपा ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि शहरी निकायों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है। उन्होंने कहा कि इन चुनावी नतीजों से यह स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ करारा जवाब दिया है। उन्होंने इस जीत के लिए भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि नगर पंचायत व नगर परिषदों में पार्टी की एक तरफा जीत हुई है। कांग्रेस संगठन के प्रदेश महासचिव विनोद जिंटा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने 47 में से 31 नगर परिषद व नगर पंचायतों में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि सत्ता के इस सेमीफाइनल में कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है।
1: नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक तरफा बहुमत मिला है। ऐसे बहुत सारे जिला है जहां कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। चंबा जिला के तीनों नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती है। जिला कांगड़ा के अंदर भी 6 नगर परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव हुआ, जिसमें 6 की 6 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। 31 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी अपना चेयरमैन बनाने जा रही है, ये बिल्कुल तय है।
0: केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए और सभी को बिना थके लगातार काम करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में जज्बा इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के सभी लोगों से पर्यावरण असंतुलन, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य जागरूकता की कमी और नशे जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने जम्मू में एक कार्यक्रम में पंजाब, हिमाचल और दिल्ली से आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि केवल सरकारी प्रयासों से ही इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है और इसमें समाज की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि प्रभावी नेतृत्व किसी पद पर आसीन होना नहीं, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलना, समाज की आवश्यकताओं को समझना और सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज तिरुवनंतपुरम में केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने वीडी सतीशन को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में केरलम विकास, सामाजिक न्याय और सुशासन की नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। राजधानी शिमला में सहब सोसाइटी से जुड़े सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। इस हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। सहब सोसाइटी के कर्मचारियों ने शिमला में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सहब सोसाइटी कर्मचारी यूनियन के उपाध्यक्ष अमित भाटिया ने कहा कि सोसाइटी के लगभग 800 कर्मचारी 10% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
3: हमारे कर्मचारी जो अपने हक अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं और ये एस्मा चलो डीसी साहब ने लगा दिया, मगर डीसी साहब को हमने भी कई बार मांग पत्र दिया। डीसी साहब ने आज तक 4 साल में कोई भी वार्तालाप हमारे निगम प्रशासन से नहीं करवाई है। साफ साफ कर्मचारियों के विरुद्ध में पूरा प्रशासन बैठा है। अभी तो हमारी कोई बात प्रशासन से हमारे को कोई कॉल नहीं आई है। अभी जब तक कॉल नहीं आती है तब तक हमारी स्ट्राइक है जो कंटिन्यू ही जाएगी।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचार के बाद आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है भारत का हरित पथ, संरक्षण से जलवायु कार्यवाही तक। वाचक स्वर है राकेश शर्मा का।
0: 21वीं सदी में विकास और पर्यावरण के बीच संबंध नीति विमर्श के हाशिए से उठकर राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में आ गया है। भारत के लिए जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई के साथ तेज आर्थिक वृद्धि का संतुलन बनाना खासतौर पर जटिल काम है। भारत के हरित पथ की कुंजी ये समझ है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास राष्ट्रीय प्रगति के एक दूसरे को मजबूत करने वाले स्तंभ है। इस दृष्टिकोण में जलवायु परिवर्तन की मौजूदा वास्तविकता को ध्यान में रखा गया है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सभी क्षेत्रों में ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा है, लिहाजा देश ने इससे दूर का खतरा नहीं बल्कि वर्तमान की विकास की वास्तविकता के रूप में लिया है, जिसके लिए तैयारी और सक्रिय शमन की जरूरत है। इसके अनुरूप भारत ने एक ऐसा व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया है जो जैव विविधता संरक्षण को मजबूती देते हुए जलवायु अनुकूलता का निर्माण करता है और संवहनीय विकास को बढ़ावा देता है। भारत वैश्विक स्तर पर जलवायु न्याय, समानता और संवहनीय विकास के लिए एक विश्वसनीय आवाज के रूप में उभरा है। इसका दृष्टिकोण दिखाता है कि संरक्षण और जलवायु कार्रवाई दोनों ही विकास को मजबूत करने वाले स्तंभ हैं। यह स्पष्ट करता है कि नागरिकों की समृद्धि और पृथ्वी का संरक्षण एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। भारत दुनिया के 17 अत्यधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। दुनिया के कुल भूभाग का केवल 2.4% हिस्सा होने के बावजूद यहाँ दुनिया भर में दर्ज की गई सभी प्रजातियों में से लगभग 8% प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये देश 96,000 से अधिक पशु प्रजातियों और 47,000 पादप प्रजातियों का घर है, जिसमें दुनिया की लगभग आधी जलीय पादप प्रजातियां भी शामिल हैं। ये असाधारण प्राकृतिक विरासत संरक्षण को केवल एक पर्यावरणीय चिंता ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय अनिवार्यता बना देती है। भारत ने वन्यजीवों के संरक्षण और लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए हैं। इनमें संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क 2014 में 745 से बढ़कर 2025 में 1,134 हो गया है। जानवरों के आवासों को आपस में जोड़ने और उनके सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए वन्यजीव गलियारों की पहचान की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर 2014 में 46 बाघ अभयारण्य थे, जो 2025 तक बढ़कर 58 हो गए हैं और लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैले हैं। इनमें सबसे नया जोड़ा गया अभयारण्य मध्य प्रदेश का माधव बाघ अभयारण्य है। अखिल भारतीय बाघ आकलन का छठा चरण शुरू हो गया है। ये पिछली गणना पर आधारित है, जिसमें 2022 में 3,167 बाघ दर्ज किए गए थे। भारत प्रमुख भूदृश्यों में 32 पहचाने गए बाघ गलियारों के माध्यम से पर्यावास की कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करता है, जिससे दीर्घकालिक संरक्षण योजना और आनुवंशिक प्रसार को मजबूती मिलती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 2014 में हाथी अभयारण्य की संख्या 26 थी, जो 2025 में बढ़कर 33 हो गई है। इस विस्तार के कारण 8,610 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र हाथियों के संरक्षण के दायरे में आ गया है। वर्तमान में 15 राज्यों में 150 हाथी गलियारे चिन्हित किए गए हैं, जो हाथियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करते हैं। 2025 में प्रोजेक्ट चीता का विस्तार किया गया। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को छोड़ा गया। नियोजित विस्तार में नौरादेही और बन्नी घास के मैदान शामिल है। दिसंबर 2025 तक चीतों की कुल आबादी 30 तक पहुंच गई है, जिसमें भारत में जन्मे 19 शावक शामिल हैं। भारत ने 2019 और 2023 के बीच पहली राष्ट्रव्यापी हिम तेंदुए की गणना को पूरा किया। भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या 718 है, लद्दाख में 477 और उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए दर्ज किए गए। वहीं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत 2021 में से 2023 तक किए गए देशव्यापी सर्वेक्षण में 6,387 नदी में रहने वाली डॉल्फिन का अनुमान लगाया गया है। वन्यजीव सप्ताह 2025 के दौरान प्रजातियों के संरक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय स्तरीय परियोजनाएं, जिनमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर और प्रोजेक्ट घड़ियाल शामिल है, और नदी में रहने वाली डॉल्फिन, बाघ, हिम तेंदुआ और बस्टर्ड के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजनाएं और फील्ड गाइड जारी किए गए हैं, ताकि उनकी संख्या का सटीक आकलन और वैज्ञानिक तरीके से निगरानी की जा सके। इसके साथ ही सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
5: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के माफ कीजिए, दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
6: बदलाव किए गए हैं, आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
7: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना,
8: उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, गाय आधे दामों बेच दी गई। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
9: देहात की बकरी है, यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
8: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। झटपट मकान बदला, एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। अचानक काछी एक तरफ से आ निकला,
10: आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता, लाइए मैं काट देता।
8: और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
10: चलिए मैं रख देता हूं।
8: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया।
7: आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
8: दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काछी फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रे चुस्त करेगा। उसकी नजरों में गिर जाना मुंह से कालिख लगाने से कम शर्मनाक ना था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे, लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद्व आजाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपनी साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिटकिरीदार मेमे का निरंतर स्वर आ आकर कान के पर्दे को क्षत विक्षत करने लगा। कहां भाग जाऊं, बीवी ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था न किया। बड़े संकट में जान थी, आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज। 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था, अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी ना निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा होऊंगा और ये बकरी मेरी मालकिन रही होगी, उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने ये बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी जंजाल है, बच्चा ना होता तो क्यों इस मूजी जानवर की इतनी खुशामत करनी पड़ती। और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। ये सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख ना होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे ये फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी, मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाल एक पेड़ की जड़ से बांधकर सो गया। अब चरे जितना चाहे, अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठहरी, एक अच्छा सा खेल आया हुआ था, नौकर को भी साथ लिया वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूं कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेटकर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वो एक कदम भी चल सकती। ला हौल विला कुव्वत, जी में आया कि कमबख्त को यही छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल ना माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच ऐठन उसे छुड़ाया। 1 घंटा लग गया, मारे सर्दी के हाथ ठिठुर जाते थे और जी जल रहा था वो अलग। ये तरकीब और भी तकलीफ देह साबित हुई। अब क्या करूं, अकल काम ना करती थी। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदि है, उसकी कर्कश आवाज से नफरत करे तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी, जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो वो इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वो गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है, यहां तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर

0: पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहां अकेले में कौन मुझे देखता कि मैं पत्तियां तोड़ रहा हूं। अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। मगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। अभी मैं ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था मगर कौन सुनता, चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा, देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा। यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई 4 फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं। सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मर्दूत की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। हाँ, वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था, शैतानी आवाज कानों में आई।
1: कौन कौन है, कौन है रे, रे कहां से पत्तियां तोड़े लाता है, कौन है?
0: मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश ना रहा। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया मगर वो ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ, मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा,
2: आज कहाँ चले गए थे, इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए?
3: जीना मुहाल किए देती है ये, घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है।
0: मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकालकर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं।
2: बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए।
0: सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला।

0: मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे?
1: हुजूर, 8 आने बकरी मिलते हैं।
0: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
1: मर कही है क्या बाबूजी?
0: अरे नहीं नहीं बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
1: अभी तो दूध देती है।
0: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
1: दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा बाबूजी।
0: तुम्हारी मेहरबानी।
1: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रख कर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी। यहां तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज ना किया, काची के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर 1 बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,
2: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
0: हाँ, बहुत खूबसूरत।
2: जी चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
0: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
2: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
0: चोकर खत्म हो गया, बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
1: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: देवी जी ने कहा,
3: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
0: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
4: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काची जयंत पात्रिकर, काची की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गडरिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं

0: निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: मंजरी, देखिए एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है। ना वतन में रहते हैं, ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन, समय और दादाजी, पिताजी, काकाजी सब चले गए। कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
2: क्या बात है। और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुनकर के। और इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: तो राजुल जी, अंतराल के बाद सभी का एक बार स्वागत करते हुए
1: फिर
0: हम
1: से स्वागत है।
0: जी और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है इसकी रोकथाम के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है।
0: जी, और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है
0: जी
1: HIV, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं, और वैक्सीन अनुसंधान हो ज़्यादा
0: जी
1: से ज़्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है, और समय समय पर HIV की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही HIV एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय HIV वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले इस बात की कोशिश करता है, और
0: बिल्कुल
1: स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके HIV के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी
0: संदेश
1: बल
0: है
1: देता है।
0: जी। और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
1: हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है।

0: नया दौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और बहुत सारे संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो हैं वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते हैं, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा, स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं। तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीज़ों को देखते हैं कि क्या चीज़ें थीं जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में वो बहुत
0: बिल्कुल,
1: सारी जानकारियाँ।
0: हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। कई संग्रहालयों में उस समय के वस्त्र,
1: जी
0: पुराने पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय में देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी की या किमखाप कैसा
1: जी
0: चलता
1: जी
0: था,
1: जी
0: मलमल कैसा होता था,
1: बिल्कुल,
0: तो ये सब देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता
1: बहुत
0: है।
1: अच्छा लगता है। वजनदार चीज़ें जो दिखती हैं, ढाल, तलवार, ये सब कितनी वजन
0: हाँ,
1: वाली, कैसे वो
0: हथियार।
1: लेके चलते होंगे हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के ज़माने के जो होते हैं वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
0: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको
1: जी
0: संरक्षित करने के उपाय करें, और जागरूक भी रहें, और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो हैं वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो,
1: बिल्कुल,
0: देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीज़ें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित हैं, फिर भी हम उस शीशे पर बार
1: छूते
0: बार
1: हैं,
0: हाथ
1: हाँ
0: लगाते
1: वो सब
0: हैं।
1: नहीं करना
0: और
1: चाहिए।
0: कई बार जो चीज़ें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते

0: हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक
1: रिंग सी लगा
0: रह
1: रहती है,
0: रहती हैं,
1: डोरी
0: हाँ
1: लगी रहेगी
0: डोरी
1: हर।
0: लगी, जिससे कि बाधक बाधा रहे ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब
1: अच्छा
0: पुराने
1: नहीं
0: बहुत
1: लगता
0: समय
1: है
0: से संजो कर रखा गया है,
1: जी।
0: इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाएं।
1: पहुंचाएं, सही बात है। और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं। और वहां पर जो बुक्स मिलती हैं राजुल जी, उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियां अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स में,
0: कई
1: तो बड़ा अच्छा
0: संग्रहालयों में
1: लगता है
0: शोज भी होते हैं,
1: जी।
0: कि लाइट शोज होते हैं या कोई ड्रामा होता है या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो जरूर देखिए, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उससे और भी ज्यादा आपको पता लगेगा
1: बिल्कुल,
0: उस
1: करीब
0: वक्त के
1: पहुंच
0: बारे में।
1: जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो
0: और
1: चलिए
0: हम करीब पहुंच रहे हैं
1: गीत के
0: गीत के।

0: तो राजुल जी, अब हम व्यंजन बता देते हैं। पहले स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे।
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए।
0: हाँ,
1: चलिए
0: उसमें
1: चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं।
1: हाँ ठीक
0: बनारसी
1: है।
0: टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देसी घी या मक्खन, आधा 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए, और आधा छोटा चम्मच काला नमक और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेव, बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी, मिर्ची, थोड़ा सा मक्खन लेना है। और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं, टमाटर जब गल जाएं तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें, और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी और थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें, और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो उसको लगा

0: आप चलाते रहें और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है। और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन,
1: अरे
0: सेब,
1: वाह,
0: पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे और बनारसी स्वाद का आप इसको मजा ले सकते हैं। और आप देशी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये
1: तो
0: हमारी
1: हमारे
0: चाट।
1: एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि
0: बिल्कुल।
1: जरूर खाएंगे। और एक श्रोता कह रहे हैं कि बनारसी व्यंजन की बात हो रही है तो ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई, छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है,
0: तो बस आप
1: तो ये मिठाई
0: बताइए,
1: है नमकीन,
0: ये तो आप पढ़ेंगे
1: पर
0: सामग्री
1: अभी पता लग
0: बताएंगे
1: जाएगा। तो
0: जी
1: भाई छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताज़ा छेना या पनीर ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 चुटकी इलायची पाउडर और तेल तलने के लिए ले लीजिए। अब दही में मिलाने हैं क्या क्या, 2 कप ताज़ा दही हो, उसमें 2-3 बड़े चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक मतलब मीठा नमकीन दोनों, भुना जीरा पाउडर, और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है, और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तलें, निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख दें। अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें। अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल लें, ज़्यादा देर तक नहीं रखें नहीं तो
0: जी
1: वो फट जाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली, चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें। छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा, और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं,
0: क्या बात
1: चाहे
0: है।
1: तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं। और ख़ास बात तो यह है कि गर्मियों में बड़ा मज़ा देगा ये, और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, आप जब बता रही थी तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है।

0: दिल की ये बेचैनी, दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गाँव के गरड़िया अपने बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुप कर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़ कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच
0: जो
1: में
0: मोबाइल शरारते कर रहा है।
1: शरारते कर देता है। तो
0: हाँ
1: बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे हैं। तो वो एक आपसी तनाव होता है,
0: झुंझलाहट होती है।
1: झुंझलाहट होती है कि अरे यार खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है, मैसेज देखे जा रहे हैं। तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाने के समय
0: हाँ
1: मोबाइल
0: बिल्कुल
1: चलाइए।
0: बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिख भी रही हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है। इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है,
1: बिल्कुल
0: यानी दाल भात में मूसर्चन।
1: मुसरचंद। और एक साथी लिखती है कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है। वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप्पे से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नज़दीक और नज़दीक वालों को दूर कर दिया है।
0: सही
1: साथ
0: बात है।
1: रहने वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है, उन्होंने कहा है। जी
0: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर बातें होती थी, हंसी बांटी जाती थी। अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना, फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत
1: क्या
0: अच्छी बात कही
1: बहुत
0: इन्होंने।
1: अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहाँ तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता, शक और अनदेखी की भावना पैदा होने लगती है, दूरियाँ बन जाती हैं। इसे हम नज़रअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियाँ बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये ज़रूरी भी है, लेकिन इसके कारण घर के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी सदस्यों को जोड़ कर रखता था,
0: एक डोर में बांधे रहता
1: बांधे रहता था। बिल्कुल बहुत अच्छी बात लिखी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना ज़रूरी है। वाकई में ये बहुत पॉइंट अच्छा दिया है कि वो तो वहाँ डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे,
0: हाँ,
1: पूरे टाइम
0: लेकिन
1: नहीं लगा रहेगा अपने
0: ये
1: साथ।
0: समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। और देखिए ना, शिकायतें भी हो रही हैं और गीत भी चल रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो क्या करें, गीत सुन ले एक।
1: गीत सुन लेते हैं।

0: भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए। तो मोबाइल में की
1: तालमेल
0: भूमिका
1: कैसे
0: को जरा हाँ
1: जी
0: थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया जाए दिल।
1: बिल्कुल
0: एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष तो पुरुष, बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है, और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज़ धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोएं तो इसमें फिर आश्चर्य की क्या बात है। हाँ ये बात तो होती है ना कि अब सोते
1: बिल्कुल
0: समय भी कोई ये देख रहा है, तो
1: देख रहा
0: जबकि
1: है।
0: सोते समय थोड़ा मोबाइल से
1: मुझे
0: दूरी
1: लगता है कि
0: बरतना अच्छा
1: राजू
0: रहता
1: जी,
0: है।
1: हाँ, बेड से आप दूर ही रखिए मोबाइल, मेज पे रखिए, तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहुओं और बेटों की तू तू मैं कभी ना कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ, बस नाती नातिन से कह देते हैं मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा की मोबाइल मम्मी को, फिर सब शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे ज़रूरी है कि आप मोबाइल को दूरी रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का, बातें करने का, तो आप उससे अच्छे से बात कर लें।
0: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मोबाइल काफ़ी चीज़ों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण भी मोबाइल है। आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं। आज हम अपने असली रिश्ते को भूल कर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है,
1: बिल्कुल
0: और हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है,
1: और
0: लेकिन वक्त की कमी है।
1: बिल्कुल, और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा, तो सभी को मंत्री वर्मा और
0: राजुल का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूँगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है?
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज़ जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज़ अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज़ का जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज़ पे, तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में ज़रूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो, तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो, पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज़्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी, प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताओगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊँगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर, जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज़ छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
0: जी।
1: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
0: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
1: यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज़ खा सकते हैं, और इसका शरीर पूरा फ़ायदा उठा सकता है, तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी, ये वो चीज़ें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज़ें जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीज़ें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
0: जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धानिया जैसे हम बताते हैं, ये जो प्रोटीन है, इस ये बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट है, कुछ चीज़ें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके लिए हमें उसके फ़ायदे ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हम कॉम्बिनेशन में, जैसे मैं बताया, दो चीज़ें साथ में ले ले, तो ये कम्प्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिचड़ी।
0: अच्छा,

0: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं।
1: वाह,
0: तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने ज़माने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है और हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेज, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
1: अच्छा,
0: तो पहला अगर मैं देखूँ तो दूध और दूध के पदार्थ है, यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है। दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है। और तीसरा है जो मेरे कड़धान्य है, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊँ तो वो उतने ही अच्छे हैं जितना मेरा दूध अच्छा है।
1: अनाज के साथ।
0: बिल्कुल।
1: जी,
0: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे। जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी, ये सारा आ जाता है। ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं। भले दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी है।
0: हाँ जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज़ कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
1: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से।
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले। हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की, जहाँ तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का ज़माना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज़ होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो ज़रूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीज़ें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज़ हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदें मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का ज़माना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट पे सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम वो चीज़ घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
1: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज़्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो कच्चे हैं तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाफ देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फ़ायदे तो होते हैं, प्रोटीन ज़रूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है कई बार, ये मिथ है या सच है, कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
1: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है, लेकिन ये बात सच है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन नुकसान करता है,
0: वो कौन सी हैं?
1: जैसे किडनी की डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
0: बतौर एक आहार विशेषज्ञ, आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
1: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेज बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज़ परहेज नहीं करनी है।
0: प्रोटीन ले सकते हैं,
1: बिल्कुल ले सकते हैं, और ज़रूरी है वो ले, ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना ज़रूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज़्यादा नुकसान होगा।
0: जी जी
1: उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे। इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं
0: एक
1: कि
0: मिथ होता है
1: बीज
0: बैंगन
1: वाले,
0: बंद कर दीजिए,
1: हाँ बीज
0: टमाटर
1: वाली,
0: बंद।

0: कर दीजिए।
1: बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे, फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
0: जी, व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
1: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है, आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए,
1: ये वादा रहा इस मूवी से, ये वादा रहा
0: टाइटल
1: टाइटल
0: सॉन्ग सुनना
1: सॉन्ग।
0: है आपको।
1: जी बिल्कुल,
0: हाँ, ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था।
1: राइट।
0: हम सुनवा रहे हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो,
0: अच्छा।
1: वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि
0: पचा
1: इतना
0: नहीं
1: सारा
0: पाएगा।
1: पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो वो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज़्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा।
0: ओहो, हैवी हो जाएगा।
1: बिल्कुल वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज़। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक गिलास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो शक पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज़्यादा आसानी से यूज़ कर पाएगा, शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है, और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज़ करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीज़ें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीज़ों की एक साथ ज़रूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
0: जी। तो इसका मतलब ये है प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
1: और एक सिर्फ छोटी सी चीज़ ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहाँ पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की ज़रूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
0: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी एक डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें। तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
1: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कुछ कम करना चाहो रात के खाने से, तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज़ है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूँगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को, चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना है।
0: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में, इसका डिटेल बताइए आप।
1: ज़्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए, अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी ज़रूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
0: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
1: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रोटीन कम करने की ज़रूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व्ड है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बार, और उसमें लिवर की मदद लगती है, तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है, ये जितना वो प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है जैसे मैंने बताया किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज़ या क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है,
0: सीरम क्रिएटिनिन,
1: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
0: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए?
1: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज़्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है,
0: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से।
1: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से, आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्कशेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
0: जी जी जी भैया, बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
1: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
0: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व। और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं।
1: यस, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए ज़रूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन है वो है फैट सोल्युबल विटामिन। तो ये विटामिन्स के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स हैं, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स हैं जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हैं वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
0: अच्छा।
1: तो ये हमें रेगुलरली लेना ज़रूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज़ के रोज़ लेना है।
0: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है। लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा। तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्ब

0: एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी ज़रूरी है?
1: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है, वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है विटामिन डी के लिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब
0: या धूप
1: अच्छी
0: में
1: धूप हो,
0: निकले।
1: अच्छी धूप हो तब टहल के आए, जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वर्क में रहते हैं पैटर्न में, एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करें, ये ज़रूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट ज़रूरी है।
0: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
1: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग सोर्सेस है, और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफ़ी सारे खाने की चीज़ें ऐसी है
0: जैसे
1: जैसे फल हो गए, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, ठीक है। आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही ज़रूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक चीज़ कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज़ से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है, क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है, वो जो रीज़न है प्रोटीन खाने का वो रीज़न नहीं हो पाता है कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास वो विटामिन्स ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट
0: जैसे
1: होता है।
0: ऑरेंज है।
1: जैसे ऑरेंज है, जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है, मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है, और अगर मैं सब्जियाँ लूँ तो जितनी कलरफुल सब्जियाँ ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें। जितनी ज़्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज़्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज़्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये ना पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सब सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो ज़रूरी बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स आप इंश्योर
0: ग्रहण
1: कर रहे
0: करना
1: हो।
0: है। बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहतनामा कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है फिर म्यूज़िक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
1: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल
0: फिल्म
1: मूवी
0: से
1: से।
0: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन्स है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब मेरी आँखें ड्राई हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या
1: जिस
0: धुंधलापन।
1: धुंधलापन वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन्स कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोलबल सोर्सेस है तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन्स होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में,
0: जी।
1: राइट। दूसरा विटामिन जो बहुत ज़रूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोलबल वाइटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है,
0: इसका
1: और
0: क्या काम होता है?
1: ये ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत, और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीज़न है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इनवाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज़ बन जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन्स होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे।
0: जी।
1: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज़्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है,
0: जी।
1: ये मेजर सोर्सेस है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं बट ये तो ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इम्प्रूव करता है।
0: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है।
1: जी, तो और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है।
0: जी।
1: तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीज़ों में रहती है, जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं,

0: इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
1: नींबू
0: हैं,
1: है,
0: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रम स्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज़ देखी जाए तो मिर्ची,
1: ओहो,
0: मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी
1: हरी
0: होता है,
1: मिर्च।
0: हरी मिर्च में। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे।
1: जी। और देखिए, आहार जो आपने बताया है कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियाँ होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज़्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
0: जी, ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन्स का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या ना दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए।
1: अच्छा,
0: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे हैं या हम कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीज़न से या कारण से ज़रूरत से ज़्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं, वो मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज़ नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए, हर चीज़ रोटेशन पर रखो, हर फ्रूट्स हर सब्ज़ी रोटेशन पे रखो। जितना आप उसे अलग अलग चीज़ें खाएंगे अलग अलग समय पे, उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
1: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए।
0: इश्क भुलावा, हंसी तो फंसी, पिक्चर से।

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज़ की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीज़ों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज़ें अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीज़ें क्या है? पहला है आपका अनाज। तो आप चावल ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो। ठीक है, कड़धान्य जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है,
0: कठोर
1: तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तीसरा है आपकी सब्जियाँ,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: कोई भी सब्जी हो, और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है।
1: तो सब्जियाँ होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, पर ये ज़रूरी है, इसमें विटामिन्स भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीज़ें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं। तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेंगे, तब वो फ़ायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ। और इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है पानी, जिसे हम ज़्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज़्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीज़ें, पांचों चीज़ें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं। फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरीज ले लो, या आजकल मॉडर्न ज़माना है, पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज का ज़माना है, तो वो पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम आग बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज़ के पीछे।
0: कितनी हमें आवश्यकता है।
1: बिल्कुल
0: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही है तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
1: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं जो हमारे खाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतने ही खाएंगे। तो ये हमें ज़्यादा खाने से भी रोकता है, और ये ज़्यादा ज़रूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ़ है, डायबिटीज़, उनके लिए ये चीज़ बहुत काम करती है। उनके लिए भी ये चीज़ बहुत काम की है जिनको वज़न कम करना है,
0: जी
1: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत ज़रूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी ज़रूरी वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ
0: अच्छा।
1: नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू एक्सटेंड एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है। तो जो एसिड्स है स्टमक के वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीज़ें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिजोल्व हो गई है। तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज़्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए। तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाड करता है, मेरा पेट भर देगा, तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया, और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं वो अपना आहार लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
1: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं हैं। अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की ज़रूरत है, पर अगर आप ठीक हो
0: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है।
1: तो मिलना ज़रूरी है, एक बार मिलना ज़रूरी है। आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नुकसान कर सकता है। काफ़ी बार हम चीज़ें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फ़ायदा कर रहा है, या ये चीज़ें हम अवॉइड कर दे रहे। जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, और
0: या
1: उसमें
0: फिर वो बिना मलाई का दूध है।
1: एग्जैक्टली अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है। तो हर चीज़ के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप वो समझ लें फिर आप खुद से चीज़ें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है। वो इंटरनेट से पढ़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज़ का नॉलेज है, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन रहती है।
0: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा,
1: बिल्कुल नहीं,
0: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
0: उसकी प्रकृति अलग होती है।
1: उनकी प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीज़ें चेंज हो जाती है।
0: बिल्कुल
1: आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशंस अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका, हर एक इंसान अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग है, वो एक चीज़ पे नहीं मापी जा सकती। और अगर सिंपल चीज़ें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा। तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन्स अगर हमें चाहिए कि हम रोज़ खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज़ खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन्स आ जाएंगे। रोज़ दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इम्पोर्टेंस होता
0: जैसे
1: है।
0: गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
1: आम गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डायटिशियन की सलाह लगेगी ही,
0: जी
1: बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन्स है। तो वाटरमेलन भी अच्छा है, गर्मी में अभी वाटरमेलन की भी सीज़न है तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीज़न चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीज़न को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ प्रिजर्वड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीज़न छोड़ के अगर ठंडी की सीज़न में भी मिलने लगे तो मैं आम चूज़ करूँगी, तो वैसा नहीं करना है। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में, जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज़ तो कम से कम रखनी है। एक से ज़्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी ज़रूरत पूरी होगी, तब तक हमारी ज़रूरत नहीं पूरी होने वाली है।
0: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की ज़रूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीज़ें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले, ये भी ज़रूरी है। आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हो हाउसवाइफ हो, या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज़ कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज़ का, कि 4 घंटे से ज़्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात, कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीज़न है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से लें, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज़्यादा ना हो, बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीज़ें, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, जितनी भी चीज़ें चाहिए, वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ ख़त्म कर ली, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
0: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया आज के इस कार्यक्रम में। हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाज़त अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी इस समय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में

0: $100 billion इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: श्री मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री कल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि SOM बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के वरिष्ठ अधिकारी वैकल्पिक विवाद समाधान ADR से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। वहीं विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं, ताकि समय पर सहायता प्रदान की जा सके और वे देश के नागरिकों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। केरल में नई UDF सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और रसोईया कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना शामिल है। राज्य में नई विधानसभा का सत्र इस महीने की 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान WHO के महानिदेशक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों में नेतृत्व की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, शाम के 5:05 हो चुके हैं और हम हाजिर हैं आज शाम के कार्यक्रमों के साथ। तो आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं आज शाम हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओं, कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम। पहाड़ी

होली में भजन इस कार्यक्रम में आपको सुनवाए जाएंगे और युवा साथी अपना कार्यक्रम युव मंच सुन सकते हैं शाम 5:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से शाम 6:00 व शाम 7:45 पर। सफर सुहाने, गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:05 पर और खेतीबाड़ी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:30 पर। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे शाम 7:00 और भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:05 पर। 7:25 पर समय रहेगा कार्यक्रम रौनका गराइंदियाँ का और श्रोताओं फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 8:00 से लेकर 8:45 पर मिनट तक कार्यक्रम रहेगा फिल्म संगीत। समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात 9:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे और विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले सकते हैं रात 9:15 से लेकर रात 10:00 तक। श्रोताओं आज है सोमवार और आज के दिन आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00 और 10:30 पर समय रहेगा हमारे दैनिक कार्यक्रम चांदनी रातें का। देर रात 11:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। तो श्रोताओ ये थी हमारे केंद्र से आज शाम रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:07 हो चुके हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस शिव भजन के साथ, गाया है इसे जोगिंदर बल्ला ने।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। FM बैंड 101.8 MHz पर शाम के 5:15 हुए हैं और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं करनैल राणा द्वारा गाई माता की ये भेंट।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:24 हुए हैं और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या।

श्रोताओ, इसी कृष्ण भजन के साथ आज का भजन संध्या कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 MHz पर शाम के 5:30 हो चुके हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवमंच।

युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस युवमंच कार्यक्रम में। और आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे यानी सुकृति के साथ। इस कार्यक्रम में आपको हम जानकारी देते हैं और साथ में करते हैं आपका मनोरंजन चंद गीतों के साथ। और आज भी हम कुछ ऐसी ही जानकारी आपके साथ साझा करने आए हैं इस कार्यक्रम में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। और देखिए कार्यक्रम में अगर हम बात करें दिन विशेष की, तो आज है 18 मई और 18 मई 2026 को विश्व भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे। जी हाँ, विश्व भर के संग्रहालय एक विभाजित विश्व को एकजुट करने वाले संग्रहालय विश्व के तहत ये जो आज का अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है। और ये विषय सांस्कृतिक, सामाजिक और भू राजनीतिक विभाजनों को पाटने, संवाद, समझ, समावेश और शांति को बढ़ावा देने में संग्रहालयों की क्षमता को उजागर करता है। ज्ञान के केंद्र होने के नाते संग्रहालय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी सम्मान में योगदान देते हैं। और इस वर्ष मई में यानी आज मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 के अवसर पर हम आपको भी संग्रहालय एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते हैं विषय पर जो है वो इस पर आमंत्रित करते हैं। और ये विषय पूरे वर्ष आईकॉम की 80वीं वर्षगांठ के समारोहों का भी मार्गदर्शन करेगा। संग्रहालय भरोसेमंद सार्वजनिक स्थान है जहां लोग कहानियों, वस्तुओं और एक दूसरे से मिलते हैं। सामाजिक विखंडन, ध्रुवीकरण और ज्ञान एवं संस्कृति के एतक असमान पहुंच के इस दौर में संग्रहालय पीढ़ियों, समुदायों और सीमाओं के बीच संबंध को पुनर्स्थापित करने में मदद करते हैं और दुनिया भर के समुदायों के भीतर और उनके बीच संवाद, समझ, समावेश और शांति को बढ़ावा देते हैं। संग्रहालय एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते हैं विषय संग्रहालयों की उस क्षमता को उजागर करता है कि जिसके द्वारा वे सांस्कृतिक, सामाजिक और भू राजनीतिक विभाजनों को पाटने वाले सेतु का काम कर सकते हैं और विश्व भर के समुदायों के बीच संवाद, समझ और शांति को बढ़ावा दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के माध्यम से आईकॉम 2020 के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG का समर्थन कर रहा है और प्रतिवर्ष लक्ष्यों के एक समूह को बढ़ावा देता है। और इस वर्ष का विषय जो है वो तीन लक्ष्यों पर आधारित है। उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आता है SDG 10, असमानताओं में कमी, देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता को कम करना। SDG 16, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। SDG 17, लक्ष्यों की के लिए साझेदारी, सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना। आईकॉम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय समुदाय के सभी सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 में भाग लेने और इस विषय को स्थानीय स्तर पर सार्थक कार्यों में रूपांतरित करने के लिए आमंत्रित करता है, जिसमें सहभागिता, पूर्ण कार्यक्रम, साझेदारी और सुलभ अनुभव शामिल हैं जो अपनेपन और विश्वास को मजबूत करते हैं। आईकॉम जो है वो आपके और आपके संबंधित संग्रहालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए भी उत्सुक है। देखिए दोस्तों, ये जो दिवस है ये हर साल जो है 18 मई को मनाया जाता है और वर्ष 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता एवं महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसका मूल उद्देश्य जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता तथा उनके कार्यकलापों के बारे में जन जागृति फैलाना था। इसका यह भी उद्देश्य था कि लोग संग्रहालयों में जाने, अपने इतिहास को, अपनी प्राचीन समृद्ध परंपराओं को जाने और समझें। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अनुसार संग्रहालय में ऐसी अनेक चीजें सुरक्षित रखी जा

के लिए काम कर रहा है। इसमें हमें ये भी पता चलता है कि सामरिक इतिहास की स्वीकृति सामंजस्य के बैनर के तहत साझा भविष्य को देखने के लिए पहला कदम है। संग्रहालयों में अकथनीय कहने का विकल्प चुनते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा चयनित 2017 का विषय ये दिखाता है कि मानव जाति के निहित चुनौतीपूर्ण इतिहास के समझ से बाहर पहलुओं को कैसे समझना चाहिए। ये संग्रहालयों को मध्यस्थता और कई बिंदुओं के दृश्य के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से दर्दनाक इतिहास को संबोधित करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस में भागीदारी पूरे विश्व में संग्रहालयों के बीच बढ़ रही है और 2016 में कुछ 145 देशों में 35,000 से अधिक संग्रहालयों ने भाग लिया था। तो ये 2016 का डेटा है और आज है 2026। तो 10 साल में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें बढ़ोतरी तो ज़रूर हुई होगी और हर साल एक नए विषय के साथ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और अब हम आपको बताएंगे विश्व के 10 प्रमुख संग्रहालय। जी हाँ, दुनिया में जो हैं वो बहुत से संग्रहालय हैं। अगर हम बात करें हिमाचल की तो हिमाचल में जो है वो भूरी सिंह म्यूज़ियम जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। और अगर बात करें हम दुनिया के जो भर के जो शीर्ष 10 संग्रहालय हैं तो जो इतिहास कला और संस्कृति के सबसे उत्कृष्ट संग्रह शामिल हैं जिनमें, तो इनमें सबसे पहला नाम आता है लूव्र संग्रहालय, म्यूज़े दू लूव्रे। जी हाँ, पेरिस फ्रांस में जो है ये है और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध कला संग्रहालय जहाँ लियोनार्डो द विंची की मोनालिसा और वीनस दी मेलो की जैसी कालजीय कृतियाँ रखी गई हैं। बात करें अगर ब्रिटिश म्यूज़ियम की तो ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और मानव इतिहास कला और संस्कृति का विशाल संग्रह इस ब्रिटिश संग्रहालय में है। यहाँ रोजेटा स्टोन और पार्थेनन की मूर्तियों का मुख्य आकर्षण है। और बात करें अगर तीसरे नंबर पे तो द मेट यानी मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क यूएसए में ये स्थित है, पश्चिमी गोलार्ध का सबसे बड़ा कला संग्रहालय जिसमें प्राचीन मिस्र से लेकर आधुनिक अमेरिकी कला तक शामिल है। स्टेट हर्मिटेज संग्रहालय, इसकी बात करें ये सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है और दुनिया के सबसे बड़े और पुराने संग्रहालयों में से एक जो शाही महलों की एक श्रृंखला में फैला हुआ है। बात करें अगर हम स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन की तो वॉशिंगटन डीसी यूएसए में ये स्थित है, अनुसंधान और संग्रहालयों का दुनिया का सबसे बड़ा परिसर जिसमें 19 संग्रहालय और राष्ट्रीय चिड़ियाघर शामिल हैं। वेटिकन म्यूजियम की बात करें तो पोप द्वारा सदियों से एकत्र किए गए विशाल संग्रह और प्रसिद्ध सिस्टिन चैपल की छत यानी माइकल एंजेलो की कला यहाँ मौजूद है। म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, प्राकृतिक इतिहास डायनासोर के जीवाश्मों और विशाल जीवों के कंकालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये। और बात करें अगर हम रिक्स म्यूजियम एम्स्टरडैम नीदरलैंड में है ये, तो डच स्वर्ण युग की उत्कृष्ट कलाकृतियों का प्रमुख केंद्र है जहां रेम्बॉर्ट और वर्मीर जैसे कलाकारों की पेंटिंग्स हैं। प्रेडो म्यूजियम की बात करें, म्यूजियो डेल प्रेडो मैड्रिड स्पेन में है ये, स्पेनिश शाही संग्रह का घर जिसमें 12वीं से 19वीं सदी के बीच यूरोपीय कला का बेहतरीन खजाना मौजूद है। बात करें अगर हम एक्रोपोलिस म्यूजियम की तो ये एथेंस ग्रीस में है, प्राचीन यूनानी सभ्यता और विशेष रूप से एक्रोपोलिस के स्मारकों से जुड़े पुरातात्विक अवशेषों को समर्पित है। तो ये तो थे कुछ वर्ल्ड के टॉप 10 म्यूजियम जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। और अब हम बातचीत को यहां देंगे थोड़ा सा विराम और सुनेंगे कार्यक्रम में एक गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप युव मंच अपने दोस्त सुकृति के साथ। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने कार्यक्रम में पहले बात की इंटरनेशनल म्यूजियम डे के बारे में, और अब हम बात करेंगे म्यूजियोलॉजी के बारे में। जी हाँ, आप अगर 12th के एग्ज़ाम आपने पास कर लिए हैं तो आप 12th एग्ज़ाम पास करने के बाद आप म्यूजियोलॉजी में अपना करियर बना सकते हैं, और इस कोर्स के बाद आप जो है वो म्यूजियम्स में नौकरी कर सकते हैं, आपको म्यूजियम्स में नौकरी करने का मौका मिल सकता है। हेरिटेज पसंद करने वालों के लिए किसी म्यूजियम में समय बिताने से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को इतिहास के पन्नों में झांकना अच्छा लगता है। अगर आपको भी अपने देश की विरासत से लगाव है, पुरानी कलाकृतियों को आप पसंद करते हैं, तो आप म्यूजियोलॉजी यानी संग्रहालय विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं, और ये कोर्स आपके लिए जो है वो बेस्ट करियर ऑप्शंस के दरवाजे खोल सकता है। आपको जो है वो आप अपना भविष्य जो है वो इसमें संवार सकते हैं। कला की ओर बढ़ते रुझान को देखते हुए म्यूजियोलॉजी में के क्षेत्र में जो है वो विस्तार हुआ है, और आजकल इस फील्ड में योग्य प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। देश भर में सैकड़ों सरकारी और प्राइवेट म्यूजियम्स हैं जो योग्य लोगों को जॉब्स ऑफर करते हैं। बात करें अगर म्यूजियोलॉजी की कि म्यूजियोलॉजी क्या है, तो म्यूजियोलॉजी में इतिहास और पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी के साथ समाज पर उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च और कलेक्शन के साथ उन चीज़ों के रखरखाव, म्यूजियम डिज़ाइन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाती है। इसमें म्यूजियम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है। म्यूजियम में ऐतिहासिक, साइंटिफिक और कलात्मक चीज़ों को सहेज कर रखने वाले प्रोफेशनल्स को म्यूजियोलॉजिस्ट कहा जाता है, और ये म्यूजियम्स के में क्यूरेटर्स की तरह काम करते हैं। बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, तो म्यूजियोलॉजी कोर्स में एडमिशन के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम योग्यता 12वीं पास चाहिए, और किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ये कोर्स कर सकते हैं, बशर्ते उनकी रुचि हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, आर्ट, इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स आदि में हो। भारतीय और विदेशी परंपरा और धरोहर को समझने के लिए फॉरेन या क्लासिकल लैंग्वेज जैसे संस्कृत, पर्शियन, लैटिन, ग्रीक, अरेबिक, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच आदि का ज्ञान होने के से जो है वो करियर में जल्दी तरक्की मिलती है। विदेशी डेलीगेट्स और आर्कियोलॉजिस्ट के साथ काम करने के लिए उम्मीदवारों में बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, और इसके अलावा डिजाइनिंग, स्केचिंग की बेसिक जानकारी से कलाकृतियों को फिर से डिजाइन करने और उनकी डेटिंग सीखने में आसानी होती है। बात करें अगर म्यूजियोलॉजी कोर्सेज की, तो म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD कोर्स उपलब्ध हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए प्राचीन इतिहास, संस्कृति, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में ग्रेजुएट होना चाहिए, और बाकी के अगर कोर्सेज की बात करें जो इस फील्ड के मुख्य कोर्स हैं, तो हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स इन म्यूजियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी, BA इन म्यूजियोलॉजी, BA इन आर्कियोलॉजी, PG डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन, PG डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, एडवांस डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी, MA इन म्यूजियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी, और MPhil इन म्यूजियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। PhD भी आप म्यूजियोलॉजी और आर्कियोलॉजी में कर सकते हैं। बात करें अगर स्कोप की और वर्क प्रोफाइल की, तो कोर्स पूरा होने के बाद नेशनल म्यूजियम, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, आर्ट गैलरी आदि में नौकरी मिलती है। म्यूजियोलॉजिस्ट किसी भी म्यूजियम में क्यूरेटर, डिप्टी क्यूरेटर, रिसर्च एसोसिएट मैनेजर आदि के रूप में काम कर सकते हैं और सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में रोजगार के अवसर हैं। राष्ट्रीय धरोहर बचाए रखने की दिशा में सरकारें आजकल खूब ध्यान दे रही हैं, और इसके साथ प्राइवेट म्यूजियम व गैलरी भी खुल रहे हैं। इस वजह से इस क्षेत्र में जो है वो नौकरी के अवसरों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा उम्मीदवार चाहें तो एमफिल और पीएचडी कर टीचिंग और रिसर्च के क्षेत्र में भी सुनहरा करियर जो है वो बना सकते हैं। टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें इंडिया में तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूपी, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, स्कूल ऑफ आर्काइव स्टडीज न्यू दिल्ली, सेंटर फॉर म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन जयपुर, महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा वडोदरा और कलकत्ता यूनिवर्सिटी कोलकाता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई और जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू। ये सभी जो हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, जहां पर आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। बात करें अगर सैलरी की तो क्यूरेटर की बात करें तो एक क्यूरेटर म्यूजियोलॉजिस्ट के लिए शुरुआती वेतन लगभग 25,000 से 35,000 रुपये प्रतिमाह हो सकता है, जबकि सीनियर क्यूरेटर को महीने में 65,000 से 75,000 रुपये तक ऑफर किए जा सकते हैं। अनुभव और पोस्ट के हिसाब से सैलरी बढ़कर लाखों तक पहुँच सकती है और सरकारी जॉब में सैलरी के अलावा अन्य सुविधाएँ भी मिलती हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी पैकेज काफ़ी बेहतर मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अधिक कमाना चाहता है तो वो भारत के बाहर भी नौकरी पाने का प्रयास कर सकता है और ये कोर्स के बाद जो है विदेशों में भी नौकरी के अवसर आपको मिल सकते हैं। तो देखिए एक बहुत ही रोमांचक जो है वो करियर ऑप्शन है ये म्यूजियोलॉजिस्ट बनने का और म्यूजियोलॉजी में करियर बनाने का। जी हाँ, और देखिए अगर आपकी रुचि है इस चीज़ में तो आप इस करियर ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
0: ओहो
3: दोनों डील करा सील
1: टाइट वेरी टाइट।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
4: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
3: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
4: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
5: तो श्रोताओ, इसी के साथ ही आज का युव मंच कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अपनी दोस्त सुकृति को इजाजत दीजिए। फिर यूं ही चलते चलते किसी और दिन किसी और कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युव मंच, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में 47 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हालांकि नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस व भाजपा दोनों ही प्रमुख दल इन चुनावों में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि कुल 47 नगर निकायों में से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 32 निकायों पर जीत हासिल की है। उन्होंने इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जीत राज्य सरकार की कार्यशैली का आधार है और समाज के हर वर्ग ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में दावा किया कि भाजपा ने 47 में से 30 शहरी निकायों पर जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि 25 नगर परिषदों में से 18 और 12 नगर पंचायतों में से 12 पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन चुनाव परिणामों से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस सरकार से भरोसा उठ चुका है।
1: 25 नगर परिषद में से 18 पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते और 22 नगर पंचायत में से 12 पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते। पार्टी के सिंबल पर भले ही ये चुनाव नहीं है, लेकिन

0: एक बहुत बड़ा संदेश इस बात को लेकर के, क्योंकि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है उसको मालूम पड़ जाता है कि किस पार्टी से संबंध रखता है। पिछले कल रात से बहुत ज्यादा परेशानी में सरकार है। प्रभाव का इस्तेमाल करने की अगर वो कोशिश करेंगे उसमें भी वो एक्सपोज होंगे।
1: शहरी निकायों के चुनाव परिणामों के बाद भाजपा व कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि शहरी निकायों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है। उन्होंने कहा कि इन चुनावी नतीजों से ये स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ करारा जवाब दिया है। उन्होंने इस जीत के लिए भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। दूसरी ओर कांग्रेस संगठन के प्रदेश महासचिव विनोद जिंटा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने 47 में से 31 नगर परिषद व नगर पंचायतों में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि सत्ता के इस सेमीफाइनल में कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है।
2: नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक तरफा बहुमत मिला है। ऐसे बहुत सारे जिला है जहां कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। चंबा जिला के तीनों नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती है। जिला कांगड़ा के अंदर भी 6 नगर परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव हुआ, जिसमें 6 की 6 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। 31 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी अपना चेयरमैन बनाने जा रही है, ये बिल्कुल तय है।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज तिरुवनंतपुरम में केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने वीडी सतीशन को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में केरलम विकास, सामाजिक न्याय व सुशासन की नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, शिक्षा और इतिहास के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इस मौके पर धर्मशाला स्थित कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कांगड़ा की एसडीएम शिल्पी बेगटा ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान देश भर से आए कई जाने माने कलाकारों ने लगभग 50 कलाकृतियां प्रदर्शित की हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को हर कलाकार की रचनात्मकता व कला देखने को मिल रही है।
3: मेरा नाम मनप्रीत है, मैं लुधियाना से आई हूँ। टोटल आई थिंक मोर देन 45 पेंटिंग्स हैं सबकी मिला के, और सबका अलग अलग काम है, अलग अलग, कहते ना हर किसी का अपना अलग हाथ होता है, अपना अलग अलग क्रिएटिविटी या अलग अलग काम है, और सबने बहुत मन से काम किया, बहुत एफर्ट दिए हैं अपना यहाँ पे लाके लगाने के लिए।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक से मुलाकात की। इस दौरान नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पारंपरिक चिकित्सा, AI आधारित जन स्वास्थ्य नवाचारों और TB उन्मूलन की दिशा में निरंतर प्रयासों जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
4: आपने ट्यून किया है FM हमीरपुर 101.8 MHz पर। शाम के 6:05 हो चुके हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने।

सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे यानी सुकृति के साथ। श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कर्ज फिल्म के इस गीत के साथ।

0: नहीं है इलाज दुनिया में और कोई तो गाओ ओ।
1: जी बिल्कुल, इस रोग का इलाज तो कोई नहीं है, पर शांति का इलाज जो है वो हमारे अपने पास है कि हम अपनी अगर इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल कर लें, अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, तो हमारे जो मानसिक शांति है हम उसको अटेन कर सकते हैं। और शांति के लिए थोड़ा सा जो है वो मौन व्रत धारण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि थोड़ा कम बात करेंगे हम, या फिर थोड़ा सा हम दिन में कुछ इतना सा अपने लिए समय निकालें जो आपका अपना मी टाइम हो। मी टाइम मीन्स जो आपने सिर्फ अपने लिए चूज़ किया है, जिसमें आप बिल्कुल किसी से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल स्क्रीन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं देखेंगे, वो चाहे फ़ोन की हो, टीवी की हो, या फिर कुछ और हो। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, आप जो अटेन करना चाहते हैं, जो आपका एम है, ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ के, उसको उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में मैनिफेस्ट कीजिए, और ऑटोमेटिकली जो है वो यूनिवर्स आपको वो पावर देगा उस चीज़ को अटेन करने की, उस चीज़ को अचीव करने की। बहरहाल प्रोग्राम है सफ़र सुहाने, गाने नए पुराने, फिल्म कर्ज से ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार ने इस गीत को गाया था, और आइए अब आपको सुनवाते हैं द डर्टी पिक्चर से ये गीत, और इस गीत को गाया है बप्पी लाहड़ी और श्रेया घोषाल ने।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आपने ट्यून किया है FM हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:19 हो चुके हैं और सुन रहे हैं प्रोग्राम आप सफर सुहाने, गाने नए पुराने। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तुम्हारी सुलु का ये गीत, और इसे गाया है, लिखा है और म्यूजिक भी गुरु रंधावा का है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे बिल्लो, जो भी देखे यही पूछे है किसकी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई,

गोल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और दिलेर मेहंदी और रेखा भारद्वाज ने इस गीत को गाया था। और इसी के साथ ही आज का सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अपनी दोस्त सुकृति को इजाजत दीजिए और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। कीजिए उस कार्यक्रम का के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ, शाम के 6:30 हो चुके हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वालों के सारे श्रोताओं जो मेरा यानी कि मंगलां दा कन मेरे ने सौगी
1: रमां दा प्यार भरिया
0: नमस्कार राम राम।
1: खेतीबाड़ी कार्यक्रम विच जे असे अपने सारे ही बागवान पशु पालक भाई बहनों का जे असे स्वागत करते हैं कन उम्मीद करते हैं कि अहां दे सारे ही किसान बागवान पशु पालक भाई बहन जे असे ठीक ठाक होने अपने खेतीबाड़ी के कम्मां कारां सौगी सौगी जे असे गर्मियों के दिनों विच जे असे अपने माला पशुओं का कने अपनी खेतीबाड़ी का जे असे खूब ख्याल जे असे रखा दे होने।
0: बिल्कुल बे अहे किसान लोग तबे किसानां दा काम ही ए आ पर भी इसने सौगी सौगी जी ऐसे सारते पहले ही अपनी

0: जाती है क्योंकि इस बीच जैसे जल निकासी भी अच्छी तरह जैसे हो जाती है कने पीएच मान जैसे 6.8 तक होना चाहिए ये या।
1: बिल्कुल कने अगर जे गल करिए खेतर दी तैयारी दी ना तब एक खेतर जहां जो पहले 2-3 बार जोती लाना चाहिए इसके बाद यह सुहागा चलाए ने खेतों जो ऐसे समतल करना चाहिए कंताली जी बी बहना ताली भी मिट्टी के बीच पर्याप्त नमी जैसे भी होना चाहिए
0: जी।
1: कने अगर जो बरखा का टाइम है ना तो पानी की निकासी की भी उचित व्यवस्था करना चाहिए ताकि खेतर पानी का साड़ा नहीं पवे।
0: बिल्कुल कने उन्नत किस्म की अगर हाँ गल करिए पालम कोमल जी से भी अच्छी किस्म ही इस पालम कोमल की अगर हाँ गल करिए इसके फल जे इसे पंजा किनारे आए जे इसे होंगे कने ये किस्म जे इसे येलो मोजैक विषाणु रोग से प्रतिरोधी है कने कई दिनों तक जे अस इसके फल जे इसे मुलायम रेंदे हैं कने इस सौगी औषध उपज की अगर हाँ गल करिए 200 क्विंटल प्रति हैक्टर जी से इस उपज है।
1: बिल्कुल कने अगर जे P8 की गल करिए बी यह किस्म के पौधे जो होंगे से मध्यम ऊंचाई आए होंगे कने फल जे से 12-16 सेंटीमीटर लंबे होंगे भी है कने इसका जोड़ा फल हों ना से 10 फल प्रति पौधा जैसे ये दिंदी भी किस्म पीले मोजेक विषाणु रोग ताए जे एक किस्म प्रतिरोधी होंगी कने इसकी औसत उपज की गलबात करिए ना तब 110 क्विंटल प्रति हैक्टेयर के हिसाब ने अहो इसकी उपज मिली आती भी।
0: बिल्कुल कने इसके अलावा जे अस वर्षा उपहार अर्का अभय अर्का अनामिका प्रभनी क्रांति ये किस्म भी आंध्र प्रदेश की जलवायु ताई जे अस बिल्कुल ठीक हैं कने निराई गुड़ाई की गल करिए भिंडी के खेत जो जे अस खरपतवार मुक्त रखने ताई जे अस फसल की बिजाई ते 15-20 दिन बाद जैसे पहली निराई गुड़ाई यहाँ कर देनी है।
1: बिल्कुल भिंडी की गल करा दे ना तभी यह जलवायु भी दसी थी भूमि भी दसी थी केड़ी होना चाहिए खेतर की तैयारी किया करनी उन्नत किस्म जैसे केड़ी केड़ी होना चाहिए निराई गुड़ाई केड़ी होना चाहिए भी सारिया गल्ला ध्यान रखना पौंदा पर आन गल आंदी बीज कने बीजोपचार दी
0: जी
1: ता बे भिंडिये की बुआई ते जी गर्मी की रीत होंगी ना इस लगभग 15-20 किलोग्राम कने बरखा 10-12 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर के हिसाब ने जैसे बीजे की जरूरत पौंदी भी
0: जी।
1: कने बीजो बाहने से पहले जैसे लगभग 24 घंटे तक जो असें पानी में डुबोने जैसे अहो रखना चाहिए भी है
0: जी।
1: तो इससे क्या होंगे भी बीजा में अंकुरण अच्छा होंगे कने बीजा जो थीरम कने कार्बेंडाजीम फफूंद नाशक ने भी उपचारित कर लेना चाहिए
0: जी।
1: कने जे उर्वरकों की गल करिए ना तो खेतर की तैयारी करते टाइम ही ना 10 टन गोबर की गली की सड़ी की खाद जी कने 150 किलोग्राम इफो 12:32:16 ची मिश्रित खाद मिट्टी ची जी असें मिलाई देनी भी
0: जी।
1: 60 किलोग्राम यूरिया पहली के निराई गुड़ाई के टाइम जी असें हाँ जो पाना चाहिए कने 60 किलोग्राम यूरिया जी असें हाँ जो फुला आने की अवस्था बिच पाना चाहिए
0: जी।
1: कने जे बरखा का टाइम हो तो भाई 100 ग्राम यूरिया जी असें हाँ जो प्रति 10 लीटर पानी बिच कोड़ी ने जी छिड़काव करना चाहिए।
0: कने बिजाई की गल करिए भिंडी की बिजाई जी असें हाँ जो कतारा च करनी चाहिए कतारा की दूरी जी इसे 45-60 सेंटीमीटर जबकि पौधे की दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर जी असें हाँ जो रखना चाहिए। अंकुरण उपरांत जे असें हाँ बीज घट जे असें उगदा ही है तो इस जो दोबारा बिजाई भी हाँ करी सकते हैं अगर पौधे घने हैं तो इन्हों की छंटाई भी हाँ करी सकते हैं कने गर्मिया की फसल बिच जे असें इसकी बिजाई भी करी सकते हैं दिखा बरसाती दे पहले जे असें हाँ जून जुलाई बिच भी यहाँ की फसलों की बिजाई जैसे कर सकते। सिंचाई की गल करिए अगर खेतों च नमी नहीं आई तो बीज के अच्छे अंकुरण वास्ते जे असें हाँ बिजाई तो पहले भी एक बारी सिंचाई जैसे जरूर कर देनी है कने गर्मियों बिच जे असें फसल की सिंचाई हाँ 5-7 दिन के अंतराल पर जे असें करते रहना चाहिए पर अगर बिच बरखा हो गई है तो इसके अनुसार ही हाँ जे असें खेत सिंचाई करनी है। कने सौगी तुड़ाई और उपज की गल करिए भिंडी के फलों की तुड़ाई सामान्य किस्म पर जे असें निर्भर करती है कने इसकी तुड़ाई करीब 45-60 दिन जे असें शुरू हो जाती है तुड़ाई 4-5 दिन के अंतराल पर जे असें करते रहना ही है 100-120 क्विंटल उपज प्रति हैक्टर जे असें प्राप्त हाँ कर सकते हैं।
1: बिल्कुल तभी ये तो गलबात हो भिंडी की फसल जी असें हाँ कि लैनी भी कने बी टाइमा टाइमा पर जे असें हाँ जो दिख सुन करते रहना चाहिए तो यहाँ जो भिंडी की जी खरी उपज मिलनी भी कने बी जो दिख सुन करते रहेंगे ना तो टाइमा टाइमा पर अगर जितनी कोई रोग कीट वगैरह लगी दो तभी तिना का भी पता लगी आता भी आस ताए जे असें हाँ कोई ना कोई बंदोबस्त करी सकते भी है
0: जी। तो दिखा भाई ये तो गलबात हुई भिंडी की वैज्ञानिक तरीके कन्ने हाँ फसल जी असें कि ले सकते
1: कन्ने उन कार्यक्रम भी सुनना हाँ एक लोक गीत
0: जी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: गौर स्टोरा ने ओस्लो में सीमित और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तथा आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाले व्यापक अवसरों का भी उल्लेख किया। बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री सुश्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल

0: डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उच्च ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज दीपक सिंगला और अन्य हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव लड़ा था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: आप इस वक्त जुड़े हैं आकाशवाणी हमीरपुर के साथ। श्रोताओं, शाम के 7:05 हो चुके हैं और अब आप आनंद लेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम में। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और आइए कार्यक्रम में आपको सबसे पहले सुनवाते हैं ये शिव भजन। फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथी।

सोनू निगम, विनोद कुमार राठौड़ और साथियों का गाया ये शिव भजन अभी आपने सुना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जूली फिल्म से ये कृष्ण भजन। इसे गाया है आशा भोंसले और उषा मंगेशकर ने।

श्रोताओ, अभी आपने सुनी पुकार फिल्म से ये प्रार्थना, लता मंगेशकर व साथियों ने इसे गाया था। और इसी के साथ ही आज का भक्ति संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 7:25 हो चुके हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रौनका गराइंदियाँ।

इस मौसम च थोड़ी देही भी लापरवाही अगर अहां बरतन तां अहां थकान, लू, बुखार कने त्वचा ते संबंधित समस्याएं कने पाचन संबंधी समस्याओं दा शिकार होई सकदे हन। तां इस करी ने जरूरी है कि अहां गर्मियां दे मौसम जो समझन कने अपने स्वास्थ्य दी सही देखभाल करन। गर्मियों च सब ते ज्यादा समस्या शरीर च पानी दी कमी दी हुंदी। आहां दे शरीरे दा ज्यादातर भाग जिहड़ा सी पानी ने बनिया कने जाली ज्यादा गर्मी पौंदी तां शरीर पसीने दे माध्यम ने पानी ओ बाहर कढ़दा। अगर अहां पर्याप्त मात्रा च पानी नहीं पींदे तां शरीरे च कमजोरी, चक्कर होना, सिर दर्द कने थकावट महसूस होना लगदी। कई बारी इह स्थिति जिहड़ी है गंभीर रूप भी ले लैंदी। तां इसलिए डाक्टर भी सलाह दिंदे कि गर्मियां च दिन भर पर्याप्त मात्रा च पानी पीना चाहिदा। सिर्फ प्यास लगने पर ही पानी नहीं पीना बल्कि थोड़ी थोड़ी देर च पानी पींदे रहना चाहिदा। इसने सौगी नींबू पानी, छा, लस्सी, नारियल पानी कने फलां दा रस जिहड़ा ऐ शरीर नूं ठंडक देने दे सौगी सौगी ऊर्जा भी दिंदा। गर्मियों दे मौसम च खान पान दा खास ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी हुंदा। इस समय हल्का, ताजा कने पौष्टिक भोजन करना चाहिदा। ज्यादा तलिया बुनिया कने मसालेदार भोजन जेड़ा है शरीर च गर्मियां और ज्यादा बढ़ाइंदा कने पाचन जो भी प्रभावित करदा। आहायो अपने खाने च हरियां सब्जियां, दही, सलाद कने मौसमी फलायो शामिल करना चाहिदा। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी कने संतरा ए दे फल शरीर च पानी दी मात्रा बनाई रखने च मदद करदे। कई लोग दिखा गर्मियों च बारा दियां खुलियां चीजां, कटे हुए फल कने बासी खाना भी खाई लैंदे जिसते पेट संबंधी बीमारियां जेहड़ियां से होई सकदियां न। तां इस करी ने हमेशा साफ कने ताजा भोजन ही खाना चाहिदा। गर्मियों च लू लगना भी एक बड़ी समस्या है। दोपहर दे वक्त तेज गर्म हवाएं चलदियां जेड़ियां जे शरीर दे तापमान जो और ज्यादा बढ़ाइंदियां। तां अगर अहां लंबे समय तक धुप्प च रहिंदे हन तां उसदे चक्कर होना, तेज बुखार कने बेहोशी इहदियां समस्याएं होई सकदियां न। तां इस करी ने दोपहर दे समय खासकर 12 बजे ते 3 बजे दे बीच बड़ा जरूरी अगर नहीं होवे तां बाहर निकलने ते बचना चाहिदा। अगर बाहर जाना जरूरी है तां फिर सिरे पर कपड़ा या टोपी जिहड़ी असें जरूर लगाना चाहिए। कपड़े ने या टोपी ने सिर ढकी लैना चाहिए कने सोगी छाते दा प्रयोग भी करी सकदे कने पानी भी जरूर अपने कन्ने रखना। छोटे बच्चे कने बुजुर्ग जिहड़े हन उन्हां नूं विशेष सावधानी की जरूरत होंदी कयो जे उन्हां दा शरीर गर्मियां जो जल्दी सहन नहीं करी पांदा। गर्मियों के मौसम च आहां दी त्वचा पर भी बड़ा असर पौंदा। तेज धुप्पा दे कारण आहां दी त्वचा जिहड़ी ऐ झुलसी सकदी कने और भी कई समस्याएं होई सकदियां। तां इस करी ने साफ सफाई दा विशेष ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। सूती कपड़े पहनना फायदेमंद रहिंदा क्योंकि सूती कपड़े जिहड़े हन से शरीर यो हवा दिंदे कने पसीना जिहड़ा उसी भी जल्दी सुखांदे जिसते शरीर यो आराम मिलदा। कई बारी आहां गहरे कने भारी कपड़े पहनी लैंदे पर गर्मियों च हल्के रंग कने ढीले कपड़े पहनना जेड़ा से स्वास्थ्य ताई भी बेहतर मन्या जांदा। गर्मियों दे मौसम च नींदर कने दिनचर्या दा भी बड़ा महत्व हुंदा। बड़ी ज्यादा गर्मियों दे कारण कई बारी कई लोकां दी नींदर जेड़ी से पूरी नहीं होई पांदी जिसते चिड़चिड़ापन कने थकान जेड़ी से महसूस होने लगी पौंदी। तां इस करी ने राती समय पर सोना कने सवेरे जल्दी उठना जेड़ा से फायदेमंद हुंदा। सवेरे दा वातावरण जेड़ा सै ठंडा भी हुंदा कने साफ सुथरा भी हुंदा। तां इस करी ने सवेरे समय पर उठना जेड़ा सै काफी ज्यादा फायदेमंद मन्या जांदा। आहां दे गांवां च दिखा कई लोग खेतां च बड़ी ज्यादा मेहनत करदे। किसान, मजदूर कने बाहर काम करने आले लोग इन्हें गर्मियों च ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत हुंदी। कम्मे दे दौरान बिचे बिचे च थोड़ा थोड़ा आराम करी लैना चाहिदा कने पर्याप्त मात्रा च पानी भी पींदे रहना चाहिदा। कई बारी आहां कम्मे च इतने व्यस्त हो जांदे कि पानी पीना ही भुली जांदे जिहड़ा जे आहां दे स्वास्थ्य ताईं नुकसानदायक होई सकदा। आहां दा शरीर जिहड़ा से आहां संकेत दिंदा तां इसलिए थकान या कमजोरी महसूस होने पर तुरंत आराम जिहड़ा से करी लैना चाहिदा। गर्मियों च बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी है। छुट्टियां दे दौरान बच्चे जिहड़े हन से ज्यादातर समय बाहर ही खेलदे जिसते उन्हें धुप्प कने गर्मी का असर जिहड़ा सै जल्दी होई जांदा। तां जिहड़े माता पिता न उन्हें चाहिदा कि बच्चें यो पर्याप्त पानी पिलाने की आदत भी पानी कने सौगी पौष्टिक खाना देना कने बड़ी ज्यादा धुप्पा च खेलने ते भी रोकना

बड़ा जरूरी है। कन्नै इयां ही बुजुर्गां दी अगर अहां गल करिए तां बुजुर्गां ही भी ज्यादा गर्मियां ते बचाना चाहिदा, कई जे उहनां दा शरीर जिहड़ा सै भी जल्दी थकी आंदा, कन्नै पानी दी कमी जिहड़ी सै जल्दी होई सकदी। हुण अजकल दी गल करिए तां अजकल जलवायु परिवर्तन दे कारण गर्मी जिहड़ी है सै पहले दी तुलना ने ज्यादा बढ़ी है ना, तापमान भी लगातार बढ़ा दा जिससे कई तरह दियां समस्याएं हुण आम होईयां। तां ऐसे समय च पर्यावरण की रक्षा करना भी अहां दी जिम्मेदारी है, ज्यादा ते ज्यादा पेड़ लगाना, पानी की बचत करना, कन्नै प्रकृति जो सुरक्षित रखना जिहड़ा है सै बड़ा ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पेड़ जिहड़े ना सिर्फ सै वातावरण जो ठंडा रखदे बल्कि अहां यूं साफ सुथरी हवा भी दिंदे। अगर अहां प्रकृति की रक्षा करगे तां अहां दा स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहना। स्वास्थ्य जिहड़ा सै सिर्फ शरीर की मजबूती का ही नां नहीं है बल्कि मानसिक कने समाजिक संतुलन भी स्वास्थ्य का हिस्सा होंदा। गर्मी च ज्यादा गर्मी के कारण कई बारी लोग तनाव कने चिड़चिड़ेपन जो अनुभव करना लगी पौंदे, तां इस करी ने सकारात्मक सोच, परिवार दे सोगी समय बिताना, पर्याप्त आराम करना, कने मनो शांत रखना भी बड़ा जरूरी है। खुश रहने आला व्यक्ति जड़ा है सै ज्यादा स्वस्थ रहंदा। इसने सोगी अहयो ए भी समझने दी जरूरत है कि स्वस्थ जीवन जड़ा है सै सिर्फ बीमारियां ते बचने दा ही ना नहीं है बल्कि एक ऐसी जीवन शैली अपनाने दा ना है जिहड़ी जे अहयो शारीरिक, मानसिक कने सामाजिक रूप ने मजबूत बनाए। गर्मी दा मौसम अहयो अनुशासन कने सावधानी दा संदेश दिंदा। ए मौसम अहयो सिखांदा कि अगर अहां प्रकृति दे अनुसार अपनी दिनचर्या यो बनाए लेंगे तां अहां कई तरह दियां परेशानियां ते बच सकदे हन। हुण अजकल दी भागदौड़ भरी जिंदगी च लोग अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते है ना, कई लोग समय पर खाना नहीं खाते, पर्याप्त पानी नहीं पीते, कने देर राती तक जागते रहते। इन छोटिया छोटिया लापरवाहियों का असर जिहड़ा सै गर्मियों च अहयो ज्यादा देखने को मिलता। तो इस करी ने अहयो अपनिया आदतों च सुधार लाने की जरूरत है। सवेरे जल्दी उठना, हल्का व्यायाम करना, पौष्टिक खाना खाना, कने समय पर आराम करना, यह सारिया गल्लां अहयो स्वस्थ रखने च बड़िया ज्यादा फायदेमंद साबित होंदियां। गर्मियों के मौसम च दिखा साफ सफाई का महत्व जिहड़ा सै और भी ज्यादा बढ़ी आंदा। आस पास गंदगी होने ते मक्खियां कने कीटाणु जिहड़े हन सै बड़ी तेजी ने फैलदे जिसते कई बीमारियां होंदियां। इसलिए अहयो अपने घरे च, अंगने च कने आस पास के वातावरण जो साफ रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पीने का पानी हमेशा ढक्की करी रखना, कने खाना जिहड़ा है यानी भोजन जड़ा है उसी खुले च नहीं छड़ना चाहिए, हमेशा ढक्की करी रखना चाहिए। अक्सर पानी दी टंकियां कने बर्तना दी सफाई पर कई बारी अहां ध्यान नहीं दे पांदे, जबकि ये छोटिया छोटिया सावधानियां अहयो बीमारियां ते बचाई सकदियां। इसके अलावा गर्मियों च पेड़ पौधों का महत्व भी बड़ा ज्यादा बढ़ी आता, क्योंकि पेड़ सिर्फ ना अहयो छाया देंदे बल्कि अहां दे वातावरण जो भी ठंडा रखते कने साफ सुथरा भी बनाते। अज बढ़ती गर्मियों का एक बड़ा कारण पेड़ों की लगातार कटाई भी है। अगर अहां अपने गांव, घर कने आस पास ज्यादा तो ज्यादा पेड़ लगांगे तो आने वाले समय च वातावरण जो बेहतर बनाया जा सकता, कने ये सिर्फ पर्यावरण की रक्षा ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा है। अहयो अपने बच्चों भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने की जरूरत है। बचपने ते ही अगर अहां बच्चों साफ सफाई, संतुलित भोजन कने नियमित दिनचर्या की अगर आदत सिखांगे तो सै जीवन भर तिना स्वस्थ रहना। मोबाइल कने टीवी पर ज्यादा समय बिताने के बजाय बच्चे जड़े न उन्हें खेल कूद की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाहरी गतिविधियां के प्रति भी अहां बच्चों प्रेरित करी सकते, क्योंकि अहें पता होना चाहिए कि स्वस्थ बच्चे जड़े हैं सह ही स्वस्थ समाज कने मजबूत राष्ट्र की पहचान होंगे। कने गर्मियों के मौसम की अहां गल करा दे तो गर्मियों के मौसम च मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी होंदा। बड़ी ज्यादा गर्मियों के कारण अहां जल्दी थकी आते, कने कई बारी चिड़चिड़ापन भी महसूस करना लगते। तो ऐसे समय च परिवार के सौगी समय बिताना, सकारात्मक गल्लां करना, संगीत सुनना कने मनो शांत रखना जिहड़ा सै बड़ा फायदेमंद होंदा। आहां दे बुजुर्ग हमेशा बोलदे हे कि इलाज ते बेहतर बचाव होंदा, तां इह गल गर्मियां दे मौसम च पूरी तरह सही साबित होंदी। अगर अहां पहले ते ही सावधानी रख

0: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
1: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
0: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
1: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज

0: कैंपस है ना।
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जहाँ है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रौनकां गराइंदियां। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 7:45 होने को हैं और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: प्रसार भारती की रेडियो डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
2: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
3: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
2: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे के साथ मना रहे हैं जश्न। कांग्रेस ने 47 में से 32 और भाजपा ने 30 शहरी निकायों पर जीत हासिल करने का किया दावा। केंद्र सरकार ने कहा देश भर में पेट्रोल डीजल व एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस कदम। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी। देश भर से अनेक कलाकार ले रहे हैं भाग और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे सैब सोसाइटी के 800 कर्मचारियों की हड़ताल से राजधानी शिमला में चरमराई सफाई व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 47 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हालांकि नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस व भाजपा दोनों ही प्रमुख दल इन चुनावों में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि कुल 47 नगर निकायों में से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 32 निकायों पर जीत हासिल की है। उन्होंने इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जीत राज्य सरकार की कार्यशैली का आधार है और समाज के हर वर्ग ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में दावा किया कि भाजपा ने 47 में से 30 शहरी निकायों पर जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि 25 नगर परिषदों में से 18 और 22 नगर पंचायतों में से 12 पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन चुनाव परिणामों से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस सरकार से भरोसा उठ चुका है।
1: 25 नगर परिषद में से 18 पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते और 22 नगर पंचायत में से 12 पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते। पार्टी के सिंबल पर भले ही ये चुनाव नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश इस बात को लेकर के, क्योंकि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है उसको मालूम पड़ जाता है कि किस पार्टी से संबंध रखता है। पिछले कल रात से बहुत ज्यादा परेशानी में सरकार है। प्रभाव का इस्तेमाल करने की अगर वो कोशिश करेंगे उसमें भी वो एक्सपोज होंगे।
0: शहरी निकायों के

0: चुनाव परिणामों के बाद भाजपा व कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि शहरी निकायों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है। उन्होंने कहा कि इन चुनावी नतीजों से ये स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ करारा जवाब दिया है। उन्होंने इस जीत के लिए भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। दूसरी ओर कांग्रेस संगठन के प्रदेश महासचिव विनोद जिंटा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने 47 में से 31 नगर परिषद व नगर पंचायतों में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि सत्ता के इस सेमीफाइनल में कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है।
1: नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक तरफा बहुमत मिला है। ऐसे बहुत सारे जिला है जहां कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। चंबा जिला के तीनों नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती है। जिला कांगड़ा के अंदर भी 6 नगर परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव हुआ, जिसमें 6 की 6 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। 31 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी अपना चेयरमैन बनाने जा रही है, ये बिल्कुल तय।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज तिरुवनंतपुरम में केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने वीडी सतीशन को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में केरलम विकास, सामाजिक न्याय व सुशासन की नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल को कौशल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आज शिमला में विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु उद्यम और स्टार्टअप इको सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। राजेश धर्माणी ने बताया कि विद्यार्थियों के ज्ञान संवर्धन के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों व कृषि महाविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार देश में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठा रही है और सभी राज्यों में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में बताया कि पिछले लगभग 2.5 महीने से पश्चिमी एशिया संकट जारी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि इसके कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के दामों में वृद्धि हुई है।
2: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, शिक्षा और इतिहास के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इस मौके पर धर्मशाला स्थित कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कांगड़ा की एसडीएम शिल्पी बेगटा ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान देश भर से आए कई जाने माने कलाकारों ने लगभग 50 कलाकृतियां प्रदर्शित की हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को हर कलाकार की रचनात्मकता व कला देखने को मिल रही है।
3: मेरा नाम मनप्रीत है, मैं लुधियाना से आई हूँ। टोटल आई थिंक मोर देन 45 पेंटिंग्स हैं सबकी मिला के और सबका अलग अलग काम है, अलग अलग कहते हैं ना, हर किसी का अपना अलग हाथ होता है, अपना अलग अलग क्रिएटिविटी या अलग अलग काम है और सबने बहुत मन से काम किया, बहुत एफर्ट दिए हैं अपना यहाँ पे लाके लगाने के लिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए और सभी को बिना थके लगातार काम करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदायों और लोगों में

0: जज्बा इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
1: भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किए अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: राजधानी शिमला में सहब सोसाइटी से जुड़े सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। इस हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। सहब सोसाइटी के कर्मचारियों ने शिमला में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सहब सोसाइटी कर्मचारी यूनियन के उपाध्यक्ष अमित भाटिया ने कहा कि सोसाइटी के लगभग 800 कर्मचारी 10% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
2: हमारे कर्मचारी जो अपने हक अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं, और ये एस्मा चलो डीसी साहब ने लगा दिया, मगर डीसी साहब को हमने भी कई बार मांग पत्र दिया। डीसी साहब ने आज तक 4 साल में कोई भी वार्तालाप हमारी हमारे निगम प्रशासन से नहीं करवाई है। साफ साफ कर्मचारियों के विरुद्ध में पूरा प्रशासन बैठा है। अभी तो हमारी कोई बात प्रशासन से हमारे को कोई कॉल नहीं आई है। अभी जब तक कॉल नहीं आती है तब तक हमारी स्ट्राइक है जो कंटिन्यू ही जाएगी।
0: केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू के संबंध में आज एक व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, भीषण गर्मी के समय धूप में निकलने से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने और मौसमी फलों तथा इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर तरल पदार्थों के सेवन पर बल दिया गया है। लोगों को गर्मी से संबंधित बीमारियों के खतरे के लक्षणों जैसे चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, मानसिक स्थिति में बदलाव, उच्च तापमान, निर्जलीकरण, दौरे और बेहोशी के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक से मुलाकात की। इस दौरान नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पारंपरिक चिकित्सा, एआई आधारित जन स्वास्थ्य नवाचारों और टीबी उन्मूलन की दिशा में निरंतर प्रयासों जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे के साथ मना रहे हैं जश्न। कांग्रेस ने 47 में से 32 और भाजपा ने 30 शहरी निकायों पर जीत हासिल करने का किया दावा। केंद्र सरकार ने कहा देश भर में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस कदम। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी। देश भर से अनेक कलाकार ले रहे हैं भाग। और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे सहब सोसाइटी के 800 कर्मचारियों की हड़ताल से राजधानी शिमला में चरमराई सफाई व्यवस्था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 8 बज चुके हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे यानी सुकृति के साथ। तो चलिए करते हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत। सिलसिला है प्यार का फिल्म के इस गीत के साथ। गाया है इस गीत को अलका याग्निक और कुमार सानू ने।

जी बिल्कुल, प्यार का सिलसिला जो है वो चलता रहना चाहिए। और सिलसिले कुछ ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिन्हें हमें थामना भी पड़ता है, कुछ हमारी ऐसी आदतें जिन्हें हमें रोकना चाहिए, जो सिलसिला जो है वो उनका रोकना चाहिए, रुक जाना चाहिए। कुछ ऐसी आदतें जो हमारे हेल्थ को ख़राब करती हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करती हैं, जैसे कि हम रात को जब सोते हैं तो बहुत देर तक हम अपना मोबाइल में रील्स देखते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी सेहत पर उल्टा प्रभाव डालती हैं, ये हमारी मानसिक शांति को भंग करती हैं, ये हमारी जो नींद है उसे भी तंग करती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का जो सिलसिला है वो रुक जाना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप इन्हें रोकेंगे तो इसके अच्छे परिणाम आपको बहुत बाद में देखने को मिलेंगे। आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी सही रहेगी। तो बहुत ज़रूरी है कुछ गंदी आदतों का सिलसिला रोकना, इसमें से एक हमने आपको बता दी, बाकी आपको भी पता है जैसे कि एक्सेसिव जो है वो गेम्स खेलना मोबाइल पे, या फिर एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, या फिर आप ये कह लें बाहर से फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ खाते रहना, या फिर ऑयली खाना, या फिर प्रोसेस्ड फूड खाना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी हमें कर्ब करनी चाहिए, रोकना चाहिए अपने आप को इन सब चीज़ों से, है ना। पर हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकेंगे, एंटरटेनमेंट आपका जो है वो एंटरटेनमेंट का सिलसिला ज़रूर चलता रहेगा। और अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म हम हो गए आपके से, और इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

आपने ट्यून किया है एफएम हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज पर और सुन रहे हैं फिल्म संगीत अपनी दोस्त सुकृति के साथ।

श्रोताओं, अभी आपने सुना चल मेरे भाई फिल्म का ये गीत, और इस गीत को गाया था अभिजीत और अलका याग्निक ने। और उससे पहले जो आपने गीत सुना उसे हमने लिया था लुटेरा फिल्म से, और मोनाली ठाकुर ने इस गीत को गाया था। फिल्म संगीत का आनंद आप इस वक्त ले रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से।

आपने ट्यून किया है FM हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुन रहे हैं फिल्म संगीत। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में हमें अपने आप से लड़कर भी आगे बढ़ना पड़ता है। ये जो सिचुएशंस होती हैं हमारे पास, वो कुछ इतनी मतलब कि परेशान करने वाली हो जाती हैं, लेकिन फिर भी एक सॉल्यूशन उनका बस यही है उन परिस्थितियों से निकलने का, कि बस आप बस लगातार चलते रहिए। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, चाहे परेशानी कोई भी आए। और देखिए, परेशानी कोई भी आती है हमारी ज़िंदगी में, तो वो हमें कुछ न कुछ सिखा के ज़रूर जाती है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर है तो भी सही है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर नहीं है तो कोई और चीज़ जो है वो ईजाद हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है बस आगे बढ़ते रहना। और कहते हैं ना कि जो चैलेंजेस होते हैं वो प्रिविलेज की तरह, हमें चैलेंजेस जो हैं वो हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेने चाहिए और प्रिविलेज की तरह लेने चाहिए, ताकि हम अपने आप को और निखार सकें, हम अपने आप को आने वाले वक्त के लिए और तैयार कर सकें। जितने भी चैलेंजेस आपको ये ज़िंदगी देती है, उन्हें हंसकर स्वीकार कीजिए और फिर देखिए आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में और अपना एम हासिल करते हैं।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अशोका फिल्म का ये गीत, और आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं दम लगा के हईशा फिल्म से ये गीत, गाया है इसे कुमार सानू ने।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न करने की अपनी दोस्त सुकृति को इजाजत दीजिए। फिर यूं ही चलते चलते किसी और दिन किसी और कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
2: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर

0: हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा और सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है।

0: और निर्यात भी बढ़ रहा है।
1: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने यूट्यूब के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए

0: सावधानियां बताई गई हैं। इनमें छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first-ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
3: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
2: Prime Minister Modi said, the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
3: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
2: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with the technology and the capital of Norway, Indian companies would develop global solutions. Norway will also be joining the Indo-Pacific initiative. Both the leaders reiterated their common belief in rules-based world order and commitment to dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during that difficult period and described it as a reflection of true friendship.
3: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंक

0: विविध भारती,
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है महासटेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: अब सुनिए एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाज आशा भोसले की फिल्म का नाम ज्वेल थीफ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके लिए। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: बहार है।
1: वो जो बहुत खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, भोली हैं, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सहनायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की। प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार, आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

0: सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

सन 1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की बेटी है। इसी फिल्म का गाना सुनिए।

0: चर्चित फिल्में बहारों की मंजिल 1968 में, महल 1969 में, आराधना पुरस्कार, नया रास्ता 1970 में, गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना।
1: अरे या, या, या।

1971 में अमर प्रेम प्यार की कहानी, जिंदगी जिंदगी, रिवाज, बुनियाद, हीरा, बॉबी, जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया, जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया, फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने, जो बहुत लाजवाब था।

अदा जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गईं। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीबी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश। सन 1994 में फिल्म आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मो का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2 अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, धाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ए ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

सन 1990 के बाद की कई फिल्में बहुत चर्चित रहीं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम। फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया, जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्टेज पर इन्होंने एंकरिंग की। साथ में थे सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमिका में फरीदा जलाल नजर आईं। सन 1978 में इनका विवाह एक्टर तब्रेज बर्मावर के साथ हुआ, जो कि भटकल के थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और फिर इन्होंने शादी कर ली। फिल्म आराधना के बाद जीवन रेखा इनकी दूसरी फिल्म थी, जिसमें इन्होंने हीरोइन की भूमिका निभाई थी और साथ में थे उनके पति तब्रेज। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ।

फरीदा जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फरीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फरीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। शोध, आलेख और स्वर शहनाज अख्तरी का। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात के 10 बज चुके हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के इस एक ही फिल्म से कार्यक्रम में। और आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरी यानी सुकृति के साथ। आज की फिल्म एक ऐसी मेलोडियस फिल्म जिसके सारे गाने अपने ज़माने में बहुत ही हिट रहे और सीधे दिल पर लगते हैं। आपको भी इन गीतों के बोल याद होंगे अब तक, तो क्यों ना सुने पहले ये गीत। और आप तब तक गेस कीजिए कौन सी फिल्म है ये।

समझ गए होंगे कि हम आज किस फिल्म की बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। तो हम बात करेंगे फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया है की। जी हाँ, और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके गाने बहुत ही मशहूर हुए और संगीत जो था वो नदीम श्रवण का था, और एक बहुत ही जो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो सुरेंद्र सोढ़ी ने दिया था। और बात करें अगर हम इसके डायरेक्टर की तो धर्मेश दर्शन डायरेक्टर थे। लिखा था इसे धर्मेश दर्शन, राज सिन्हा और नसीम मुकरी ने। और मुख्य कलाकारों की बात करें तो अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर, ये मुख्य कलाकार थे इस फिल्म के। और ये फिल्म जो है 15 फरवरी 2002 को रिलीज़ हुई। 11 करोड़ का बजट था इस फिल्म का और इसने लगभग 20 करोड़ का कारोबार किया। और हिंदी भाषी ये फिल्म थी, रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। और कहानी भी एक बहुत ही ऐसे त्रिकोणीय प्रेम कथा जिसे हम कह सकते हैं वैसी थी, ड्रामेटिक रोमांटिक मूवी थी ये। और राज मल्होत्रा के रूप में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन शिव कपूर के रूप में, करिश्मा कपूर पूजा कश्यप और कादर खान, हिमानी शिवपुरी, शक्ति कपूर, नवनीत निशान जो हैं ये भी इस फिल्म में थे, मोहनीश बहल, सुप्रिया कर्णिक, सिमोन सिंह, उपासना सिंह, डॉली बिंद्रा, रजाक खान, सोफिया हक। जी हाँ, ये सभी जो थे वो इस फिल्म में मौजूद थे और इनकी मौजूदगी ने इस फिल्म को एक नया चार्म दिया। बात करें अगर हम इस फिल्म की स्टोरी की तो कुछ इस तरह से है कि शिव और पूजा जो हैं वो नौकरी की तलाश में थे और संयोग से दोनों का इंटरव्यू एक ही कंपनी में होता है और दोनों ही जो हैं वो नौकरी के लिए समान रूप से योग्य हैं। और इंटरव्यू के उस वेन्यू पर जब पूजा को पता चलता है कि उसे नौकरी मिलना मुश्किल होगा तो वो शिव को बेवकूफ़ बनाकर नौकरी हासिल कर लेती है। और बाद में शिव को उसी कंपनी में नौकरी मिल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया था। खूब शरारतों और मस्ती के बाद दोनों में प्यार हो जाता है, वे शादी कर लेते हैं। पर दोस्तों कभी कभी चीज़ें जो हैं वो स्मूथ नहीं चलती हैं, उनमें थोड़ी सी जो है वो खटास रिश्तों में जो है वो आ जाती है और ऐसा ही होता है। और फिर छोटी छोटी बहस जो है वो इनकी ज़िंदगी में भी हर दिन हावी होती जाती है, और जबकि पूजा की कल्पनाएं कभी कभी उस पर हावी हो जाती हैं। तो इस तरह से इन दोनों की जो है वो ज़िंदगी में फिर एक नया मोड़ आता है और पूजा शिव के लिए अपना करियर छोड़ देती है और एक हाउसवाइफ बन जाती है। हनीमून के लिए वो स्विट्ज़रलैंड जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात मेघना से होती है जो शिव के कॉलेज की दोस्त होती है। तो इस तरह से ये गलतफहमियों का अंबार लगता रहता है, इस तरह से ये स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी आगे बढ़ेगी लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे फिल्म का एक और गीत। तो आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

जी हाँ दोस्तों, ये संगीत जो है, जो अभी आप सुन रहे हैं, ये दिया है नदीम श्रवण ने, और बहुत ही सुरीला संगीत, हर गाना एकदम सुरीला है, और गाया भी जो है वो बहुत ही सुरीले ढंग से है। कुमार सानू, सारिका कपूर, उदित नारायण, अलका याग्निक और इन सब ने ये इस फिल्म के गीत गाए हैं, और सभी गाने बहुत ही हिट रहे। और हम बात कर रहे थे फिल्म में, फिल्म की स्टोरी की, तो ये जो फिल्म है इसकी स्टोरी हमने आपको थोड़ी थोड़ी बताई, और बाद में जब पूजा और शिव के बीच में डिफरेंसेस हो जाते हैं तो डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है, और वो उसे छोड़ के चली जाती है। पूजा जो है वो मुंबई मुंबई चली जाती है, वहाँ वो राज की सेक्रेटरी के रूप में जो है वो काम करती है, जो एक फिल्म स्टार है, और उसके पास सब कुछ है, पैसा है, फेम है, पर प्यार नहीं है। पर वो अपना काम, अपने काम से खुश होती है, और राज भी उसके प्यार में बाद में पड़ जाता है, और वो भी उसे पसंद करने लगती है। बाद में जो है वो जब शादी कर रहे होते हैं तो पूजा को रियलाइज़ होता है कि वो सिर्फ शिव से ही प्यार करती है, और वो वापस जो है वो शिव के पास जाना चाहती है। और ये बात जो है वो राज जो है वो सुन लेता है, और वो डिसाइड करता है कि वो पूजा और शिव को दोबारा से रीयूनाइट करा देगा। तो इस तरह से ये जो है वो इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। कास्ट हमने आपको बता दी और सारे गीत भी बता दिए कि ये उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू ने इन इस फिल्म के गीतों को गाया था, और बहुत ही जो है वो ये सुरीले गीत हैं, बहुत ही बढ़िया संगीत है इस फिल्म के गीतों का। तो क्यों ना अब एक और गीत सुन लिया जाए फिल्म का।

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ अब आज का ये एक ही फिल्म से कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अपनी दोस्त सुकृति को इजाज़त दीजिए और अगले कार्यक्रम में आपसे मिलते हैं, जिसका नाम है चांदनी रातें।

आपने ट्यून किया है एफएम हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10:30 हो चुके हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें।

चांदनी रातें प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज का ये प्रोग्राम आप सुनेंगे मेरे यानी सुकृति के साथ। दोस्तों, करते हैं इस प्रोग्राम में बात हम प्यार और मोहब्बत की। और बस इतनी सी बात होती है प्यार मोहब्बत में कि बस आंखों का इशारा जो है वो समझ जाना होता है कि महबूब क्या चाह रहा है, महबूब क्या कह रहा है। और ये आंखों के इशारों में जो बात होती है वो बस इतनी सी बात नहीं होती है, वो बात सीधे दिल तक जाती है।

बिल्कुल दोस्तों, इतनी सी बात है कि हमें तुमसे प्यार है और हम जो तुमसे मिले हैं इत्तेफाक थोड़ी है, मिलके तुम्हें छोड़ देंगे मजाक थोड़ी है। अगर होती तुमसे मोहब्बत एक हद तक तो छोड़ देते, पर हमारी मोहब्बत का हिसाब थोड़ी है। अब तुम ढूंढोगे मेरी इस गज़ल का जवाब, ये मेरे दिल की आवाज़ है, किताब थोड़ी है।

याद है अब भी मुझे वो पल जब तेरा दीदार हुआ था, इस दिल को पहला सा प्यार हुआ था। थम गई थी ये जमीं और ठहर सा गया था आसमां, तुम्हें देखते ही वक्त रुक गया मेरे कदमों में। उस एक नज़र ने मुझ में उम्र भर का असर दे दिया और तेरे सिवा हर नशा बेअसर कर दिया।

आपने ट्यून किया है एफएम हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज पर और सुन रहे हैं प्रोग्राम चांदनी रातें, और ये है आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का चांदनी रातें प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करने की अपने दोस्त सुकृति को इजाज़त दीजिए। फिर यूं ही चलते चलते किसी और दिन किसी और कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम चांदनी रातें और अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ, रात के 11:05 होने को हैं और अब हमारे आज के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। कल प्रातः अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।